हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026, प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। प्रातःकाल के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप

जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:05 हो चुके हैं। समय है आज के विचार का। व्यक्ति का व्यवहार विषय पर सुनिए श्री गोपाल आचार्य से आज का विचार।
1: व्यक्ति के व्यवहार से उसकी अभिजाति, शिक्षा और संस्कारों का पता बुद्धिमान लोग पूर्व काल से लगाते आ रहे हैं और आज भी लगाते हैं। व्यवहार की ये कसौटी किसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं है। कारण इसकी बुनियाद मानवीयता से, मानवोचित भावना से उठती है और उसी की शाखा प्रशाखाओं में फैलकर अपना परिचय देती है। व्यक्ति का व्यवहार मुख्यतः उसकी वाणी और आचरण में दूसरे व्यक्तियों को आभाषित होता है। भारतीय स्मृतिकारों ने इसीलिए यह आदेश दिया है कि जैसा व्यवहार हम दूसरे व्यक्तियों से अपेक्षित करेंगे वैसा ही व्यवहार उनके साथ करेंगे। सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देंगे, अपने आज्ञा का पालन चाहते हैं तो पहले आज्ञा मानना सीखेंगे, प्रेम चाहते हैं तो प्रेम देंगे। गोद का एक शिशु जो बोलता नहीं, जो अपने पांव पर चल भी नहीं सकता, वही जानता है कि किस व्यक्ति के पास जाना और किसके पास नहीं जाना। प्रथम संपर्क में ही हम उसकी इच्छा अनिच्छा को समझ सकते हैं। कारण स्पष्ट है और वह यह है कि हृदय सबका एक जैसा है और उसकी आंतरिक भावना दर्पण की छाया की तरह तुरंत दूसरे के हृदय पर अंकित हो जाती है। इसीलिए छद्म व्यवहार चाहे जितना परिष्कृत अथवा परिमार्जित हो, छद्म ही रहता है और कैसी भी औपचारिकता उसे शुद्ध व्यवहार का रूप नहीं दे सकती। आजकल के युग में अनेक तरह की सच्ची झूठी शिकायतें अनेक लोगों को करते सुनते हम देखते हैं, परंतु जब सच्चाई से हम उनकी जांच करते हैं तो मालूम होता है कि संबंधित व्यक्ति उनसे किसी तरह प्रभावित नहीं है और उनका कथन एक औपचारिक व्यवहार मात्र सिद्ध होता है। इस प्रकार के औपचारिक आचरणों ने एक झूठे आश्वासनों की सृष्टि हमारे देश में भी रच दी है, जिसके कारण हमारा समाज दुष्प्रभावित हो रहा है। परंतु ना तो यह भारतीय आदर्श है और न ही भारतीय परंपरा। भारतीय परंपरा के व्यक्ति का मन और वाणी पहले गृहस्थ में संस्कारित होते हैं और उसके बाद सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के पहले गुरुकुल में उनकी परंपरा में मन वाणी का व्यवहार एक संस्कार था, न कि मात्र औपचारिकता। इसीलिए सुशिक्षण के स्थान पर उसने अधिक उन्होंने सुसंस्कृति पर बल दिया। जन जन सुशिक्षित चाहे ना हो पर सुसंस्कृत तो होने ही चाहिए, यही उनकी परम कामना थी। इसीलिए अध्ययन समाप्त करने के बाद भी शिष्य को आचार्य भारतीय संस्कृति के परिचायक तत्वों की ओर ध्यान दिलाते थे। तैत्तरीय उपनिषद में हमें अपने सम्बन्ध

0: विवेचन की पूर्ण व्याख्या उपलब्ध है। जब छात्र विद्याध्ययन के बाद छुट्टी देता है तो आचार्य उसे उपदेश करते हैं। आरंभ है सत्य बोलना, धर्म के अनुरूप आचरण करना आदि आदि, और फिर अंत होता है जिनके विषय में, जिन पर संशयुक्त दोष आरोपित किए गए हों उनके विषय में वहां जो विचारशील कर्म में नियुक्त अथवा आयुक्त सरल हृदय और धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो वे जैसा व्यवहार करें तू भी वैसा ही करना। यह आदेश विधि है, ये उपदेश है, ये वेद का रहस्य है और यही आज्ञा है। इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिए, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। तैतृय उपनिषद में वर्णित व्यवहार का यह भारतीय आदर्श तब भी सत्य था, आज भी सत्य है और अनागत में भी सत्य रहेगा।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातःकाल के 6:10 हो चुके हैं। समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं हरिओम सरन और साथियों के गाए इस शिव भजन के साथ।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:30 बजने को हैं। समय है रामचरित मानस गान का।

कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 175 से दोहा संख्या 177 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। स्वर है सुरेश वाडकर का।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। समय है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण का। अब से कुछ ही देर में किसान श्रोताओं के लिए लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम खेती की बातें। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा विषय पर जानकारी देंगे श्री सत्यनारायण शर्मा। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक भजन का। सुबह 7 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी आधुनिक डिजिटल युग में स्वस्थ वृद्धावस्था, बढ़ता ट्रैफिक और समाधान, साथ ही साथ AI एक सूचना क्रांति। सुबह 7:30 आप फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। सुबह 8:30 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर गोविंद कुमार बारूपाल। आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 9:10 पर विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्यम ऑन आकाशवाणी आप सुन सकेंगे। सुबह 9:30 हम लेकर उपस्थित होंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। सुबह 10 का समय रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। सुबह 11:00 आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, धारावाहिक संख्या रहेगी 21। सुबह 11:35 का समय रहेगा विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्यम ऑन आकाशवाणी का।

दिन में 12:10 पर आप सुन सकेंगे नाटक एक्सचेंज। लेखक होंगे श्री हरीश बी शर्मा। दिन में 12:40 पर आप फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे और हमारी पहली सभा में आप दोपहर 2:30 भी फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1:05 पर चर्चाएं रहेंगी, लोक आस्था और लोक मेलों का महत्व, पर्यटन डायरी, कश्मीर की वादियां, हर घर योजनाओं का लाभ, सुशासन के 12 वर्ष। साथ ही साथ महिलाएं सुन सकेंगी वार्ता, बाल अपराध एक पड़ताल। वार्ताकार होंगी डॉक्टर चंचला पाठक। हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम में युववाणी। आज की बात रहेगी भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान। लघु जानकारियां होंगी भारत की वैश्विक पहचान, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, साथ ही साथ कोरल रीफ जैसे विषयों पर। शाम 6:10 पर आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्यम और आकाशवाणी सुन सकेंगे। शाम 6:20 पर आप फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00 प्रसारित किया जाएगा। चर्चाएं रहेंगी इस सप्ताह के कृषि कार्य, मूंग उत्पादन की उन्नत तकनीक, कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी अनुदान योजनाएं।

0: रात्रि 10:30 बजे आप कार्यक्रम सुगम संगीत में गजलों का आनंद ले सकेंगे। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर किसान श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री सत्यनारायण शर्मा।
1: किसान भैया राम राम। आज अपन बात करा हाँ अपने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिकी अपनी वैकल्पिक ऊर्जा बिना पेट्रोल बिना डीजल बिना बिजली अपा ऊर्जा रो उत्पादन ले परा अपना जिका खेती रा उपकरण है बिहने अपा सोलर ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा द्वारा अपा बिहने चलावा और अपा भी में बिहू खेती करा। सौर ऊर्जा कृषि जिका खेत है कृषि रे जिका उपकरण है बिहार ऊर्जा री आवश्यकता पूरी करे और बिहार आपूर्ति ने सुनिश्चित करें। विभिन्न प्रकार का सौर ऊर्जा रा उपकरण है आजकल ऐसा उपकरण और इसी प्रणाली विकसित करी गई है जिकी कृषि रे काम में आने खातर खेत रे काम में आने वाला उपकरण है बिहार उपयोग कर आप खेती कर सका। इसो ही एक अपना जो सिस्टम बनाएड़ो है वो है सोलर पंपिंग सिस्टम सिंचाई पंप। वो अपने भारत महीने आप जो ट्यूबवेल है कुआ है बट आप देखा या खेत में भी देखा कि जमीन रो जो पानी है भूजल जी को है वो पंपिंग सिस्टम अपा ऊपर खेचा बिना खेत में अपा बिरी सिंचाई करा और इर में सबसे ज़्यादा बिजली जी की खपत जी की होया करे। यदि बिजली नहीं है तो अपा पंप सेट जी का है भी डीजल चलाया करा तो बठे देखो प्रदूषण भी फैले और लागत जी की है बाबड है। पर अब देखो भगत सारू बदलाव जी को आयो है और सोलर एनर्जी जी की है सौर ऊर्जा जी की है कृषि क्षेत्र में आप काम में ले परार आप लागत कम कर रहे हैं प्रदूषण कम कर रहे हैं और सोलर एनर्जी रूप में सौर बिजली जी की बचे है बा आप बिजली बेच पर सागे सागे आमदनी भी कर सका। सोलर पंपिंग सिस्टम के अलावा बात कर आप सोलर क्रॉप ड्रायर कई तरह का ऐसा उपकरण जिका वापरिया है जिका अपना खेती रे महीने काम आवे और अपना खेत में जिकी फसल है बिहन सुखाने काम में लिया करा और बिहन आप बोला सोलर ड्रायर जिका जिया बात करा आलूरी अनाज गाजर मशरूम ऐसा कई कृषि उत्पाद है जिका ने सुखाण सारू ए आप काम में लेवा और बे भी जिका बे सोलर द्वारा संचालित कर सका। सोलर स्प्रेयर वो तो आप जाना ही हाँ कि अपनी फसल रमने यदि कीट लागे या कोई रोग लागे तो आप कीटनाशकों प्रयोग करा करें और बिर खातर आप स्प्रेयर मशीन जी की बात चाहिए जाया करें और अब सोलर द्वारा सोलर स्प्रेयर मशीन भी वापर गई है जिके सुखाई है अपने खेत्र में कीटनाशकों स्प्रे कर परा आप अपने उत्पादक सा खेत्र जी के बिना बढ़ा सका बिना सुधार ला सका। कई तरह का जगह कीटनाशक छिड़काव जी का है आप जाना ही कि दिन रे बगत करा करा और ई बगत जी को है सूरज री किरणा जी की है सूरज प्रकाश जी को अपने प्रत्यक्ष रूप में मिला करे और आप ई मशीन ने काम में ले सका। अब सगलों बड़ी बात जी की है वह है अपन खेती रे मोटे उपकरण री और वो है ट्रैक्टर सौर ऊर्जाओं संचालित ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जी को है अपने खेत्र में कई तरह का काम जी का करा करे और इन ट्रैक्टर द्वारा कई तरह का औजार कई तरह का उपकरण जी का चलाया करे और भी वो अपन खेती जी की है बिना कृषि उद्योग में बदलने में काम में ले सका। आज ट्रैक्टर द्वारा अपने कृषि जी की है खेत जी की परंपरागत खेती जी की कृषि उद्योग में बदल गई है और ये सबसे बड़ो जी को श्रेय है वो जावे अपने ट्रैक्टर ने। आमतौर पर आप देखा कि ट्रैक्टर खातर अपने डीजल री तेल री जी की जरूरत पड़े करे जिके सु खेती लागत बढ़े और बिरे सागे सागे तेल रे उपयोग करा तो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में उत्सर्जन हुए और जिके सु कहीं है वातावरण जो है वो प्रदूषित हुए। तो अब सौर ऊर्जा चलाना और ट्रैक्टर जो है ये बेहतर विकल्प चुका हो सके और दिन रे बगत प्रत्यक्ष रूप सूर्य की किरणा मिले सूर्य की ऊर्जा मिले जिके सो अपने उपयोग कर सका और बिरे बाद बैटरी मैंने संग्रहित जी की सौर ऊर्जा है बिरी मदद दूँ आप रात ने भी कही है कि सोलर ऊर्जा संचालित ट्रैक्टर ने काम में ले सका। तो देखो सा बात तो काम रही है और काम रही बात आ है कि भाई सोलर एनर्जी ने अपा खेत्र मैंने खेत राज्य का उपकरण है बियाना मैंने काम में ले पर खेती बाड़ी ने अपा बढ़ाओ जी को दे सका और इनमें अपनी भारतीय की सरकार जी की है कई तरह का योजनाएं जी की चाले कई तरह का संगठन जी का है कई तरह का अभियान जी का है कई तरह योजनाएं जी की चाले जहाँ बात करा अंतर्राष्ट्रीय सौर

0: गठबंधन, राष्ट्रीय सौर मिशन, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान जेके ने पीएम कुसुम योजना भी कहवा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो यहाँ के लिए जी संस्थाएँ बनोड़ी है या योजनाएं बनी है यहाँ सगलों रो उद्देश्य वही है कि भाई आप सोलर एनर्जी रो बढ़ाओ भी ने किया देवा, प्रदूषण कम किया करा और खेतरी अपने जी की लागत है भी ने कम कर परार किसान री आमदनी आप किया बढ़ावा।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से प्रस्तुत है लोक भजन। कलाकार हैं पुष्पा सैनी।

आप सुन रहे थे पुष्पा सैनी का गाया लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर प्रातःकाल के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली

0: अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि-द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर सुबह के 7 बज रहे हैं। समय हो चला है कार्यक्रम सुप्रभात का।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हम ऐसे वक्त में, ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम AI कहते हैं, इसने जहां ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं बढ़ती उम्र के साथ स्वस्थ और सक्रिय रहना उतना ही उलझा हुआ हो गया है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं डिजिटल युग में स्वस्थ वृद्धावस्था की। समय रोके नहीं रुकता है। कहा जाता है समय उस मनुष्य की भांति है जिसके सामने की तरफ सर पर बाल हैं, लेकिन पीछे सर पर बाल नहीं हैं। समय को सामने से पकड़ लिया तो ठीक है, वरना गुजरने के बाद समय को बालों से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो समय हाथ नहीं आएगा। इसी तर्ज पर वक्त गुजर रहा है और उम्र बढ़ रही है। स्वस्थ वृद्धावस्था का मतलब केवल रोगों से आज़ाद होना, मुक्त होना नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, सामाजिक रूप से जुड़े रहना और आर्थिक और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीना है। श्रोताओं, ऐसे में आज का दौर यानी ये डिजिटल युग बहुत सारी चुनौतियां वरिष्ठ नागरिकों के सामने प्रस्तुत करता है, जैसे कि शारीरिक निष्क्रियता। जी हाँ, अधिक समय मोबाइल और टीवी के सामने बिताने से चलना फिरना कम हो गया है। साथ ही साथ सूचनाओं की अधिकता, फर्जी खबरें, डिजिटल दबाव तनाव को बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया बढ़ने के बावजूद बहुत सारे बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड में कैद होते जा रहे हैं और सामाजिक अलगाव का शिकार बन रहे हैं। इसी तरह से एक समस्या जो वृद्धावस्था में इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा गंभीर है और जिसका सामना वृद्धों को अक्सर करना पड़ता है, वो है साइबर सुरक्षा का खतरा। जी हाँ, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। श्रोताओं, ऐसा नहीं है कि डिजिटल युग वृद्धावस्था को केवल उलझाता है, बल्कि बहुत सारे अवसर भी देता है। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं आसान हो गई हैं, उनकी पहुंच आसान हो गई है, उनके बारे में जानकारी लेना, डॉक्टरों से घर बैठे संपर्क करना, सलाह लेना, अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखना स्मार्ट वॉच की मदद से, फिटनेस ऐप्स की मदद से हृदय गति का पता रखना, रक्तचाप का पता रखना, अन्य अपनी गतिविधियों पर नज़र रखना, साथ ही साथ वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनों से जो दूरी महसूस होती थी वो ख़त्म हो गई है, परिवार के सदस्यों से संपर्क बना रहता है, बुज़ुर्ग उनसे जुड़े रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वृद्ध ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वेबिनार हैं, डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान को निरंतर बढ़ाने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर श्रोताओं, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए इस डिजिटल युग में जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है प्रतिदिन बढ़ती आयु के साथ 30 मिनट पैदल चलने को ज़रूर अपनाएं, योग और प्राणायाम को अपनी आदत बना लें, हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग भरे अभ्यास ज़रूर करें, इसी तरह से संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां खाएं, फल लें, प्रोटीन युक्त भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है कि वृद्ध ध्यान और मेडिटेशन को अपनाएं, सोच को सकारात्मक रखें और पेट से संबंधित किसी भी समस्या को अपने जीवन में ना आने दें, क्योंकि अगर पाचन स्वस्थ रहेगा तो शरीर की क्षमताएं बनी रहेंगी। श्रोताओं, इसी तरह से वृद्धों के लिए इस डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्टफोन का सही तरीके से इस्तेमाल यानी सही उपयोग उन्हें आना चाहिए। साइबर सुरक्षा की भरपूर जानकारी उनके पास होनी

चाहिए, डिजिटल भुगतान करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये उन्हें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ सामाजिक सहभागिता वृद्धों की जरूर बनी रहनी चाहिए, परिवार के साथ उन्हें समय बिताने को मिलना चाहिए, सामुदायिक गतिविधियों में उन्हें भाग लेना चाहिए और मित्रों से नियमित संपर्क बना के रखना चाहिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं श्रोताओं की वृद्धावस्था जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान चरण है। डिजिटल युग ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं लेकिन उनका संतुलित इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे, संतुलित आहार लेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, सामाजिक संबंध बना के रखेंगे और डिजिटल तौर पर जागरूक रहेंगे तो हम सक्रिय रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सम्मानपूर्ण वृद्धावस्था का आनंद ले सकेंगे। श्रोताओं, हर आने वाला पल क्योंकि जाने वाला है तो हमें आज वाले पल को, अभी वाले लम्हे को जीना है। इस अभ्यास को अगर हम अपनाएंगे तो जीवन की कोई भी अवस्था हो, विशेषकर वृद्धावस्था हो, तो हम समय को भरपूर जी सकेंगे। चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, वक्त तेजी से गुजर रहा है और ना सिर्फ गुजर रहा है बल्कि बदल रहा है, और इस बदलते वक्त के साथ साथ हमें बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज बढ़ते ट्रैफिक की समस्या की और साथ ही साथ उसके समाधान की भी। आज के आधुनिक युग में बढ़ता ट्रैफिक वाकई एक गंभीर समस्या बन चुका है। जनसंख्या वृद्धि, तेजी से शहरीकरण और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से लोगों को लंबे वक्त तक जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे वक्त और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। साथ ही साथ वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। श्रोताओं, ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी वजह सार्वजनिक परिवहन की कमी और उनका कम इस्तेमाल है। साथ ही साथ यातायात नियमों की अनदेखी और सड़कों का अपर्याप्त विकास भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत सारे लोग छोटी सी दूरी के लिए भी निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सड़कों पर अनावश्यक भीड़ बढ़ती है और उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। श्रोताओं, इस समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और सुविधाजनक बनाना बहुत ज़रूरी है। मेट्रो, बस और लोकल ट्रेनों जैसी सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को कारपूलिंग, साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यातायात नियमों का सख्ती से पालन, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल भी बहुत खास है। श्रोताओं, इसके अलावा नई सड़कों, फ्लाईओवर और पार्किंग सुविधाओं का विकास भी किया जाना चाहिए। ये कहना गलत नहीं है कि बढ़ते ट्रैफिक की समस्या केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम सभी जागरूक होकर यातायात नियमों का पालन करेंगे और सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इस समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ श्रोताओं, बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए नागरिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें अपना कर्तव्य जरूर याद रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और उसका पालन करेगा, तो यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे यातायात नियमों का पालन करें, लाल बत्ती पार ना करें, निर्धारित गति सीमा का इस्तेमाल करें, गलत दिशा में वाहनों को ना चलाएं, सार्वजनिक परिवहनों का, जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, इस्तेमाल को बढ़ावा मिलना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें भी अनावश्यक निजी वाहनों का प्रयोग ना करके बस, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक साधनों का अधिक इस्तेमाल करके सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करना चाहिए। साथ ही साथ कार पुलिंग को अपनाना चाहिए। एक ही दिशा में आने वाले लोग एक ही वाहन का इस्तेमाल करें, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम हो सकें। अनावश्यक वाहन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। छोटी दूरियों के लिए पैदल चलना अच्छा है, साइकिल का इस्तेमाल करना अच्छा है, बजाय इसके कि निजी वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। वाहन गलत पार्किंग पर ना हो, ये ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए सही स्थान पर पार्किंग की जाए। सड़क पर अनुशासन बनाए रखें, लेन बदलते समय सावधानी बरतें, हॉर्न का अनावश्यक इस्तेमाल ना करें और दूसरों को रास्ता देने की आदत बनाएं। साथ ही साथ श्रोताओं, हमें अपने वाहनों का नियमित रखरखाव भी करना चाहिए। खराब वाहन सड़क पर बाधा पैदा करते हैं और प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर यातायात नियम और सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक बनना चाहिए। श्रोताओं, कहते हैं ना, ए भाई जरा देख के चलें, ऊपर ही नहीं, नीचे ही नहीं, आगे भी और पीछे भी। तो कुल मिलाकर सड़क पर सावधानी से चलें, सुरक्षा से चलें, यातायात नियमों का पालन करें, ट्रैफिक समस्याएं अपने आप कम होंगी और समाधान खुद ब खुद निकलेंगे। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

श्रोताओं, आज हमने बदलते वक्त पे बातें की, बदलते वक्त के बदलते रुखों पर बातें की, बदलते वक्त के साथ बढ़ती उम्र के बारे में बात की, बढ़ते ट्रैफिक और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की। इसी तरह से इस बदले वक्त की सबसे महत्वपूर्ण दें

श्रोताओं, आज हमने बदलते वक्त पे बातें की, बदलते वक्त के बदलते रुखों पर बातें की, बदलते वक्त के साथ बढ़ती उम्र के बारे में बात की, बढ़ते ट्रैफिक और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की। इसी तरह से इस बदले वक्त की सबसे महत्वपूर्ण देन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएशन, गिफ्ट कहा जा सकता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं एआई की। आधुनिक युग की सबसे बड़ी सूचना क्रांति एआई को माना जा रहा है। जिस तरह कंप्यूटर और इंटरनेट ने सूचना के संग्रह, प्रोसेसिंग और आदान प्रदान के तरीके को बदला, उसी तरह से एआई ने सूचना को समझने, एनालाइज करने और उसके उपयोगी निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल हमें सिखाया। जी हाँ श्रोताओं, एआई की मदद से बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को कुछ ही लम्हों में प्रोसेस किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, परिवहन, संचार जैसे क्षेत्रों में एआई ने कार्यों को बहुत तेज़ किया, सटीक किया और प्रभावी बनाया है। हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि अस्पतालों में रोगों की पहचान, किसानों को मौसम और फसलों संबंधी सलाहें, छात्रों को व्यक्तिगत सीखने की सुविधा एआई के जरिए ही मुमकिन हो पाई है। हालांकि श्रोताओं, एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और रोजगार जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो इस बदलते वक्त में हमारे सामने आए हैं। इसलिए एआई का विकास और उपयोग नैतिकता और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। एआई केवल एक तकनीक नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक नई सूचना क्रांति है जो मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, उत्पादक और ज्ञान समृद्ध बना रही है। अगर इसका सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह समाज और राष्ट्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं इसका दुरुपयोग हमें समस्या में डाल सकता है, हमें उलझा सकता है। तो श्रोताओं, एआई के प्रति अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, एआई को सीखने, समझने और इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और एआई के प्रति जो खौफ, भय हमारे मन में है उसे भी हम निकालें और वास्तविक दुनिया और एआई की दुनिया में विभेदीकरण को भी हम समझें। धीरे धीरे समय के साथ निश्चित ही इस एआई की सूचना क्रांति के साथ हमारा तालमेल बैठ जाएगा, क्योंकि हम में सीखने की आग है, हम में जानने की ललक है। इतनी ललक है कि इंसान जानने की ललक में समूचा सूरज निकल जाता है। कोई गुमशुदा सा ख्वाब कभी देखता है, फिर वो ख्वाब उसे मिल जाता है और खिल जाता है। इंसान में इतनी ताकत है कि लोहा पिघला के जो मर्जी चाहे, जैसा मर्जी चाहे, उसे आकार प्रकार दे सकता है। तो कुल मिलाकर इस बदलते माहौल, बदलती दुनिया में सीखने की ललक को कमज़ोर मत पड़ने दें, सीखें और आगे बढ़ें। जीवन में सफलता को हासिल करने के हर मौके का भरपूर इस्तेमाल करें। चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, आपसे विदा लेने से पहले आपके लिए कुछ खास पंक्तियाँ। आने वाला वक्त सुनहरा है, हर अंधियारे के बाद सवेरा है। जो आज कठिनाइयों में घिरा है, कल वही सफलता का सितारा है। हौसलों की लौ जलाए रखना, सपनों को दिल में बसाए रखना, रास्ते भले ही कठिन लगें, कदमों को आगे बढ़ाए रखना। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, मेहनत करने वालों के दिन भी बदलते हैं। हर नई सुबह एक संदेश लाती है, उम्मीदों की नई किरण जगाती है। आने वाला कल हमारा होगा, हर सपना सच का सितारा होगा। बस विश्वास और कर्म का साथ रहे तो भविष्य हर दिन नई सौगात दे। तो आशाओं से अपने दिल को कभी खाली ना होने दें, उम्मीदों से दिल को भरे रखें। आने वाला वक्त हमारा होगा, इसी नियत के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दें आज्ञा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत को बोल दिए हैं गुलजार ने। संगीतकार हैं आर डी बर्मन। फिल्म का नाम है घर।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार को एक बार फिर से सुनिए। फिल्म का नाम है दिले नादान। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी, संगीतकार हैं खयाम।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में अगला गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शिव हरी।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए निदा फाजली की गजल, जिसे संगीत दिया है उषा खन्ना ने। फिल्म है आप तो ऐसे न थे और इस गीत को आवाज़ दी है मनहर ने।

0: फिल्म धनवान के इस गीत के साथ, जिसे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने आवाज़ें दी थी, साहिर लुधियानवी ने लिखा था, हृदयनाथ मंगेशकर का था संगीत, फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: सरकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य

0: देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
3: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले JD वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। JD वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम

0: प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
2: सोनाघाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today.

उनका संघर्ष अकादमिक मात्र नहीं रहा, वरन मूल रूप से क्रांतिकारी था। एक ऐसी क्रांति जिसके द्वारा दबे कुचले मजलूम सदियों से पीड़ित करोड़ों मानवों को अपना खोया हक दिला सके। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान कराने, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के संवैधानिक रूप का उपस्थापन कराकर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व यथा अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार, वक्ता, समाज सुधारक, राजनीतिक तथा सामाजिक चिंतक आदि को निखारता है। 1947 में मिली आज़ादी के बाद देश के शासन प्रशासन को चलाना, सुदृढ़ विधि विधान तैयार करना कोई आसान काम नहीं था, पर इसके बावजूद बाबा साहब ने देश को विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान दिया, जो उनके कृतित्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय विधि साहित्य का आधार स्तंभ कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, वरन उन्होंने भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी है उसका गहन अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि उनके दिल और दिमाग में मानवता का एक प्रकाश पुंज विद्यमान था। उनकी कलम से लिखा गया हर एक शब्द मानवीय समानता, स्वतंत्रता, मातृत्व एवं कर्तव्य पालन का एहसास कराता है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक जनतंत्र के उत्साही समर्थक थे, अतः उन्होंने जाति विहीन समाज की स्थापना हेतु कार्य किया। क्योंकि उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा व अनुभव किया था, जाति आधारित व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लिए उन्होंने समता का अधिकार प्रदान किया। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है व अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे, क्योंकि वर्ण भेद ने सामाजिक भावना को मार डाला, वर्ण भेद ने सद्गुण को जात पात के नीचे दबा दिया और सदाचार को जात पात में जकड़ दिया। बाबा साहब के अनुसार हिंदू समाज में बड़े बड़े समाज सुधारक तथा आंदोलनकर्ता आए, पर सामाजिक क्रांति आ नहीं पाई। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था ने हिंदुओं की नीची जातियों को कोई क्रांति करने योग्य होने ही नहीं दिया। वे विद्या प्राप्त नहीं कर सकते थे, वे अपनी मुक्ति का उपाय नहीं सोच पाए। वस्तुतः किसी समाज का पीड़ित तथा शोषित वर्ग ही क्रांति ला सकता है, पर हिंदू समाज में ऐसा हो न पाया, क्योंकि कानून, धर्म व राज्य की सहायता से उच्च वर्गों ने सदैव उन्हें अज्ञान, अंधकार तथा निर्धनता में ही डाले रखा। देश की एकता एवं अखंडता के प्रतीक रहे डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सब मनुष्य समान है और सबको आगे बढ़ने और प्रगति करने के समान अवसर मिलने चाहिए। ठोस आत्मशक्ति उनके व्यक्तित्व की मूल विशेषता थी। अंबेडकर जैसे संबोधी दार्शनिक ने सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में पदार्पण करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा से भुला दिए गए मानव केंद्रित समतावादी मार्ग को प्रशस्त किया। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म के नए रूप की व्याख्या की। उनके अनुसार जिन सामाजिक मूल्यों और रीति रिवाजों पर व्यवहार चलता है वही धर्म है। ये मूल्य और रीति रिवाज ही वे बंधन है जो व्यक्ति को समाज से बांधे रखता है। इसलिए धर्म की व्याख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन बंधनों को जानना है जो समाज का योग्य संचालन करते हैं। बाबा साहब के अनुसार धर्म का मूल आधार व्यक्तिक न होकर के सामाजिक होना चाहिए। वह धर्म का मूल्यांकन समाज की नैतिकता पर आधारित मानदंडों द्वारा किया जाना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के धर्म की धारणा में एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि धर्म का आधार कुछ आदेश तथा निषेध नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका मूलाधार ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत हो जो सबके लिए समान हो और सर्वत्र लागू होते हों। डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिमय जीवन संघर्षों में नासिक सत्याग्रह, महार जल सत्याग्रह, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, हिंदू कोड बिल आदि प्रमुख रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन वे पुरातनपंथी हिंदुओं के समान

0: ने दबे कुचले अनाथ समाज को सम्मान एवं हक दिलाने के लिए नासिक के कालाराम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए खोलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो कि उनके कृतित्व का एक अनूठा उदाहरण है। पूना पैक्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब ने दलितों के मौलिक अधिकारों की पुरजोर वकालत की व साथ में प्रखर देशभक्ति का भी परिचय दिया। उनके वक्तव्य में दलितों के प्रति जितनी पीड़ा थी, उतनी ही अंग्रेजी राज की स्पष्ट आलोचना, दलितों के अधिकारों का प्रतिपालन व देश की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन था। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसे कार्य को हाथ में लिया जो सदियों से उपेक्षित था, जिसमें बहुत कम विद्वानों की रुचि थी। दलितों को उपदेश तो बहुत से साधु संतों और चिंतक सुधारकों ने दिए, पर उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने का काम डॉक्टर अम्बेडकर के सिवाय किसी ने नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल दलितों के अधिकारों की लड़ाई ही नहीं लड़ी, वरन वे समता की आधार मूर्ति स्त्री को भी पुरुषों के समान संपत्ति पर अधिकार, उत्तराधिकार, सामाजिक, आर्थिक हक दिलवाने के लिए कटिबद्ध थे। वह इस हेतु हिंदू कोड बिल बनाया, परंतु मंत्रिमंडल में पुरातन पंथियों की कूपमंडूपता व विरोध के चलते यह बिल पास न हो सका, जिसके विरोध में बाबा साहब ने विधि मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। इस बिल को पारित कराने का एक ही उद्देश्य था कि समग्र भारत में हिंदू समाज एक ही विधिक आचार संहिता से नियंत्रित हो तथा एक राष्ट्रीयता का विकास करने में सहायक हो। उन्होंने कहा था कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। जो समाज सुधारक समाज को ललकारता है, वह सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिज्ञों से कहीं बेहतर निर्भीक है। डॉक्टर अम्बेडकर की अवधारणा एक ऐसे समाज दर्शन में रही है जिसमें स्वतंत्रता, समता व मातृभाव का समन्वय हो। स्पष्टतया बाबा साहब के नए समाज के आवश्यक तत्व जनतंत्र, सहयोग, सहानुभूति, न्यायोचित व्यवहार, पेशे का स्वतंत्र चुनाव, क्षतिपूर्ति की समानता, समान अवसर, बंधुत्व आदि आदि हैं। उन्होंने जीवन की स्वाभाविक गति को अवरुद्ध करने वाले तत्वों का विरोध किया और नैतिकता एवं धर्म के नाम पर समाज में फैले अनाचार एवं अत्याचार की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर अम्बेडकर ने कामगार और मालिक समस्याओं पर आधारित विचार करने की व्यवस्था की सफाई, कामगारों से मलिच्छ सामाजिक प्रथाओं को त्यागने का आग्रह किया व समाज को शिक्षित बनो, संगठित रहो व सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष करो का आह्वान किया। बाबा साहब द्वारा जीवन भर अन्याय, दमन एवं असमानता के विरुद्ध किया गया संघर्ष एवं भारतीय विधि साहित्य का सूत्रपात आज भी मानवता के उत्थान का मार्गदर्शक बना हुआ है। वह भविष्य में उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ का कार्य करता रहेगा जिसके समीप आकर भटके, शोषित व पीड़ित मानव प्राणियों को भी दिशा मिल सके। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्तित्व व कृतित्व मानववादी दर्शन को मूलतः स्वीकार करता है, क्योंकि उसमें आदमी, समाज और उसकी परिस्थितियों को विशेष महत्व दिया गया है। उनके दर्शन में वे मूल्य हैं जो आदमी एवं समाज की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। उनका दर्शन स्वीकृत निरर्थक मान्यताओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ नहीं है। उन्हें मनुष्यता की पूर्ण अभिव्यक्ति है और समयानुसार उनमें परिवर्तन की गुंजाइश है। डॉक्टर अम्बेडकर पुनः मूल्यांकन और पुनर्विचार के कट्टर समर्थक थे। इसी प्रेरणापुंज शख्सियत और दार्शनिक डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कवि सागर निजामी ने उनकी शान में ठीक ही कहा है कि तेरे हर रंग को छाना है, तेरे हर राज को माना है, और तुझे हमने माना है तो कुछ देख के माना है।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ, लीजिए सुनिए देशभक्ति सहगान।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति सहगान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी जयपुर से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार तरंग। समाचार तरंग के लिए इंतजार करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं माधुरी वशिष्ठ
2: और मैं रितिका गुप्ता
1: आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां।
2: दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है।
1: राज्यस्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया।
2: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रदेश दौरा, विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं का लोकार्पण किया।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने के उपलक्ष्य में विविध गतिविधियां।
2: लोगों की समस्याओं के एक ही स्थान पर समाधान के लिए प्रदेश भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन।
1: बच्चों में दस्त रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया गया स्टॉप डायरिया कैंपेन।
2: विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश भर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए।
1: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती

0: जयंती धूमधाम से मनाई गई।
1: दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। विश्व भर में बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग थीम पर कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम हुए। राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबू राज में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग अब एक विश्वव्यापी जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योग अपनाने का आह्वान किया।
3: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ भी अनगिनत है। ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है।
1: इधर बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग शिविर में योगाभ्यास किया। योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीवन में योग को अपनाने से न केवल बीमारियों से बचाव संभव है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति भी है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया, वैसा ही योग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश को कई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात दी। उन्होंने बीकानेर से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की परियोजना पर काम किया जा रहा है।
5: बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है, जिसमें हमारे, अगर हम देखें, सरूपसर से, जैतसर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से रोजरी बीकानेर, एक लाइन ये हो गई, और अनूपगढ़ से खाजूवाला, खाजूवाला से जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री ने जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। ये रेलगाड़ी राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव ने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण किया गया।
1: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की गई। 12 साल विश्वास की, विकास की, जनकल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत

0: किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
1: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
2: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा।
0: प्रदेश में इन दिनों विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, साथ ही आवासीय पट्टे भी सौंपे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित अन्य कैबिनेट मंत्री और आला अधिकारी इन शिविरों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उदयपुर में शहरी सेवा शिविर में अवलोकन किया। उन्होंने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
3: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी शहरी क्षेत्रों जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: सवाई माधोपुर में लगाए गए शिविर में वहां की निवासी सुनीता अग्रवाल को आवासीय पट्टा सौंपा गया। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार का आभार जताया।
4: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और मैं पट्टे के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था, तो आज हमें प्राप्त हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का दिल से आभार करना चाहूँगी, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।
0: इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच एमओयू हुआ। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में ये एमओयू किया गया। इस मौके पर श्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पत्थर और शिल्प की कोई कमी नहीं है, इसे उत्कृष्ट पहचान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर चुका है।
5: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर है, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्वुड स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले है, मंदिर है, हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई, और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
1: राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जा रहा है। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। 16 जून से शुरू हुआ ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इसके लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है, वहाँ ORS कॉर्नर बनाए गए हैं,
6: जिसमें इस बार की हमारी थीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा ANM घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारे ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूकता।
0: प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ताजा

0: आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में एक अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ. प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
1: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात हैं, स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स, जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
2: विश्व रक्तदाता दिवस पर विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए। मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं थीम पर लगाए गए इन शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। करौली से हमारे संवाददाता बांकी बिहारी शर्मा ने बताया कि वहां शिविरों में निशुल्क रुधिर जांच की गई और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
3: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है, जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है। यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर, करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया, जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है।
0: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
4: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
2: श्रोताओं, आज के संक में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे रामनाथ मीना।
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी।

0: प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षित उपायों के मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और 4 पेयजल परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी काम उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बांध, टनल निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत है और इस पर गुजरात डेयरी या अन्य किसी बाहरी का हस्तक्षेप का कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: हमारा डेयरी सेक्टर इतना मजबूत है कि यहाँ पर उन नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा गांव-गांव तक, हर किसान तक हमारा डेयरी सेक्टर फैला हुआ है। हम किसानों को फैट के आधार पर, दूध पालकों को फैट के आधार पर तो पैसा देते हैं, लेकिन 5 रुपए सरकार की तरफ से पर लीटर उनको अनुदान भी देते हैं। इसलिए जो लोग, जो किसान, जो पशुपालक हमारी डेयरी से जुड़े हुए, निश्चित रूप से वो हमारी डेयरी से जुड़े रहेंगे। उनके नियमों से हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
0: रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने के बजट घोषणा पर तेजी से अमल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले को विकास की 2 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने 42.80 करोड़ रुपए की लागत से कल नटनी का 12 से जैसमन बांध नहर को पक्की करने के काम का शिलान्यास किया। साथ ही 3.34 करोड़ रुपए से निर्मित भाखेड़ा एनिकेट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने लगी, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।
2: पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद भी सभी का ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगा। इनमें से 2 महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। दोनों मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सवाईमाधोपुर में आज से राज्य स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग की ओर से हो रहे 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य CSR के माध्यम से वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के

0: के अतिथि राज्य के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता।
1: राजस्थान वन विभाग द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग समूहों, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित कर वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावी बनाना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी शुरू हो गई है। यहां सफेद बाघ भीम और सुनहरी बाघिन सस्कंधी को टाइगर सफारी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रविवार को पर्यटकों ने सफारी के दौरान इन दोनों बाघों को नजदीक से देखा। इससे पहले ये बाघ केवल जैविक उद्यान क्षेत्र में रखे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। नीट UG पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेशों के 14 केंद्रों पर कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी रविवार को नीट UG की पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फलोदी में दर्ज किया गया। आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 25 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इस बीच विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले में रखी तैयार फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी। विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाईमाधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: मिस पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए

0: की गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: बुधरी ताती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई, सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है?
2: हम जैसे जंगल में गांव में रहने वालों को चयनित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें खुश है। हमारे जो समाज के लोग भी संकुचित रहते थे, बिना उनको कोई पूछताछ नहीं, ऐसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा जो मिल रहा है, उसके लिए मैं सभी के लिए बहुत खुश हूँ।
1: आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
2: गांव ईरानार में ही मेरा जन्म है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे, हम किसान के परिवार की हूँ और गरीब घर की हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल की और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहां पर पैदल पैदल जाते थे, वहां काम करते थे सेवा भाव पे। ऐसा ही कई दिनों से बीता है। फिर माँ भी हमको एकदम, हम लोग दो भाई दो बहन, ऐसे 4 भाई बहन थे, बड़े भाई तो नहीं है अभी, हम लोग अभी 2 बहन 1 भाई है। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। फिर 15 साल का आयु था, मेरे मन में ऐसी पता नहीं कैसा आया, और हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि ये सब बचपना में जैसा गुजरे और आज यहाँ तक की पहुँच गए।
1: आप पिछले करीब 40 वर्षों से आदिवासी इलाकों में और वन क्षेत्रों में नशा मुक्ति तथा सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही हैं। ये सब आपने कब, कैसे और क्यों शुरू किया?
2: ये 1984 में मैंने नागपुर चले गई और महिलाओं के बीच में काम देखी, व्यवहारिकता 2-3 महीना सीखने के बाद, देखने के बाद मैं वापस आई। और हमें भी मन में आया कि मेरे दक्षिण बस्तर हो, बस्तर हो, जहाँ भी हो, हजारों बहने अनविज्ञता, कभी शिक्षा नहीं पाए, स्कूल को पता नहीं है, ऐसी बहनों के बीच में जाके काम करना चाहिए। उसी समय से मेरा 84 से मन में आया है और मैं इस क्षेत्र में 1986 में ही काम शुरू की, और विशेष करके अब उन्माड़ को पहले चुई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ। और वहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में काम करना है तो एक आदमी से नहीं होगा, यहाँ के लोकल लोगों को साथ लेना पड़ेगा, इनके साथ में काम होगा। 1986 से ही निरंतर साल भर का पूरे 500 गांवों को संपर्क में ली हूँ, एक लक्ष्य रखी हूँ, सबसे पहले मैं 500 गांवों को संपर्क करूंगी और इसी समाज से जो बहनें मिलेंगे तो उनके साथ में मुझे काम करना होगा, उनको प्रशिक्षित देना है और कार्य काम कैसा करना है, मैं उन्हीं से स्टार्ट की हूँ। 15-20 साल से 30-35 साल की बहनों को हमने यहाँ पर वापस उनको लाते थे, लाने के बाद उनको साक्षरता सिखाए, उनको एकदम बच्चे जैसा पकड़ पकड़ के उनकी बड़ी बहनों को सिखाना, मन तो तकलीफ तो है, जैसा गिल्ली मिट्टी को आकर देना सरल होता है पर वैसे बड़े लोगों को कठिन परिस्थिति में भी सीखे हैं। तो मैं उनको साक्षरता सिखाने के बाद ही ये सब कार्य शुरू किए हैं और उनके कारण से सब बहुत अच्छा सफल भी मिला है और कार्य करने में गति हो गया, कि क्योंकि 1 साल हमने पूरे गांव को देखे हैं, परिस्थिति देखे हैं कि इनको कैसा किस टाइप के काम करना है, क्योंकि हम लोगों को देखने से, हमारे समाज के लोग हैं जंगल इलाका में रहने वाले, हम लोगों को देखने के बाद ही दोबारा हमारे सामने आना पसंद नहीं करते थे। सारे कठिनाई देखने के बाद जो है हम लोगों के मन में ऐसा एक तो काम हुआ कि इनके बीच में हमको बड़े ठोस रूप से काम करना चाहिए। करीबन 150 तक ऐसी बहने, पूर्ण टाइम काम करने वाले बहने भी साथ दिए और साथ मिले, फिर हम काम को फैलाए हैं। ऐसा है,
1: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
2: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे है कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर, उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है, उनके पास उठना बैठना, उन लोग जैसा रहते हैं उनके साथ रहना, जो खाते हैं उनके साथ खाना, और जैसे कभी ठंड में है तो बिना कपड़ा के सोते रहे, अभी तो विकास हुआ, उस समय उनको पहनने के लिए एक साड़ी होता था, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता था, किसी के पास एक कंबल होना मैंने बहुत बड़ी बात समझते थे। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तकलीफ हुआ है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है। उनके साथ काम नहीं करती तो उनके बीच में नहीं जाती तो शायद काम

0: करने का मुझे भी इतना अनुभव नहीं होता कि हम क्या करेंगे कैसा करेंगे। उनके पास टैलेंट जाने के कारण, इतना घूमने के कारण, ये सभी उस समय रास्ता नहीं होता था। कभी साइकिल जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता था, जैसे गाय बैल जाता है ऐसी रास्ता से हम लोग पूरे समय में उनके पास पहुंचे गए।
1: आपने अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया? और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण देती थीं, या अभी भी किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण देती हैं?
0: इस समय तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए इसलिए मन में आया कि हमारे एक तो ऐसा गरीब स्थिति रहा, तो उस समय सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार भी देना है, संस्कार भी देना है, जागरूकता लाना है। तो ये मन में आया कि हम लोग उनको साक्षरता भी बनाए। साक्षरता लगभग ही 400-500 बहनें उसमें साक्षरता ली है, 5वीं 8वीं 10वीं, कभी स्कूल नहीं गए ऐसी बहनों को हमने साक्षरता बनाए, आत्मनिर्भर किए। दूसरा है कि हम लोग उनके पास जाते थे, कभी 1 पैसा 2 पैसा होता था, उस समय तो सीट का घर नहीं होता था, घास भूसा का घर होता रहा, वहां पैसा छुपा के रखना, फिर जमीन में गाड़ के रखना, कभी दिमाग पकड़ता रहा, कभी चूहा कतरता रहा। तो ऐसी लोगों को हमने आत्मनिर्भर करना, उनको आर्थिक स्थिति सुधारना है तो कैसा करना होगा, उनको हम लोग उनको सिखाए, पास में लाए, समझाए। और बैंक को कभी नहीं जानते थे, अब वहां तक उनको ले जाके 10-12 हजार खाता खोले। उस समय उनके पास पैसा नहीं होता था, 500 रुपये 50 रुपये में हमने खाता खोले। बैंक मैनेजर से भी बात की है कि इनका आर्थिक स्थिति सुधारना है, इनको निर्भर करना है, उनको स्वयं पर स्वावलंबन बनाना है, तो आप भी इनको मदद करिए, 10 रुपया भी लाएंगे तो उनको खाता में जमा करिए। फिर सिलाई का प्रशिक्षण दिए, साथ साथ में कढ़ाई बुनाई का काम किए, ऐसा आत्मनिर्भर उनको किए हैं, स्वयं सक्षम उन खड़े हो गए। और आज जो है 1 लाख 2 लाख हर महिलाओं में जरूर होगा।
1: महिलाओं के अलावा आपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काफी अच्छा काम किया है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं।
0: क्योंकि उस समय बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, माँ के साथ मजदूरी करना या फिर वहाँ इकट्ठा करना, आप जान रहे हैं ऐसा उनका जीवन व्यतीत होता था। हमने सोचे कि इनको इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं का नागरिकता है, ये गांव के होते हैं, और आने वाले समय में उन्हीं लोगों के भविष्य कैसा बनाना है। हम लोग सोच के एक बाल संस्कार केंद्र के नाम से हमने शुरू किए हैं, कई स्थानों में बाल संस्कार शुरू किए। 4 साल से 5 साल तक की हमने उनको साक्षरता, खेल कूद से हंसते हंसते कई प्रकार का करते हुए उनको आगे बढ़ाए हैं। 6 साल होने से हम लोग सीधा स्कूल में उनको भेजने का कोशिश किए हैं। तो ऐसी कई जगह में हमने बाल संस्कार केंद्र के रूप में किए हैं, कई बच्चों का आज ही भविष्य बहुत बना है, हजारों बालक बालिका है शिक्षा पाए हैं और स्कूल जाते हैं, जहाँ नहीं जाते वहां तक भी हमने इस सब किए हैं। आबा स्मार चित्र जैसा हम लोग को देख के भागने वाले माता बहने आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आज कोई घर में रखवाली करने के लिए भी कोई नहीं, ऐसा बच्चों को भेज रहे हैं। बहुत अच्छा सफल हुआ इसमें भी बच्चों का, आज ही अच्छे अच्छे पद में उन्होंने पहुंचाए, और अभी मिलते भी है तो बोलते हैं कि धन्यवाद दीदी, आपने हमको बहुत आगे किए हैं, बड़े बड़े पोस्ट में है, उनका जिंदगी अच्छा बन रहा है। वैसा कई बच्चों के लिए हमने काम किए शिक्षा के रूप में।
1: बुद्री जी, आपको इस इलाके के लोग बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगता है, और ये नाम आपका कब और कैसे पड़ा था?
0: ये तो मैं 1986 में जब जाने लगी हूँ तभी से लोग ही ये हमारे लिए पूरा चिंता करती है। एक हमारे घर में कोई बड़े होते हैं तो हम अच्छा लगता है, जैसे कि परिवार में कोई बड़ा होता है, लोग आदर से उसको नाम नहीं लेते, बड़े दीदी के नाम से जाना जाता है। ये नाम 1986 में जब मैं गांव में जाती थी, लोगों के साथ बैठना उठना, हम तो बड़े को बड़े आदर करते हैं, माँ है तो माँ बोलते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को प्यार से नाम लेते हैं, वो हम लोग अपने आप उन्होंने चुने हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सबका चिंता करते हमारे बड़े दीदी है, वैसा इस नाम से लोग अधिकतर लोग बोलते हैं। और आजकल तो माँ कह के भी पुकारना चालू किए, इस परिवार का हम लोग यहाँ का सब परिवार के एक सदस्य के समान है, और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग हमको बड़े दीदी के नाम से छोटे से लेके बड़े तक नाम लेते हैं, तो अच्छा लगता है समाज में जाके, क्योंकि हम उस समाज से घुल मिल होके रहते हैं, समरसता एक मिलाते हैं।

0: सबको एक समान होता है।
1: आपने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार भी किया है, तो ये आपने कब, कहां और कैसे सीखा?
0: जड़ी बूटी का क्या है, हमारे अकेले ने, हमारे साथ में 7-8 बहने लोग हैं, तो हमारे बहनों में भी बहुत कुछ ही इस बारे में ज्ञान है। जैसे जड़ी बूटी इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जंगल में जितना भी रहने वाला हमको बचपन से नॉलेज है, और एकदम कमजोरी हो जाते हैं 6 महीना तक, साल भर तक लोग ऐसी कमजोरी में रहते हैं। हम उन ऐसी लोगों को, हम यहाँ का ही जो वस्तु मिलता है तो उसको इकट्ठा करके हम

0: अभी है ये सभी दवा हम लोग उनको, माने दवा माने यहाँ हमारे जो हमारे आँख में जो खेती करते हैं उसी में से हम लोग इसको बना के खा सकते हैं, तो कितना हम लोगों का तंदुरुस्त होता है। हम लोग तो ये तो हमारा परंपरा है, आदिवासियों में तो जुड़ा हुआ रहता, प्रकृति से जुड़े हैं, इसका सब मालूम रहता है। सूजन आने से कैसे उसको करते हैं, उबाल के कैसे नहलाते हैं, सूजन कैसे उतरता है, घाव होने से ये दवा लगाने से घाव बढ़ता है, ये सारे जानकारी हम तो इंसान के गाय बैल से लेकर सभी का सेवा करते हैं।
1: और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, तो आपका योगदान देश और दुनिया जाने और सरकार की ये जो पहल है ये आपको किस तरह से लगती है?
0: हम लोग तो अभी तक की 1984 से आज तक ने जो काम किए हैं, जो हम चाहते हैं कि इस काम को गुप्त रूप से रहे, काम करते रहे, लेकिन ये ऐसा एक काम होता है कि इसको छुपा नहीं सकते हैं। जन जन में पहुंचने वाला काम है, हर व्यक्ति का पुकार है, इस गांव से लेकर नगर से लेकर बड़े बड़े शहर से लेकर केंद्र तक का ये अपने आप ही होने वाला चीज है। तो आगे फोकस हो गया, आगे चला गया, और आज हम जैसे कि धूल में मिले हुए कंकड़ को परसमणि बनाने की कोशिश करने वाली सरकार है उनके हाथ में, और इसमें बड़ा समाज है, ये समाज का बल है, समाज का ऋणी है। आज तक हमने जो किए हैं कि हमने भी नहीं कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा अवार्ड जो है कभी होगा, और सम्मानित करने का कभी मौका हमको भी मिले, ऐसा कभी हम लोग को पता भी नहीं था। लेकिन आज ही आप सभी का सहयोग है, हमारे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला और पूरे बस्तर संभाग, हमेशा लोग सोचते थे कि लोग ही अबूझ है, आप जान रहे हैं, तो ऐसा क्षेत्र में भी आज ही उभर कर खाम सामने आया। ये कार्य का परिणाम है, ये सब करने के लिए होता है, और ये सब आज ही जो पिछड़े समाज भी चाहता है कि हमारे बीच में कोई सम्मानित है, वो उनका सम्मानित है ये सब।
1: कार्यक्रम में शामिल होने, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9:25 हो रहे हैं। समय है लोक संगीत का, लीजिए सुनिए अभय सिंह गहलोत की आवाज़ में ये लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत। अभय सिंह गहलोत थे कलाकार। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण

कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्ज्य स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवाद

स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा

0: बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
1: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू जनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल, शादाब साबरी और शान की आवाज़ों में फिल्म जय हो से साजिद वाजिद का संगीत शुदा गीत, जिसे बोल दिए हैं समीर अनजान ने।

0: वो पूछ रहे हम किस।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था सिम्बा। आवाज़ें थीं राहत फ़तेह अली ख़ान, आशीष कौर और तनिष्क बागची की। संगीत भी तनिष्क बागची का था, रश्मि विराग ने गीत को बोल दिए थे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
0: आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अखिल सचदेवा और बंशल गुजराल की आवाजों में अगला गीत। शबीर अहमद के बोल हैं, संगीतकार हैं अखिल सचदेवा और फिल्म है बद्रीनाथ की दुल्हनिया।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अखिल सचदेवा, ध्वनि भानुशैली, भृगु पराशर की आवाज़ों में अगला गीत। कुणाल वर्मा ने गीत को बोल दिए हैं। अभिजीत वगानी का है संगीत और फिल्म का नाम है लुका छुपी।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी हाँ? आपके नाम
5: सब कुछ, मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म एक पहेली लीला से तुलसी कुमार, आलम खान, ऐश्वर्या मजुमदार और डब्बू मलिक की आवाजों में अगला गीत। गीतकार हैं कुमार और उजैर जायसवाल का है संगीत।

ये आवाज़ थी सेवन बैन की और साथ में आपने सुना साथियों को। फिल्म थी बागी 4। गीत को बोल दिए थे समीर अनजान ने, सिद्धांत मिश्रा का था संगीत। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म है दे दे प्यार दे 2। आवाज़ें हैं आदित्य और पायल देव की। कुमार ने गीत को बोल दिया है, पायल देव और आदित्य देव का ही है संगीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से। धड़क 2 के इस गीत को आवाज़ें दी थी दर्शन रावल ने, जोनीता गांधी और रोचक कोहली ने। गीत के बोल थे गुरप्रीत सैनी के, रोचक कोहली और शरण रावत का था संगीत। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली पेशकश, लीजिए सुनिए फिल्म हक से। विशाल मिश्रा की आवाज़ है, कौशल किशोर ने गीत को लिखा है, संगीत भी है विशाल मिश्रा का।

0: फिल्म डॉली की डोली के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ राहत फ़तेह अली खान ने दी थी, लिखा कुमार ने था, संगीत साजिद वाजिद का था। फिल्मी गीतों का ये सफ़र यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बज रहे हैं, समय हो चला है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का। प्रस्तुत है धारावाहिक संख्या 12।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर SP शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द NDA गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. SP Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
3: Thank you.
2: So Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
3: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो GDP है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन

0: या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था, तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे। मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे। हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हों, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू होगी, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 2,20,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली, और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं। हमारे देश में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलियंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी।
1: एब्सोल्युटली। सो मिस्टर चनॉय, Dr. Sharma has extensively explained that how the ease of doing business has become the mantra for the push that has come to the manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
1: Yes.
2: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
1: Mm-hmm.
2: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
1: Yes.
2: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you are doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it. This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it verified or something by someone. Now you can actually do it on yourself. The third thing is, I remember very clearly for manufacturing, and taking S.P. Sharma's point earlier, there were 1,947 compliances required and things to be filled by a particular company in the manufacturing sector over a period of year. Over the reforms, this is actually reduced. The same compliance was for a large company and for a medium and small company. So that is what has happened here. But I think you must see the reforms and the thing from the view of a street vendor.

0: single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses, and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India. Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements, 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business, that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
0: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence.
1: Yes.
0: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned, that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: Our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. Like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: सो मिस्टर चनोय, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम, और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सूरज जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी जी,
2: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे, और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए, तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटों को

0: बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट
1: जी,
0: ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था
1: जी।
0: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो।
1: हाँ।
0: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था, अब कहते हैं नहीं बेटा आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया, और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के,
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक का सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल। आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए कोविड के पहले तो हम ना पीपी किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीए किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास प्रांत के रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे
1: जी,
0: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेज और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पे डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कम्पिटेटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है, और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देते थे, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में एक कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन।

0: And of course, technology has been a big enabler in these 12 years, क्योंकि उसको बहुत तेजी से adopt किया गया है. जो opportunities government e-marketplace द्वारा लाई गई या जो ONDC है, One Nation Digital, and logistical reforms जो हुई है logistics में, उनको आप कितना important मानते हैं MSMEs के लिए, small businesses के लिए, अपना जो भी product है या service है उसको पहुंचाने के लिए market तक?
1: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ease of doing business रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है. जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है.
0: yes.
1: और ओएनडीसी प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है. आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा. तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट

0: आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP। तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
1: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव,
0: जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन ए रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ नई बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा GDP का साइज ऑफ GDP दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स हैं और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पर इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
0: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो MSMEs है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: ओके, अनदर पॉइंट मिस्टर चिनॉय विच आई वुड लाइक योर यू नो व्यू ऑन दैट लॉजिस्टिक्स, यू नो PM गति शक्ति, वेयर दे हैव टेकन अ मल्टी मॉडल अप्रोच टू फिजिकल कनेक्टिविटी, देन देयर इज लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, यू नो द वे द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड वेयर यू कैन जस्ट ट्रैक रियल टाइम कार्गो, और देयर आर सो मेनी रिफॉर्म्स फॉर फास्टर कस्टम क्लियरेंसेज एंड स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट सपोर्ट। How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
2: So, Sunilji, you've talked of 3 different things and I'll answer each one separately. So, first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, you know, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown, a lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. You know, we import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. Now, the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
2: And the processes were

0: Totally running out of time. Would you like to say something, Dr. Sharma?
1: Yes, Sonuji, I would like to mention one more promising area, which is the artificial intelligence, which is promoting and supporting the businesses' trajectory and making them more and more easier. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं. हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम.
0: तो ये एक ब्रेक थ्रू
1: जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन द नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम.
0: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
2: थैंक यू.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम. आज इस कार्यक्रम का 21वां एपिसोड प्रसारित हुआ. हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं. आइए सुनते हैं विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी. श्री रबीलाल टुड्डू.

0: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुडू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते।
1: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
2: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, बुढ़ापे में ऐसा मैसेज हमको मिला है ये तो खूब ही आनंद का बात है। बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज़्यादा खुश हैं। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
1: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
2: किताब एक ड्रामा का है ये परसी खतीर। ये परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बात भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए, हम बहुत खुश है।
1: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
2: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं।

0: मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था 8वां सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए। इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके करके बाद में जब डिक्लेयर हुआ ये संताली भाषा अष्टम तपसील में इंक्लूड हुआ है, ये जो सक्सेस है ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी, ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों मिलके बैठो सक्सेसफुल ये मिला है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
0: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो वो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा, लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करते हैं।
1: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
0: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा, लेकिन बांग्ला हम लोगों का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संतली। तो हम लोग क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा संतली स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहाँ हम जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है, आंसर पेपर में हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो मास्टर लोग को है बहुत पसंद आता था, ये लड़का तो वो माने अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हम सिर्फ क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है किताब में, हम पढ़ा भी है। क्या करता था, जब लिखता था आंसर पेपर जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर के पास से, आप लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आ गए हम लोग, जब पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था, हम तो रिएक्शन लेता था कैसा लगा है कैसा ही है, वो बोलता ना हम बहुत अच्छा लिखा है। तो अब तक तो इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया लिख के गया लिख के गया, ऐसे करते करते अरे लेखक का एक दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एक इंस्पिरेशन मिल गया।
1: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
0: प्राइमरी गांव में ही है, नोआड़ा गोआड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहाँ से पास आउट होके हम कलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए हम प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ही ग्रेजुएशन किया है।
1: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
0: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लर्क शुरू किया हम, 4 साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ 3-4 नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बंगाल का ऑडिटरशिप एक साथ मिला।

0: इंडिया सब। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर। उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है ये के लिए, हायर पोस्ट के लिए हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर्ड किया है। लास्ट में रिटायर्ड किया है ओडिशा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
1: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना टूट जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए, यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
1: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
0: अभी तो रिटायर्ड कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा। फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक का साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी का साथ तालमेल के काम करके जाएगा। जितना दिन हम जिएंगे इतना दिन काम करेंगे। और अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपुल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा। कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से, इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है। इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं, कितना संभव होगा मालूम नहीं।
1: टूडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
0: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पिछड़े पड़े हुए हैं, बहुत सा नेग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लेख के बहुत सा पीछे चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ना है।
1: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, लेकिन हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसे भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटेलिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक तो टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। हर आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
1: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
0: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था वीर बिरसा। तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा साजोंदा, वही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य एकेडमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
1: टूडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
0: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, ये नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिल रहा है, ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है। अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम

0: करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलेता है। यही अच्छा वाला बात है। हम तो ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, यही अच्छा बात है।
1: टूडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टूडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुडू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, श्री रबीलाल टुड्डू। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, भारतीय संस्कृति की खूबसूरती उसके रंगों में नहीं बल्कि उसकी सादगी और शालीनता में बसती है। जब रेशम का कपड़ा और उसकी नज़ाकत साथ ही जरी का काम हो तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत जन्म लेता है जिसे बरसों बरसों तक गुनगुनाने का मन करता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही लोकप्रिय और खूबसूरत गीत।

आशा भोसले और शमशाद बेगम के गाए नया दौर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए

0: सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिरसिक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:10 पर आप सुनेंगे नाटक एक्सचेंज। लेखक होंगे श्री हरीश बी शर्मा। दिन में 1:05 पर बहने कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत। चर्चा के विषय रहेंगे लोक आस्था और लोक मेलों का महत्व, पर्यटन डायरी कश्मीर की वादियां, हर घर योजनाओं का लाभ, सुशासन के 12 वर्ष। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता बाल अपराध एक पड़ताल। वार्ता करूंगी डॉक्टर चंचला पाठक। साथ ही रसोई की बातें और गीत संगीत।

संध्या 5:05 पर युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण होगा। आज की बात का विषय रहेगा भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान। लघु जानकारी आप सुनेंगे भारत की वैश्विक पहचान के बारे में, सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गीत संगीत।

संध्य 6:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। श्री अशोक कुमार हल्दार। जिले की चिट्ठी 6:40 पर जयपुर केंद्र से रिले की जाएगी।

संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, मूंग उत्पादन की उन्नत तकनीक, कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी अनुदान योजनाएं, घर के पक्के शौचालय का महत्व, लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य।

रात 8 बजे आप सुनेंगे विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। श्री मोहन नागर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 8:20 पर और रात 9:15 पर। साथ ही आप पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम सुन सकते हैं रात 9:30 पर। खेल जगत कार्यक्रम रात्रि 10 बजे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:30 पर सुगम संगीत, गीत और गजलों का कार्यक्रम प्रसारित होगा।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए नाटक एक्सचेंज। लेखक हैं श्री हरीश बी शर्मा। प्रतिभागी मोहम्मद रफीक पठान, कविता वर्मा, आनंद वी आचार्य और संगीता झा।

0: अच्छा भाई, अब आज्ञा मिले, अगले शनिवार तक।
1: अगले शनिवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: चलो भाई, वो रात गई। ये सुबह नहीं नहीं अरे विशाखा, एक चाय हो जाए।
1: लाती हूँ।
0: जब तक मैं ये अखबार देख लेता हूँ, वही पुराना खबरों का सिलसिला, हत्या, डकैती, बलात्कार। छी, ऐसे में कहाँ होता है प्यार रोहित बाबू, कहाँ होता है प्यार। अरे यार चाय तो पिला दो।
1: ला रही हूँ ना। ये लो।
0: वैसे खुश नसीबी है हमारी आज रविवार है। अगर ये शनिवार होता और अमन अभी तक यहाँ आ चुका होता और तुम निकल चुकी होती उसके साथ है।
1: और तुम आरती के साथ।
0: अरे भाई हर्ज क्या है, साथ साथ नौकरी करते हैं भाई है।
1: हाँ, हर्ज होता तो ऐसा थोड़े ही होता। सच रोहित, हम संसार के उन सभी पति पत्नियों से अलग हैं जो पति पत्नी की रिजिड परिभाषा में दबे एक दूसरे को धोखा देते हैं।
0: सपने देखते रहते हैं फिल्म अभिनेत्रियों के और अपनी घरेलू सी पत्नी को बाहों में भरते हैं।
1: यकीनन ऐसा ही होता है।
0: तो कैसा रहा सफरनामा?
1: नो नो, मैं नहीं बताऊंगी।
0: इतना यादगार है।

0: कमेंट्स।
1: हाँ, गोपनीय रखना चाहती हो
0: क्या? हमारे बीच अब कुछ गोपनीय रह गया है?
1: अरे पर्दा तो है ही ना।
0: अगर पर्दा है तो फिर पारदर्शिता कैसी होगी?
1: तुम जानो भाई।
0: मैंने तो जाना है रोहित, कहते हैं पुरुष पूर्णता देता है।
1: कहते हैं औरत हमेशा प्यासी रहती है
0: क्योंकि उसकी प्यास को समझने की कोशिश ही नहीं की जाती।
1: लो भाई, ये तो प्रवचन शुरू कर दिया तुमने।
0: नहीं, यही सत्य है। हमेशा औरत पर थोपा जाता रहा है, कभी उसे ये जानने की कोशिश नहीं की जाती कि उसे क्या चाहिए।
1: कुछ भी होता रहा हो भाई, मेरे से तो तुम्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं ना?
0: शायद नहीं।
1: मान ये कि अमन भी पूर्ण नहीं क्यों?
0: मेरा मतलब ये तो नहीं था।
1: लेकिन मैं तो मतलब ही जानना चाहता हूँ ना।
0: मतलब तो पूरा हो ही रहा है ना।

0: पंचमपन पे, ताकि हमारी दोस्ती कभी भी शक के दायरे में उलझ कर ना रह जाए।
1: क्या क्या पति पत्नी के बीच टूटने का बड़ा कारण शक होता है?
2: एक कारण तो होता ही है ईशा का।
1: शायद इसीलिए हमने शक की सारी शंकाएं खत्म कर दी।
2: शक समाप्त। जिंदगी खुशहाल।
1: काश ऐसा हो सकता, कहा जा सकता कि शक ही एक वजह है, बाकी कुछ नहीं। तुम कह सकते हो कि सच को खत्म कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। क्या वास्तव में तुम मुझ पर शक नहीं करते?
0: भाई ये क्या करो, तुम मुझ पर शक कर रही हो।
1: इसे तर्कों में मत उलझाओ।
0: ये बात है तो कहो, क्या सुनना चाहती हो?
1: नहीं, मेरा मानना है हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, शक अपनी वजह बना ही लेता है।
0: जैसे?
1: जैसे ये कि मुझे लगता है तुम मारती को ज्यादा भाव देते हो।
0: इस शक की कोई वजह भी तो होगी। वैसे तुम्हारा ये शक निराधार है। अमन से प्यार तो तुम भी करती थी, आरती से तो मेरा कोई खास।
1: हाँ, यही तो कहना चाहती हूँ। सचमुच कई बार मुझे डर लगने लगता है।
0: तुम्हें और डर, वो भी अमन का साथ मिलने के बाद?
1: हाँ रोहित, हाँ मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है। कई बार इस एक्सचेंज में मुझे आरती फायदे में लगती है और तुम भी।
0: लेकिन ये तुम्हारी सोच है।
1: निराधार नहीं है रोहित, ऐसा महसूस हुआ है तो वो गलत नहीं है। कई बार मैंने इसे गहराई से महसूस किया है रोहित, इसे आधार ही नहीं कहा जा सकता।
0: आधार तो इतना भर है कि मुझे एडजस्ट करना पड़ा, और तुमने जो चाहा वो मिल गया तुम्हें।
1: यानी तुम खुश नहीं?
0: क्या इसे खुशी कहा जा सकता है? लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी तरह मैं आरती की भी खुशी का कारण बना हूँ।
1: क्या कहती है आरती?
0: उसी की भाषा में बताऊं तो उसके लिए देवदूत हूँ, देवदूत।
1: बकवास करती है वो।
0: क्यों, तुम्हारे लिए अमन देवदूत जैसा नहीं है? तुमने कहा था हवा के एक झोंके की तरह आया और फिर सांस सांस में बस गया। जिंदगी बदल गई।
1: रोहित, तुम्ही ने ये सब बताने के लिए मुझे मजबूर किया था।
0: इनकार थोड़े ही है, फिर भी मैंने भी बेड़िया नहीं डाली, कभी रोका नहीं तुम्हें।
1: तो रोक देते ना,
0: सांसें नहीं उखड़ जाती।
1: ये तो वक्त ही बताता।
0: लेकिन मुझे आरती कैसे मिल पाती?
1: नजर जो थी तुम्हारी,
3: तुम चाहो तो बुरी नजर भी कह सकती हो।

0: रोहित।
1: हाँ विशाखा।
0: लगता है हम बहुत दूर हो रहे हैं।
1: तुम्हें ऐसा लगता है?
0: हाँ रोहित, देखो ना, हम दोस्तों की तरह बात तो कर रहे हैं, लेकिन दायरे कितने बढ़ गए हैं। हमारे परिचय का आधार दोस्ती नहीं, रिश्ता था, सात फेरों का रिश्ता। उसका क्या हुआ? हम पति पत्नी हैं रोहित, पति पत्नी।
1: इनकार कहाँ है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अभी अभी अमन गया है।
0: नहीं रोहित, वो बात नहीं है। जानते हो, कल सारी रात हमने आंखों में काट दी।
1: क्यों, क्या हुआ?
0: अंदर से कुछ खत्म होता हुआ महसूस किया है मैंने।
1: कोई

0: वजह तो होगी।
1: जैसे तुम नहीं जानते।
0: मेरे लिए तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, यही माना और ऐसा ही किया।
1: फिर आरती कैसे आ गई तुम्हारी जिंदगी में?
0: ये कहानी पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। दफ्तर आई थी मुझसे मिलने तुम्हारी शिकायत लेकर। मैंने कहा मैं सब कुछ जानता हूं। ये सुनकर वो चकित हो गई। उसके सवाल मुझे परेशान करने लगे, उसके रोज रोज के फोन एक जैसी बातें। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। आखिर क्यों क्यों, जब तुमने नहीं छिपाया, इसके बाद तुम्हें सारी कहानी पता है। हमारा एक साथ मिलना, एक स्वीकृति, हर शनिवार, कुछ भी तो नया नहीं है विशाखा।
1: बात इतनी भर नहीं है रोहित, मुझे मुझे कोफ्त होने लगी है। शनिवार मुझे घटिया लगने लगा है। एक्सचेंज, आदमी नहीं कोई चीज हो गए हैं हम।
0: ऐसा तुम कह रही हो। इसे शनिवार शुरू होने का असर कह सकता हूं मैं,
1: लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम लोगों ने हम सब बदला लेने के लिए ऐसा किया है, शनिवार इजाद कर लिए हैं। यकीन मानो रोहित, मैं अमन से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी मैं।

0: हाँ हाँ यकीन है मुझे,
1: लेकिन मेरा शक बढ़ता जा रहा है।
0: औरतों की फितरत होती है शक करना।
1: मुझे लगता है मर्दों की आदत होती है।
0: अमन कह रहा था, लेकिन अमन भी एक मर्द हुआ ना। मर्दों की जमात में मेरे जैसे भी तो शामिल है मैडम।
1: मजाक की बात नहीं है रोहित, उसका कहना है आरती तुम्हें सब कुछ बता देगी।
0: क्या सब कुछ?
1: नहीं जानती।
0: उसे ऐसा क्यों लगता है?
1: उसे लगता है कि तुम बदला ले रहे हो और आरती तुम्हारे साथ है।
0: तो ये तुम्हारी नहीं अमन की सोच है।
1: लेकिन तुम्ही ने बताए थे ना आरती के विचार।
0: इसमें असामान्य क्या? क्या तुम अमन से ऐसा कुछ नहीं कहती?
1: कहा ना रोहित, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे और पूरी कॉलेज लाइफ हमने साथ गुजारी थी।
0: इसीलिए उसके सिगरेट के धुएं और खाली जेब से तुम्हें बहुत प्यार है।
1: ये आरती ने बताया तुम्हें?
0: जैसे मैं उसकी लत और असलियत जानता ही नहीं।
1: क्या है उसकी असलियत बताओ। हाँ हाँ बताओ ना, क्या कहा है उसने अमन के बारे में?
0: अरे इसमें आवेश में आने की कोई बात ही नहीं। मैं तो यूं ही, तुमने ही तो बताया था, कहा नहीं था घर से रुपए लाकर देती थी?
1: तो तुम मुझे अंधेरे में नहीं रख सकते?
0: अरे कहाँ रहा अंधेरा।
1: नहीं तुम मुझे अंधेरे में नहीं रख सकते रोहित।
0: रहा कहाँ अंधेरा, अंधेरा तो पहले था विशाखा।
1: अंधेरा है रोहित, मुझे लगता है अंधेरा ज्यादा बढ़ गया है। अमन बदल गया है, कल वो पागलों की तरह तुम्हारे रूम की दीवार से कान लगाए बैठा रहा, सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। मुझे भी ये सब करने के लिए मजबूर किया उसने। वो बदल रहा है रोहित, तुम्हें सामने देखने पर अलग और तुम्हारे नहीं होने पर उसका बर्ताव अलग हो जाता है। बदहवास बौखलाया हुआ, रात भर गालियां निकाली है उसने। ये ठीक नहीं है रोहित, ये नाटक बंद होना चाहिए।
0: कौन कर रहा है ये नाटक? तुम इसे नाटक नहीं कह सकती। और मैंने कोई नाटक नहीं किया, हकीकत थी, छिपानी नहीं थी, बस इतना भर किया मैंने।
1: कहने जितना सहज नहीं है रोहित।
0: फिर शब्द क्यों दिए, चलता रहता सब कुछ।
1: हाँ यही तो कहना चाहती हूँ मैं, रहने देते अंधेरा, करते वैसा जैसा तुम चाहते थे, हम भी तो।
0: तुमने बताया था मुझे।
1: लेकिन अमन को पता नहीं था।
0: इसलिए अमन जब भी मुझसे मिलता अकड़ कर मिलता।
1: तुमने इसे इश्यू बना लिया है रोहित, और मैं जान गई हूँ। पहले तुमने सोची समझी साजिश रचकर मुझसे सब कुछ उगलवा लिया, और फिर अपनी पिछली जिंदगी में आने जाने की छूट देकर तुमने देवता बनना चाहा। मौका मिला तो अपना स्वार्थ पूरा किया। अब मैं जान गई हूँ सब कुछ, मैं जान गई हूँ रोहित, और तुम जानते थे रोक नहीं सकोगे मुझे, इसीलिए तुमने छूट दे दी। तुम जानते थे कि मुझे पा नहीं सकते, इसीलिए तुमने छोड़ दिया मुझे।
0: मैं चाहूं तो इन सारी बातों को नकार दूं, तुम क्या कर लोगे? लेकिन मुझे स्वीकार है, मेरे स्वीकारने में भी तुम्हें साजिश नजर आएगी। पुराने संसार में जाने की खुली छूट के पीछे मेरी महत्वाकांक्षा थी, देवता बनना चाहता था मैं। हाँ देवता बनना चाहता था मैं। यही आरोप है ना तुम्हारा, जो आरती के आने के बाद बना। सच तो यह है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती रही। बहुत बार तुम दोनों के बीच मेरी बेवकूफी मजाक बनी है मैडम, मजाक बनी है।

0: नहीं, तब लगता था प्यार लौटाया है तुमने हमारा।
1: ये गलत नहीं था, यही करना चाहा था मैंने।
0: और जो सामने है वो भी तो तुमने ही किया है रोहित।
1: क्या इसे संयोग नहीं कहा जा सकता?
0: इसे कुछ और भी कहा जा सकता है।
1: क्या कहा जा सकता है? क्या समझती हूँ प्यार के बारे में तुम?
0: प्यार के बारे में? प्यार विश्वास देता है रोहित, जिंदगी का एहसास है प्यार। प्यार बचाता है, दूर तक ले जाता है प्यार, जहाँ सिर्फ जिंदगी का संगीत होता है रोहित। और अमन के साथ मैंने ऐसे ही सपने देखे थे।
1: और मैं आ गया।

0: बचाता है, दूर तक ले जाता है प्यार, जहां सिर्फ जिंदगी का संगीत होता है रोहित। और अमन के साथ मैंने ऐसे ही सपने देखे थे।
1: और मैं आ गया तो संगीत बंद हो गया, खत्म हो गया ड्रामा।
0: कहां खत्म हुआ, तुमने तो मुझे रोका तक नहीं रोहित।
1: सोचा नहीं क्यों?
0: इतना सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली रोहित, ऐसा लगा कि हक मिल गया है मुझे। लेकिन इतने अरसे के बाद अब कुछ अलग सा महसूस होने लगा है। लगता है प्यार का संगीत ये जिंदगी नहीं है। मुझे तो ये भी लगने लगा है कि हम जिसे जितने भर को प्यार समझ रहे हैं वो प्यार है ही नहीं। मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, और तुम्हें मैंने तो कोई और मिल गया। बात मिलने की नहीं है रोहित, और ये मिलन जिंदगी नहीं हो सकता रोहित।
1: इसे समझने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे लगता है तुम बहक रही हो विशाखा।
0: ये बहकना नहीं है रोहित, कुछ नयापन महसूस कर रही हूँ मैं। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है रोहित।
1: तुमने इसमें जिंदगी तलाशी थी।
0: लगता है नजरें गलत दिशा में लगा दी मैंने, अब घुटन होने लगी है मुझे।
1: शायद घुटन नहीं होती अगर एक्सचेंज नहीं होता।
0: ऐसा नहीं है रोहित।
1: तुम्ही ने कहा था अच्छा होता अंधेरा रहता, सब कुछ साफ साफ हो गया ना तो तुम्हें बुरा लगने लगा, घुटन हो रही है। सच को इतने करीब से देखने का असर तुम पर नजर आने लगा है विशाखा।
0: क्या सच जान लेने का यही असर है? नहीं रोहित, बात इससे आगे की है। अमन की बौखलाहट सच है, आरती की भागीदारी सच है, तुम्हारा बदला सच है, और इन सब के बीच में मैं अलग थलग पड़ चुकी हूँ। मैंने प्यार किया था अमन से, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे साथ आरती को भी नहीं छोड़ना चाहता वो। आरती के लिए उसकी दीवानगी और मेरे लिए तुम्हारी बेरुखी, ये ऐसा सच है रोहित। अमन सब कुछ स्वीकार करने के बाद भी ये मानना नहीं चाहता। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी कीमत पर भी वो आरती को बांटना नहीं चाहता।
1: लेकिन तब तो उसे स्वीकार था।
0: इनकार तो अब भी नहीं है रोहित, लेकिन उसके तौर तरीकों ने मुझे अंदर से बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। लगता है मैंने अपने आप को खो दिया है रोहित। जितना ढूंढने की कोशिश करती हूँ उतनी ही बार एक नए भटकाव में उलझ जाती हूँ मैं। मुझे लगने लगा है कि मुझे कुछ नहीं मिला, ना अमन और ना तुम। कितना अच्छा होता कि तुम मुझे कुछ पूछते ही नहीं। कहते हैं ना कि लड़की जिसके साथ साथ फेरे लेती है उसी की हो जाती है। सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ नया संसार बचाती है वो, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना छोटा सा घर।
1: और एक दिन जब उंगली थामे बच्चों के साथ बाजार से लौट रही होती हैं, तो अपने सपनों के राजा से सामना हो जाता है, नजर मिल नहीं पाती, उंगलियां छोड़ नहीं सकती। बच्चे पूछते हैं मम्मी मम्मी कौन है ये, तो जुबान बोलना भूल जाती है, शब्द फूट नहीं पाते, कह नहीं पाते कि ये पहला प्यार है जिस पर अतिक्रमण करते हुए तुम्हारे पापा ने मुझे अपना बना लिया। सब फिजूल की बातें विशाखा, सब फिजूल की बातें हैं, बेबुनियाद। हम जो चाहते हैं वो करते हैं, तब गुण अवगुण हानि लाभ की बात नहीं सोचते। अमन और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने तुम्हें नहीं रोका, ये मेरी बेवकूफी हो सकती है, लेकिन आरती का मिलना मेरी बेवकूफी का पुरस्कार नहीं था। तुम्हें ऐसा लगा और अमन को भी ऐसा लगा, मगर तुम्हारा प्यार नहीं छीनना चाहता था मैं, लेकिन तुम्हें गवाना भी नहीं चाहता था विशाखा। तुमने इसे समझा कभी है? कभी समझाया इसे? आज तुम्हें परिवार याद आ रहा है तो ये भी ठीक है। जिंदगी की लहरों में प्यार कई रूपों में अभिव्यक्त होता है विशाखा। मेरा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अमन का प्यार, मेरा और आरती का प्यार। तुमने प्यार के इतने भर रंग देखे और बौखला गई। हम अपने सारे संबंध बांट सकते हैं, लेकिन पत्नियां नहीं बांट सकती, क्योंकि वे हमारे बारे में सब कुछ जानती है। ये सब कुछ कहीं और जाहिर ना हो जाए, ये डर हमेशा सालता रहता है विशाखा, हर समय हर वक्त।
0: तो क्या आरती ने तुम्हें अमन के बारे में

0: कुछ बता दिया।
1: मैंने तो पहले ही कहा था, और वैसे भी उसके बारे में सबसे अधिक तो तुम ही जानती हो ना विशाखा।
0: मैंने उसे प्यार किया है रोहित, प्यार सिर्फ देह की परिभाषा नहीं जानता।
1: मैंने कभी ऐसा नहीं कहा।
0: आरती ने बताया होगा ना।
1: क्या इसलिए अमन बुखराया रहता है?
0: मैं नहीं जानती।
1: तुम्हारी घुटन का कारण तो जान सकता हूँ।
0: रोहित प्लीज।
1: क्या हुआ विशाखा, सब ठीक तो है ना?
0: मैं वापस आना चाहती हूँ रोहित, बहुत दूर निकल चुकी हूँ मैं अमन के साथ। प्यार की तलाश में दौड़ते दौड़ते कई बार लगा कि मेरा रास्ता सही है, लेकिन मंजिल नहीं मिली। भटकाव और भ्रम के जंजाल से मुक्ति चाहती हूँ मैं रोहित, अमन के भ्रम से निकलना चाहती हूँ मैं। क्या तुम मेरे साथ नहीं दोगे रोहित, बोलो ना।
1: इतना आसान नहीं है विशाखा, नहीं। एक दूसरे की भावना की कद्र करते करते हम बहुत दूर निकल चुके हैं, बहुत दूर।
0: दूर निकल चुके हैं, दूर निकल चुके हैं, आरती के बहुत करीब आ चुके हो तुम।
1: विशाखा अब ये मुद्दा नहीं रहा।
0: इसीलिए कह रही हूँ ये मुद्दा खत्म कर दिया जाए।
1: एक बात बताओ, तुम कर सकोगी ऐसा?
0: हाँ, लेकिन लेकिन तुम नहीं। क्यों रोहित, क्यों?
1: वाकई मेरे लिए ये संभव नहीं होगा। मैं आरती को धोखा नहीं दे सकता। तुमने अपनी सहूलियत से हमें इस रास्ते पर जाने की इजाजत दी, अब वापस आना संभव नहीं है। हाँ, शायद आरती के लिए भी ये नहीं।
0: लेकिन रोहित मैं,
1: अधिकार की बात मत करना विशाखा, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, और हर दोस्ती में अधिकार नहीं रहता, सिर्फ भावनाएं रहती है, भावनाएं। फिर इस दोस्ती की भी क्या दरकार, जहां रिश्ता ही नहीं पनप सके। अब मर्जी तुम्हारी है विशाखा।
0: इतनी निर्दयी तुम कभी नहीं थे रोहित।
1: अभी भी नहीं हूं, लेकिन अब कीमत नहीं चुका सकता।
0: रोहित, कहीं कहीं तुम आरती से प्यार तो नहीं?
1: शायद ये सच भी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उसकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकता विशाखा।
0: रोहित, ये कहकर एक बार फिर से तुम देवता बनना चाहते हो? मेरे साथ भी यही खेल खेला तुमने। कह देते जैसे मेरे पापा ने कहा था, अपनी मर्जी से शादी कर दे। मैं तो आई थी ना रोहित, तुम्हारे पीछे पीछे चलते चलते तुम्हारे घर को अपना माना, तुम्हारे रिश्तों को भी स्वीकार किया मैंने। कर देते दूसरी दुनिया के सारे कपाट बंद, मेरे पापा ने किए थे जैसे। ये तुम्हारा पति धर्म ही तो कहलाता।
1: ये भी आरोप है मुझ पर?
0: हाँ हाँ, बंद कर देते कपाट, नहीं कुरेदी होती मेरी भावनाएं। तुमने डाला था ना आग में घी, और आज जब मैं वापस आना चाहती हूँ रोहित, तो मेरे सारे कपाट बंद करके खड़े हो तुम। क्या करूंगी तुम्हारी दोस्ती का, तोड़ दो इसे भी, तोड़ दो, खत्म कर दो इसे। जो कभी शुरू होना चाहता था आज आज तक नहीं हुआ।

हेलो हेलो कौन हेलो। हाँ कौन? हाँ बोलो। हाँ, आरती बोलो। हाँ बोलो आरती बोलो। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बोलो आरती बोलो। हाँ क्या हुआ? हाँ जहर? क्या आरती? हाँ अपने आप को संभालो। हाँ आरती आरती तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ संभालो अपने आप को। हम आते हैं अब जी।

0: हाँ हाँ
1: आरती आरती आरती विशाखा विशाखा जल्दी करो, अमन और आरती ने जहर खा लिया है। आरती बता रही थी अमन ने उसके खाने में जहर मिला दिया।
2: क्या मतलब आत्महत्या? ओह ये कैसा विराम, ये कैसा प्रेम, ये कैसी परीक्षा। काश काश हम संबंधों को बिस्तरों की तरह नहीं बदलते, नहीं बदलते, नहीं बदलते।
3: विशाखा देखा नैतिकता है।

अभी आप सुन रहे थे नाटक एक्सचेंज। लेखक थे श्री हरीश बी शर्मा। कार्यक्रम के प्रतिभागी थे मोहम्मद रफीक पठान, कविता वर्मा, आनंद वी आचार्य और संगीता झा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, श्रृंगार की बात हो, नटखट अदाओं का जिक्र हो और सदाबहार धुनों की चर्चा हो तो एक गीत बरबस ही होठों पर आ जाता है। जी हाँ, एक ऐसा चुलबुला और बहुत ही लोकप्रिय गीत जिसे वर्षों से श्रोताओं के दिलों में जगह बना रखी है।

0: आशा भोसले के स्वर में मेरा साया फिल्म इस गीत का ये
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर आशा भोसले का है, फिल्म का नाम है लोफर।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव पर 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में है। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। जोधपुर शहर के सरकारी पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने वाली 8 प्रसूताओं में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि इनमें से 6 प्रसूताओं की स्थिति सामान्य है, वहीं एक को एम्स में भर्ती कराया गया है।
1: पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो एम्स में रेफर कर रहे हैं वो हाईली डायबिटिक है और एक प्रसूता जो एमडीएम में है उसके पी लिया हुआ है, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है।
0: ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया है। संक्रमण के कारणों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए गए उपकरणों, दवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूरी तरह शांत रखने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इसे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $89 पर आ गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जैसलमेर से गिरफ्तार मुश्ताक अली को आज जयपुर की एक अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल और बैंक खातों की विस्तृत जांच के लिए अदालत से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस के अनुसार मुश्ताक पिछले 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ साझा करता था। प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के तहत 1,37,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 4 से 20 जून तक चले इस अभियान में सबसे ज्यादा शिकंजा अवैध काली फिल्म वाले वाहनों पर कसा गया। इसके तहत 51,000 से अधिक वाहनों में काली फिल्म हटवाई गई। साथ ही नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनाधिकृत चिन्ह, लाल बत्ती, नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई। यातायात महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। जिलेवार कार्रवाई में जयपुर पश्चिम सबसे अव्वल रहा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आमजन को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के विशेष अभियानों के सकारात्मक

परिणाम सामने आए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाए गए 9 अभियानों के तहत 24,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। 5 अप्रैल से 20 जून तक चले इन अभियानों में 5,000 से अधिक खराब हैंडपंपों की मरम्मत, पाइप लीकेज दुरुस्त करने और बाधित जलापूर्ति बहाल करने सहित लाखों लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई है। पिछले सप्ताह इस अभियान के दौरान एक दिन में 2,385 पेयजल समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के झांकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश झुंझुनू और सीकर के रामगढ़ में दर्ज की गई। वहीं सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान जोधपुर में 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अलवर, पिलानी और सीकर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने कार्यक्रम सुनेगी महिला जगत। आज की प्रस्तुति नेहा गोस्वामी और संध्या शर्मा की है।

0: नमस्कार सखियों, गर्मियों की मीठी यादों, छुट्टियों की सुनहरी बातों और मन को ताजगी से भर देने वाले खुशनुमा पलों के साथ महिला जगत के आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी सखी नेहा गोस्वामी।
1: और मैं हूं आपकी अपनी सखी संध्या ओझा। आप सभी को मेरा भी स्नेह भरा नमस्कार। आशा है कि आप सब स्वस्थ प्रसन्न और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद ले रहे होंगे।
0: सखियों, छुट्टियां चाहे छोटी हों या बड़ी, वे अपने साथ ढेर सारी यादें छोड़ जाती हैं। कभी परिवार के साथ बिताए पल, कभी बचपन की शरारतें और कभी किसी नई जगह की सैर।
1: बिल्कुल नेहा, मुझे तो छुट्टियों की सबसे प्यारी बात यही लगती है कि कुछ दिनों के लिए ही सही हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से बाहर निकल जाते हैं, है ना? और मन को भी ना थोड़ा आराम मिलता
0: बिल्कुल।
1: है और जीवन में एक नई ताजगी सी आ जाती है।
0: सही कहा संध्या। वैसे छुट्टियां तो अब लगभग समाप्त होने ही वाली हैं, है ना? ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि इस बार किसने अपनी छुट्टियां कैसे बिताएं?
1: वैसे नेहा, ये सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। बताओ, इस बार छुट्टियों में कहाँ घूमने गई थी तुम?
0: संध्या, इस बार मेरी मंजिल थी कश्मीर। वही कश्मीर जिसे प्यार से लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं।
1: अरे वाह, कश्मीर नाम सुनते ही सखियों मन में बर्फ से ढकी चोटियां, झीलों में तैरते शिकारे और बादलों से बातें करती वादियां घूमने लगती हैं। फिर तो नेहा ना, आज हम सब सखियां भी तुम्हारे साथ कश्मीर की सैर करने चलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सब कुछ तुमने शुरू से हमें बताना होगा कि आखिर तुमने अपनी यात्रा कैसे प्रारंभ की और कहाँ सबसे पहले स्पॉट किया।
0: सबसे पहले संध्या मैं श्रीनगर पहुंची, है ना? वहाँ ठंडी और सुहानी हवा ने हमारा स्वागत किया। लगा जैसे गर्मियों की सारी तपिश रास्ते में ही छूट गई हो।
1: वाह, कभी कभी जिंदगी का मतलब कहते हैं कि किसी जगह का ना जो पहला एहसास होता है वो मन जीत लेता है, है ना? क्या वहाँ का मौसम सचमुच में इतना सुहाना था नेहा?
0: हाँ संध्या, बहुत सुहाना था। दूर दूर तक पहाड़, हरियाली और साफ आसमान। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग वहीं सजा दिए हों।
1: वाह, और उस डल झील का क्या? उसके

0: बिना तो कश्मीर की यात्रा अधूरी मानी जाती है।
1: सही कहा संध्या तुमने, डल झील को देखकर तो मैं कुछ क्षणों के लिए बस उसे निहारती ही रही। शांत पानी में पहाड़ों और बादलों की परछाइयां बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी।
0: नेहा, मैंने तस्वीरों से मतलब तस्वीरों में तो बहुत देखा है, लेकिन सचमुच उस दृश्य के सामने खड़े होने का अनुभव ही कुछ और होगा, है ना?
1: बिल्कुल। और फिर मैंने पता है शिकारी की सैर भी की।
0: क्या बात है,
1: रंग बिरंगे शिकारी झील पर ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी चित्रकार ने कैनवास पर रंग बिखेर दिए हों।
0: क्या वहाँ झील पर तैरती दुकानें देखी थी नेहा?
1: हाँ देखी थी ना, और वही बात मुझे सबसे अच्छी लगी संध्या, है ना? कोई फूल बेच रहा था, कोई केसर बेच रहा था, तो कोई हाथ से बनी सुंदर वस्तुएं बेच रहा था। पानी पर चलता हुआ बाजार देखकर मैं हैरान रह गई।
0: क्या बात है, सचमुच में ये तो बहुत ही अनोखा अनुभव रहा होगा।
1: बिल्कुल, बहुत अनोखा था मेरे लिए तो।
0: और मुझे लगता है कि उस डल झील पर सिर्फ एक झील नहीं है वो, अब बल्कि अपने ना अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है, है ना?
1: बिल्कुल संध्या, और पता है उसके बाद मैं गुलमर्ग भी गई थी।
0: क्या बात है, अरे ये वही जगह है ना जहाँ की हरियाली और बर्फीले जो नज़ारे हैं वो पूरी दुनिया भर में
1: मशहूर है। और वहाँ पहुंचकर जैसा धरती ने हरी मखमली चादर बिछा रखी हो ऐसा लग रहा था मुझे।
0: मैंने ना उसके वीडियो देखे हैं नेहा, यहाँ तो ना बादल भी इतने करीब लगते हैं ना कि हाथ बढ़ाओ और उन्हें छू लो।
1: बिल्कुल,
0: और सच में ऐसी जगहों पर जाकर सचमुच महसूस होता है कि प्रकृति कितनी विशाल और कितनी सुंदर है सखियो।
1: और प्रकृति इतनी विशाल और इतनी सुंदर इसलिए भी है क्योंकि वहाँ एक जगह पहलगाम भी है ना। वहाँ बहती नदी, देवगार के ऊंचे वृक्ष और चारों ओर फैली हरियाली को बहुत सुकून देती है।
0: जानती हो नेहा, मुझे लगता है ना कि ऐसी जगहें हमें सिखाती हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ बिताए गए शांत पलों में भी मिल जाती है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात कही संध्या तुमने तो, है ना? सच में वहां बैठकर बहती नदी को देखना भी अपने आप में एक बहुत सुंदर अनुभव था।
0: और वहां के लोगों से भी मुलाकात हुई कि नहीं तुम्हारी?
1: बिल्कुल हुई, और वहां यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि वहाँ के लोग ना बहुत सरल, विनम्र और मेहमान नवाजी थे, है ना? हर चेहरे पर मुस्कान और हर बात में अपनापन महसूस होता था वहाँ।
0: मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि किसी भी जगह की जो असली पहचान है वो वहाँ के लोगों से होती है नेहा। अगर ना लोग अच्छे हो ना तो जो हमारी यात्रा है ना वो भी यादगार बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा संध्या तुमने। और हाँ, कश्मीरी कहवा का स्वाद तो आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ। पता है, केसर और मेवों की खुशबू वाला गर्मा गर्म कहवा पीकर सारी थकान दूर हो गई हमारी।
0: नेहा, अब तो ना मेरे मुंह में भी ना पानी आ गया है। लगता है कि कश्मीर की यात्रा ना केवल आंखों के लिए ही नहीं स्वाद के लिए भी ना यादगार होती है। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी ना तुम्हारे साथ अभी अभी पूरा कश्मीर घूम आई हूँ। और सखियों, आपको भी ऐसा महसूस तो हुआ ही होगा ना? सचमुच प्रकृति ने ना वहाँ अपनी सुंदरता के सारे रंग एक साथ बिखेर दिए हैं।
1: और शायद इसी कारण कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ की हर सुबह किसी नई कविता जैसी और हर शाम किसी मधुर गीत जैसा लगता है।
0: और जब बात सखियों गीत की चल रही है तो क्यों ना अब एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम भी सुन ले। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि और भी बहुत प्यारी सी बातें हैं, मीठी मीठी यादें हैं जो हमें आपके साथ बांटनी है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: संध्या, लगभग सबको ही घूमना बहुत पसंद होता है ना, और अगर मेले का नाम सुन लें तो हमारे तो बाच्चे खिल जाते हैं ना, मेले का नाम सुनते ही मन कितना खुश हो जाता है ना। रंग बिरंगी दुकानें, लोगों की चहल पहल, बच्चों की मुस्कान और हर तरफ उत्साह का माहौल।
1: बिल्कुल नेहा, और मुझे लगता है कि मेले सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं होते हैं, इनके साथ ना लोगों का आस्था और भावनाएं भी ना बहुत गहरी जुड़ी होती है।
0: सही कहा संध्या तुमने, हमारे यहाँ कई मेले किसी मंदिर, तीर्थ या लोक देवता से जुड़े होते हैं। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं,
1: और यही ना आस्था लोगों को एक दूसरे से ना जोड़ के भी रखती है।
0: बिल्कुल,
1: जब इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो आपसी मेल जोल तो बढ़ता ही है, और जो अपनापन है ना वो बहुत अच्छा महसूस होता है।
0: बिल्कुल, और वैसे संध्या मुझे तो लोक मेलों में जो है ना हमारी संस्कृति की झलक भी बहुत अच्छी लगती है। वहाँ लोक गीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं और कई पारंपरिक कलाएं देखने को मिलती हैं, है ना
1: जी। और ना कई बार तो ऐसे मेले नई पीढ़ी को ना अपनी परंपराओं के बारे में ना बताने के अभी जो मौका है वो देते हैं। जो बातें ना हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है उन्हें वहाँ सामने से देखना, महसूस करना या जीना कहते हैं ना, क्या आप उन्हें जी कर आते हैं।
0: बिल्कुल, और एक बात मैंने और देखी संध्या, मेले में गाँव के कारीगर जो होते हैं ना और छोटे छोटे व्यापारी, वो भी अपनी चीजें लेकर आते हैं, इनसे उनके काम को पहचान भी मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और है ना कई तो मतलब कोई हाथ से जो बनी चीजें बेचता है ना तो कोई पारंपरिक वस्तुएं भी लेकर आता है, जैसे ना घर में छोटे छोटे ऐसे चीजें जो हमने कभी देखी नहीं होती। इससे ना हमारी जो लोक कला है नेहा उसे ना आगे बढ़ावा मिलता है और ना लोगों को रोजगार भी मिलता है।
0: बिल्कुल, आज के समय में जब लोग मोबाइल और इंटरनेट में ज्यादा व्यस्त रहते हैं ना, तब भी मेलों में इतनी बढ़ती भीड़ को देखकर अच्छा तो बहुत लगता है। इसे पता चलता है कि लोगों का अपनी संस्कृति और आस्था से जुड़ाव अभी भी बना हुआ है,
1: क्योंकि ना नेहा मेले जो है वो हमें कुछ समय के लिए रोजमर्रा की जो भागदौड़ है ना उससे भी तो दूर ले जाते हैं। इससे क्या है कि ना परिवार और समाज के साथ ना हमें समय बिताने का थोड़ा अवसर मिल जाता है।
0: यानी सरल शब्दों में कहें संध्या तो लोक आस्था हमें विश्वास देती है और लोक मेले हमें लोगों से जोड़ते हैं।
1: और यही वजह है हमारी कि हम लोग ना सदियों पुरानी ये परंपराएं आज भी उतने ही जीवंत तरीके से निभा रहे हैं, जी रहे हैं।
0: तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपना एक अनुभव याद आया।
1: कौन सा अनुभव, मैं जरूर सुनना चाहूंगी नेहा।
0: बिल्कुल, पिछले दिनों मैं भी एक मेले में गई, वहां इतनी रौनक थी कि मन प्रसन्न हो गया। कहीं लोग गीत बज रहे थे, कहीं बच्चे झूलों में का आनंद ले रहे थे और कहीं लोग अपने परिचितों से मिलकर खुशी बांट रहे थे। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण अपनत्व और उत्साह से भरा हुआ हो।
1: सच में नेहा, लोक मेलों की ना यही तो खासियत है कि ना वहां जाकर लगता है कि हम अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति के और ज्यादा करीब आ गए हैं।
0: बिल्कुल संध्या, और लोक आस्था और लोक मेलों की इसी सुंदर परंपरा के साथ अब समय हो चला है एक मधुर गीत सुनने का। आइए सुनते हैं एक मनभावन गीत।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी
0: हाँ
2: आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
7: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
6: जी हाँ अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
7: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
6: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
7: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
6: बुक कराइए अपना विज्ञापन पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
7: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का पहचान का और विस्तार का।
6: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
7: आकाशवाणी बीकानेर आपकी आवाज जन जन तक।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सखियों, बचपन जीवन का सबसे कोमल, सुंदर और सीखने का समय होता है। लेकिन जब यही मासूम उम्र गलत दिशा की ओर बढ़ने लगे तो ये समाज और परिवार दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है बाल अपराध एक पड़ताल, और वार्ताकार हैं डॉक्टर चंचला पाठक।
2: बाल अपराध एक पड़ताल, इस वार्ता को अपने बचपन की एक स्मृति से जोड़कर शुरू करना चाहूंगी। तब मैं बहुत छोटी थी। एक दिन घर के सामने के पार्क में बैठी थी कि चीखती चिल्लाती एक नाबालिग लड़की भीड़ के आगे आगे दौड़ती चली आ रही थी, बिल्कुल नग्न। कईयों ने उसके तन पर कपड़ा डालने की कोशिश की, धोती या लूंगी सा कुछ मानना चाहा तो ठहाके लगाकर उसे तुरंत फाड़ देती। तब यह सिर्फ एक घटना थी जो बिना समझ में आए मुझे व्यथित कर रही थी और एक ऐसी स्थिति को पैदा कर रही थी जिससे निकल पाना कठिनतर होता जा रहा था। अब जब उस समय की जा रही बातों का सारांश करती हूँ तो समझ में आता है कि उसी के घर का कोई सदस्य उसकी इस स्थिति का कारण था। घर में उसे एकांत पाकर उसका बलात्कार किया गया था, वह भी उसी के पिता तुल्य चाचा के द्वारा। मानसिक पीड़ा इतनी भयानक थी कि वह पागल हो चुकी थी। अस्तु, चाइल्ड अब्यूजिंग, बाल अपराध एक भयानक समस्या के रूप में समाज में उपस्थित रहा है। बच्चों को बोली, स्पर्श, संकेत या अन्य किसी माध्यम से

सेक्सुअली हराश करना या प्रताड़ित करना बाल अपराध या चाइल्ड अब्यूजिंग के नाम से जाना जाता है। समाज में यूं तो किसी न किसी रूप में चाइल्ड अब्यूजिंग की स्थितियां हमेशा से वर्तमान रही है, परंतु आज के संदर्भ में यह एक विश्व स्तरीय भयानक समस्या के रूप में विद्यमान है। और आश्चर्य की बात यह है कि न केवल फीमेल चाइल्ड या लड़कियां, बल्कि मेल चाइल्ड यानी लड़के भी इसके शिकार हो रहे हैं। यदि देखा जाए तो प्रतिदिन इस तरह की खबरों से मीडिया अटा पड़ा मिलता है। कई खबरें तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती और कई तो घर के सदस्यों तक को पता नहीं चल पाता। यह एक ऐसी यातना है कि न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को विकृत रूप प्रदान कर देता है। संबंधित शिशु जीवन भर इस तरह की प्राप्त पीड़ा से उभर नहीं पाता। यह समस्या द्विपक्षीय है, जिसमें इस बात के अध्ययन की आवश्यकता है कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां, परिवेश या व्यक्तित्व है जिसमें इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति पनप जाती है, और दूसरी जिसे इस प्रवृत्ति का शिकार होना पड़ता है। किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वे कौन सी स्थितियां जो क्रॉनिकली या तात्कालिक रूप से कारण बनती हैं कि व्यक्ति में इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति घर करती है, पनपती है और अंततः घात कर बैठती है। कई कारण हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक स्थितियां, पारिवारिक माहौल, विद्वेष एवं कुंठाएं, नैतिक दृढ़ता का अभाव, संकीर्ण मानसिकता, संस्कारहीनता, कुसंगति इत्यादि। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी किसी व्यक्ति में इस तरह की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही मनोवैज्ञानिक तौर पर पाई जाती है, जिसमें यह पता लगाना काफ़ी कठिन होता है कि इस रूप में विकसित इस विकृत मानसिकता का कारण जन्मजात है या उसकी अपनी कोई विशेष परिस्थितियां रही हैं। एक सामान्य सा दिखने वाला, सामान्य सामाजिक व्यवहार करने वाला गृहस्थ भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति में अकस्मात लिप्त पाया जाता है। कई बार तो किसी अन्य परिस्थितियों के उत्पन्न कुंठा का प्रकटन इस अपराध के रूप में हो जाता है। एक तात्कालिक आवेश का इतना भयानक रूप सामने आता है कि कुछ परिवारों में जहां स्वयं माता पिता आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं या किसी ऐसे परिवार में जिनमें बच्चों का इस तरह शोषण हुआ हो, तो ऐसी प्रवृत्ति के लोगों की उत्पत्ति की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। चाहे तो वे अपनी कुंठा से आकुल व्याकुल होकर इस प्रकार की हरकतें कर बैठते हैं या अपना विद्रोह जताने के लिए, इस घुटन से बाहर निकलने के लिए भी इस तरह के अपराधों को अंजाम देते रहते हैं। बच्चों के प्रति इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों की सबसे बड़ी सुविधा कारण यह है कि बच्चों में इस प्रकार के ज्ञान का अभाव और विद्रोह की कम संभावना होती है। बच्चों को बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, शक्ति बरती जा सकती है और डराया धमकाया भी जा सकता है। इस पशुता से भी बदतर प्रवृत्ति के कारण तो कई बार पीड़ितों की जान भी चली जाती है। इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति न केवल बड़ों में बल्कि किशोरों में भी बहुत अधिक देखने में आ रही है। दिल्ली का निर्भया कांड इसका एक बड़ा उदाहरण है जो प्रकाश में आया। इसी तरह के हजारों मामले हैं जिन्हें इस स्तर तक लोगों के सामने लाए नहीं जाते या कि दबा दिए जाते हैं और अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। आज का परिवेश और चाइल्ड अब्यूजिंग की बात की जाए तो आज का युग हाईटेक युग है और कई ऐसे आपत्तिजनक दृश्य श्रव्य सामग्रियां बहुत ही सहज रूप में उपलब्ध हैं। कई बार तो तात्कालिक कारण के रूप में इस तरह की फिल्में या फीचर्स भी सामने आते हैं। सेलफोन, इंटरनेट आदि अनेक ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग इस रूप में किया जा रहा है। बात एक जिज्ञासा, क्षणिक उत्तेजना आदि से शुरू होती है और अंजाम अपराध के रूप में सामने आता है। उत्तेजना का प्रवाह इतना प्रबल होता है कि रिश्ते, नाते, मनुष्यता, मूल्य सभी ताक पर रख दिए जाते हैं और इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को अंजाम दे दिया जाता है। कई बार तो किसी मानसिक रोग के रूप में या आदतन लोगों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब चाइल्ड अब्यूजिंग बच्चों से जुड़ जाती है, वैसे बच्चों से जुड़ जाती है जो अपंग हों, शारीरिक अथवा मानसिक

0: रूप से विकलांग हो, मेंटली डिसऑर्डर्ड हो, ऐसे बच्चे ना तो पूरी तरह से प्रिकॉशंस को समझ पाते हैं और यदि समझ भी जाएं तो फिजिकली असमर्थता भी आड़े आती है। इस तरह के बच्चों के माता पिता, अभिभावक या ट्रेनर टीचर की सबसे अधिक बड़ी समस्या के रूप में इस तरह के मामले सामने आते हैं। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए परिवार से लेकर प्रशासन तक को अपना खास रोल निभाने की अत्यधिक आवश्यकता है। परिवार के स्तर पे एक तरफ जहां बच्चों को सुशिक्षित करने की आवश्यकता है, तो इस तरह की दुर्घटनाओं से सावधान करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार उनमें चारित्रिक एवं नैतिक दृढ़ता एवं उन्नत मानसिकता का बीजारोपण करने की आवश्यकता है, ताकि वह स्वयं सावधान भी रहे और दृढ़तापूर्वक ऐसी बातों का विरोध भी कर सके। साथ ही कभी कभी इस तरह की प्रवृत्ति को स्वयं में आश्रय ही ना लेने दे। प्रशासन को चाहिए कि अपने स्तर पर लोगों को सावचेत करे, यदि फिर भी इस प्रकार की दुर्घटना हो ही जाती है तो कठोर कदम उठाने चाहिए। एक अपराध कई अपराधों को जन्म देता है। जहाँ तक संभव हो सुशिक्षा, सुसंस्कार एवं जागरूकता का दृढ़तापूर्वक विस्तार व्यक्ति और समाज दोनों का ही कर्तव्य है। मानवीय मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि है। चाइल्ड अब्यूजिंग मानव सभ्यता के विकास पर बरबर कलंक है। बच्चों का सही विकास ही किसी देश एवं समाज को विकसित समाज में ढाल सकता है। भारत में बच्चों की सर्वाधिक जिम्मेवारी एवं पालन पोषण माँ पर ही होती है। अतएव जरूरी है कि हम माताएं ज़्यादा सजगता दिखाएं और निसंकोच होकर बच्चों को समझाएं कि क्या गलत है और क्या सही। उन्हें निडरता सिखाएं और शिक्षित करें कि यदि कुछ इस तरह की बातें हों तो बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता या जिस पर उसे विश्वास हो कहे, डरे नहीं। बच्चों को पर्याप्त समय दें। पिता की भी जिम्मेवारी है कि वह इस संदर्भ में सजगता दिखाए। प्रायः देखा जाता है कि पीड़ित या पीड़ित का परिवार इस बात को सबके सामने लाने से डरता है। इसका मुख्य कारण सामाजिक अपवाद या बदनामी है। हमें इस बात से बाहर निकलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस प्रकार से चोट का इलाज नहीं करवाने पर नासूर बन जाता है, उसी प्रकार यह सामाजिक कोड भी लाइलाज बनकर रह जाएगा। इस प्रकार दोनों ही पक्षों पर एक जागरूकतापूर्ण दृष्टि डालते हुए निदान एवं उपचार की आवश्यकता है और जितना अधिक हो सके स्कूलों, घरों, चौपालों, पास पड़ोस, हर जगह इस संदर्भ पर खुली बहस की जाए और बच्चों को समझाया जाए, आगाह किया जाए, जागरूक किया जाए, उन माध्यमों का गलत उपयोग ना हो। इस संबंधित तकनीकी रूप से कोई समाधान प्रस्तुत करने अथवा प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की गलत उत्तेजना से बचा जा सके और अपराध की स्थिति पैदा ना हो सके। सकारात्मक सृजनात्मक अभिरुचियों की ओर भी बच्चों को उन्मुख करके इस नकारात्मक वृत्ति से उन्हें रोका जा सकता है। एक स्वस्थ और निर्भय समाज हमारा ध्येय है और हम इसके इस तरह के निर्माण के लिए कटिबद्ध हों तो लक्ष्य की प्राप्ति हो।
1: तो सखियों, ये थी बाल अपराध एक पड़ताल विषय पर डॉक्टर चंचला पाठक की वार्ता। आशा है कि इस चर्चा ने आपको सोचने और समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत है भारतीय सेना के सम्मान और अदम्य साहस को समर्पित ये संदेश, जिसे सुनेंगे आप कैलाश खेर की सशक्त आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना।

जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: संध्या, कभी कभी मुझे लगता है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उसका एहसास भी नहीं हो पाता।
1: सही कहा नेहा, जब हम कुछ साल पीछे मुड़कर देखते हैं तब ना हमें समझ में आता है कि हमारे पास कितना कुछ बदल चुका है।
0: अब देखो ना, पहले कई कामों के लिए लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी,
1: बिल्कुल
0: जानकारी अलग जुटानी पड़ती थी और सुविधाएं भी हर किसी तक आसानी से नहीं पहुंच पाती थी।
1: और आज हालात कुछ अलग है बिल्कुल, क्योंकि गांव हो या शहर, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए ना लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं का जो लाभ है ना, अब वो मतलब कई लोगों तक सीधा सीधा आराम से पहुंच पा रहा है,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: सही। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगती है संध्या कि अब विकास का दायरा काफी बढ़ा है।
1: हाँ।
0: शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल, सड़क, बिजली, महिला सशक्तिकरण, लगभग हर क्षेत्र में काम दिखाई देता है।
1: सही कहा नेहा, और ना जब किसी घर में नल से पानी पहुंचता है या ये कहे बच्चों को बेहतर पढ़ाई का अवसर मिलता है, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तब उन परिवारों के जीवन से बिना सकारात्मक

0: बदलाव आता है और वो हमें भी दिखाई देता है।
1: आज तकनीक का उपयोग भी बढ़ा है ना, कई सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं, जिससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचते हैं।
0: जी, यही तो सुशासन की पहचान है नेहा, कि योजनाएं केवल कागजों तक ना सीमित ना रहे, बल्कि उनका जो लाभ है वो वास्तव में लोगों तक भी पहुंचे।
1: और जब विकास की ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती है तो उसका असर हर घर और हर परिवार की खुशहाली में दिखाई देता है।
0: जागरूक नागरिक और जन भागीदारी बिना इस यात्रा के महत्वपूर्ण साथी है नेहा। जितनी जानकारी लोगों की होगी उतना ही अधिक लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा।
1: तो सखियों, आइए हम भी एक जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें और विकास की इस यात्रा में अपनी सहभागिता निभाएं।
0: और अब बातों का सिलसिला यही थामते हैं, क्योंकि सखियों आपके और हमारे पसंदीदा गानों का जो समय है।

0: सखियों, आज के महिला जगत में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुतियां आपको पसंद आई होंगी और इनमें दी गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी रही होंगी।
1: इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियों की महक हमेशा बनी रहे, परिवार में प्रेम और अपनापन बना रहे और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सकारात्मक रहें। फिर होगी मुलाकात महिला जगत के अगले अंक में। मैं संध्या ओझा
0: और मैं नेहा गोस्वामी, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

अभी बहने अपना कार्यक्रम सुन रही थी महिला जगत। आज की प्रस्तुति नेहा गोस्वामी और संध्या शर्मा की थी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कुनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों

0: के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य, 1 किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा

अब परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू

0: इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल

दिल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में है। फिल्म का नाम है लैला मजनू।

0: मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत था ये, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों से सजा ये गीत था फिल्म आस पास का। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को, फिल्म का नाम है क्रोधी।

0: पकड़े जाएंगे
1: पकड़े जाने से पहले।
2: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये प्रोग्राम हमारे डीआरएम चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। संध्या 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सबसे पहले हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतसेग बटमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र

0: आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईए डीएमके पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इजराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुत कर रही है सौम्या पांडे और शारदा नैण।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी युवा साथी सौम्या।
1: और मैं हूं शारदा। दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है वो विषय पहले की बजाय आज के समय में बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि तेजी से बदलती जीवन शैली, पढ़ाई और करियर का दबाव, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और प्रतिस्पर्धा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं।
0: बिल्कुल शारदा, अक्सर हम अपने शरीर के सेहत का तो ध्यान रखते हैं लेकिन मन की सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि एक स्वस्थ और सफल जीवन के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल दोस्तों, योग

0: और ध्यान ऐसी प्राचीन भारतीय विधाएं हैं जो न केवल शरीर को स्वस्थ बनाती हैं बल्कि मन को भी शांत एकाग्र और सकारात्मक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन्हें नियमित जीवन का हिस्सा बनाकर हम तनाव, चिंता, नकारात्मक विचारों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
1: तो आइए आज के इस युववाणी में हम विस्तार से जानते हैं कि योग और ध्यान किस प्रकार हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है और कैसे छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
0: तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज की चर्चा आपके मन और जीवन दोनों के लिए बेहद उपयोगी होने वाली है।
1: दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में पढ़ाई, करियर, प्रतियोगी परीक्षाएं, सोशल मीडिया और काम का दबाव युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। कई बार हम तनाव, चिंता और अकेलेपन का अनुभव करते हैं लेकिन इन पर खुलकर बात नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। यदि मन स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: अच्छी बात तो ये है कि योग और ध्यान जैसे सरल उपाय मानसिक संतुलन बनाए रखने में बहुत ही मददगार होते हैं।
1: बिल्कुल। योग केवल शरीर को लचीले बनाने का माध्यम नहीं है शारदा, बल्कि यह मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक सोच भी विकसित होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। इसी तरह ध्यान यानी मेडिटेशन हमारे मन को शांत करने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। प्रतिदिन दोस्तों अगर आप 10 से 15 मिनट ध्यान करने में बिताएंगे 10 मिनट मेडिटेशन में, तो आपके मन की चंचलता कम हो जाती है, भावनाओं पर नियंत्रण बेहतर होता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा। अगर युवा अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट गहरी सांस लेने के अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान से करें तो पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह महसूस कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। इसके अलावा पर्याप्त नींद देना, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और परिवार तथा दोस्तों के साथ समय बिताना भी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी को लंबे समय तक तनाव या उदासी महसूस होती है तो दोस्तों विशेषज्ञ से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है।
1: दोस्तों याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और मानसिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाइए।
0: बिल्कुल। स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन की भी मन का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए अब मन का ध्यान रखने के लिए हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: कर
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों, अब आज के कार्यक्रम में समय है हमारे क्विज सेगमेंट का, जिसमें हम रोज की तरह आपसे दो सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सोच कर रखने हैं, क्योंकि हम तो उनके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है?
1: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
0: मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये थे आज के दो सवाल, अब आप इनके जवाब सोच के रखिए। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत केवल अपनी प्राचीन सभ्यता और समृद्ध संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, लोकतंत्र, योग, आयुर्वेद, अंतरिक्ष अनुसंधान और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आज भारत विश्व मंच पर एक जिम्मेदार, विश्वसनीय और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता में एकता है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियाँ और परंपराएं होने के बावजूद देश एक सूत्र से बंधा हुआ है। यही विशेषता दुनिया को भारत की ओर आकर्षित करती है। दोस्तों,
0: अगर विज्ञान और तकनीक की बात करें तो भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां हासिल की है। कम लागत में सफल अंतरिक्ष मिशन, डिजिटल तकनीक का विस्तार

0: साल और नवाचार ने भारत की छवि को और मजबूत किया है। आज दुनिया भारत की तकनीकी क्षमता और युवा प्रतिभा की सराहना कर रही है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही दोस्तों योग और आयुर्वेद भी भारत का वैश्विक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज विश्व में अनेक देशों में लोग योग को स्वस्थ जीवन शैली का माध्यम मानते हैं। भारतीय खान पान, संगीत, नृत्य, सिनेमा और साहित्य भी विश्व भर में लोकप्रिय है और भारतीय संस्कृति का संदेश दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं।
0: दोस्तों, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल भुगतान प्रणाली और युवाओं की नवाचार क्षमता ने भी विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।
1: सही का, युवा इस वैश्विक पहचान को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि युवा शिक्षा, कौशल, नवाचार, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े तो भारत की प्रतिष्ठा विश्व में और भी ऊंची होगी।
0: तो आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने कार्यों, व्यवहार और उपलब्धियों से भारत का नाम पूरे विश्व में गर्व से ऊँचा करेंगे।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: शारदा हम अक्सर सुनते हैं कि एक जागरूक नागरिक देश को मजबूत बनाता है, लेकिन जागरूक बनने के लिए सही जानकारी होना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का यही अधिकार देता है सूचना का अधिकार, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर RTI।
0: बिल्कुल, RTI एक ऐसा कानून है जिसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकता है। यह जान सकता है कि सरकार द्वारा कौन से काम किए जा रहे हैं और उन पर कितना खर्च किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों भारत में यह कानून वर्ष 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और लोगों को जानकारी तक पहुंच देना था।
0: बिल्कुल, मान लीजिए शारदा, जैसे आपके क्षेत्र में कोई सड़क बन रही है लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा, या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा, ऐसे में RTI के माध्यम से संबंधित विभाग से जानकारी मांगी जा सकती है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि RTI को आम नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। यह लोगों को अपने सवाल पूछने और जवाब पाने का अवसर देता है,
0: और इस कानून के तहत सरकारी विभागों को तय समय के भीतर जानकारी देनी होती है। इससे सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही भी बढ़ती है।
1: हालांकि दोस्तों कुछ जानकारियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां या फिर कुछ गोपनीय मामले, इसलिए RTI के भी कुछ नियम और सीमाएँ होती हैं।
0: लेकिन फिर भी दोस्तों यह कानून लोगों को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। इससे नागरिक अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, RTI हमें यह भी सिखाता है कि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने का काम नहीं करती है, बल्कि उसे सवाल पूछने और जानकारी पाने का भी अधिकार प्राप्त करती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जब लोगों को सही जानकारी मिलती है तो वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
1: और यही वजह है कि सूचना का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है,
0: क्योंकि जानकारी ही जागरूकता की पहली सीढ़ी होती है
1: और जागरूक नागरिक ही एक मजबूत और जिम्मेदार राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
0: उसके साथ ही राष्ट्र का निर्माण करती है हमारी देश की सेना। उसी देश की सेना को समर्पित है हमारा ये गीत, भारतीय सेना।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ने गरीबों के सिर पर 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, शिक्षा किसी भी व्यक्ति और देश के विकास का आधार होती है। बदलते समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव भी जरूरी हो जाता है, और इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की।
4: बिल्कुल, यह नीति लगभग 34 साल बाद लाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक आसान, लचीला और विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार बनाना है।
3: बिल्कुल दोस्तों, इस नीति की एक खास बात यह है कि पहले की 10+2 व्यवस्था की जगह अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। इसमें बच्चों की उम्र और सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा को अलग अलग चरणों में बांटा गया है।
4: बिल्कुल दोस्तों, साथ ही इस नीति में केवल रट कर पढ़ने की बजाय समझने, सोचने और नई चीज़ें सीखने पर अधिक जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी क्षमताओं का विकास करना है।
3: बिल्कुल, नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता भी देती है। अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बीच की सीमाएं पहले की तरह कठोर नहीं है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग विषय को चयन कर सकते हैं।
4: और इसके अलावा दोस्तों, शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया है, ताकि बच्चे विषयों के बेहतर तरीके से समझ सकें।
3: दोस्तों, आज के डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग को भी इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है,
4: और साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कौशल भी सीखे जो भविष्य में उनके काम आ सके।
3: तो दोस्तों, कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य केवल अच्छी शिक्षा देना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो आत्मविश्वासी हों, रचनात्मक हों और वे जिम्मेदार नागरिक बन सके।
4: और यही कारण है कि इस नीति को भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जाता है।

0: शारदा, हमारी धरती पर ऐसी कई प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने महत्व के लिए भी जानी जाती है।
1: सही कहा।
0: इनमें से एक है प्रवाल भित्तियाँ, जिन्हें अंग्रेजी में कोरल रीफ्स कहा जाता है।
1: सही कहा तुमने, प्रवाल भित्तियाँ प्रकृति की एक अद्भुत उपहार है। दिलचस्प बात तो यह है कि जिन्हें हम अक्सर समुद्र के भीतर मौजूद रंग बिरंगी चट्टाने समझ लेते हैं, वे वास्तव में जीवती संरचनाएं होती हैं।
0: जी हाँ, इन्हें लाखों छोटे छोटे समुद्री जीव मिलकर बनाते हैं। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सीधा आंखों से देख पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन सामूहिक रूप से ये विशाल प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, इन जीवों को कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। वे अपने चारों ओर कैल्शियम की एक कठोर परत बनाते हैं। हजारों वर्षों तक यहाँ यह प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे विशाल प्रवाल भित्तियाँ तैयार हो जाती हैं।
0: और दोस्तों, यही कारण है कि प्रवाल भित्तियों को प्रकृति के सबसे अनोखे निर्माणों में गिना जाता है। इन्हें अक्सर समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है।
1: सही का, वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया की लगभग 25% समुद्री प्रजातियां किसी न किसी रूप में प्रवाल भित्तियों पर निर्भर करती हैं। अनेक मछलियां, समुद्री कछुए और अन्य जीव इन्हें अपना घर बनाते हैं।
0: और शारदा, भारत में भी प्रवाल भित्तियों की अच्छी उपस्थिति देखने को मिलती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा कच्छ की खाड़ी इनके प्रमुख उदाहरण हैं।
1: दोस्तों, इनका महत्व केवल समुद्र जीवों तक सीमित नहीं है, यह तटीय क्षेत्रों को समुद्री लहरों और तूफानों से बचाने में भी मदद करती है। इसीलिए इन्हें प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी कहा जाता है।
0: और इसके अलावा दोस्तों, पर्यटन और मत्स्य उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है। इस दृष्टि से भी इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन आज प्रवाल भित्तियाँ कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन हो गया, समुद्री प्रदूषण और बढ़ते तापमान के कारण इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।
0: सही कहा, विशेष रूप से कोरल ब्लीचिंग एक गंभीर समस्या बनकर सामने आई है। इसमें प्रवाल अपना प्राकृतिक रंग खो देते हैं और धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं।
1: यही यदि समय रहते इनके संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो समुद्री इकोसिस्टम तंत्र पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
0: और इसीलिए वैज्ञानिक लगातार समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, प्रवाल भित्तियां केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण

0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो सवाल पूछे थे, तो अब तक तो आपने उनके जवाब सोच ही लिए होंगे। और अगर नहीं भी सोचे तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही उनका जवाब देने के लिए। हमारा आज का पहला सवाल था, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ज्ञानेश कुमार।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल था, RBI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? और इसका सही जवाब है मुंबई।
0: अब दोस्तों, इसी के साथ आगे

0: भरते हैं और कुछ आज आपको रोजगार सूचना देते हैं। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा RAS भर्ती 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
0: यह भर्ती राजस्थान प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न राज्य सेवाओं के पदों के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा, पदों का विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में अवश्य देखें। और इसकी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सूचना से केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। तो दोस्तों, देर ना करें, यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाना चाहते हैं तो RAS भर्ती 2026 आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। दोस्तों, हमारा आज का समय इतना ही था। आज हमने आपसे बहुत सी बातें करी, भारत की वैश्विक पहचान के बारे में जाना, सूचना अधिकार के बारे में जाना, जहां हर जन को अपने बात का सूचना का अधिकार होना चाहिए, जो हर नागरिक अपने अधिकारों के लिए जान सकता है। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करी और प्रवाल भीतियों के बारे में बात करी और हमारे युवा की मानसिक स्थिति के बारे में भी बात करी। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम युववाणी में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सुनते रहिए। अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, आपकी युवा साथी सौम्या पांडे और
1: शारदा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुत कर रही थी सौम्या पांडे और शारदा नैन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रमों की रूपरेखा।

6:10 पर विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 8 बजे हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।

सुगम संगीत में गजलें आप सुन सकते हैं रात 10:30 पर, और सुगम संगीत का प्रसारण होगा 7:45 पर।

संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और दीवानदान रत्नू। आज चर्चा

होगी इस सप्ताह के कृषि कार्य विषय पर, और इसके अलावा मूंग उत्पादन की उन्नत तकनीक, कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी अनुदान योजनाएं, घर में पके शौचालय का महत्व, लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

हम सभी सुनने वालों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, रात 10 बजे हम अपने जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे कार्यक्रम खेल जगत।

ये थी हमारे शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा

0: परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 101.6 मेगा हर्ट्स। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अलका याग्निक को। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 6:10 होने को है। अब थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा और अब तक के अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। आप अपने जीवन और कार्यों की इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं?
2: मैं रेलवे नौकरी करता था। उस टाइम में गार्ड का नौकरी में दो स्टेज है। एक स्टेज में गुड्स ट्रेन वर्किंग करना पड़ता है, तो गुड्स ट्रेन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जिम्मेदारी ज्यादा है और एकाकी का काम है, अकेला ही रहता है। वो झड़ आदि तूफान जो भी है उसको सामना करना पड़ता है, और आधारी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी का तो भी देखभाल करने होता था।
1: अशोक जी, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपकी प्रमुख प्रेरणा क्या रही? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
2: प्रेरणा मिला काम करते प्रगति का साथ रहते हुए। अंधारी डिब्बा में जब अकेलापन था उस टाइम में चिंतन भावना, और प्रगति में क्या देखा, बाहर जगत में क्या है क्या नहीं है, वो हम अंदर में ले लेता, माने बाहर दर्शन अंतर दर्शन में आ जाता था। उसका बाद जब हमारा माने नौकरी खत्म हो जाता है, ड्यूटी शेष टाइम में तो रेस्ट मिलता

0: घर चला आता है, कभी रानी रूम में चला जाता है। उसका बाद जब भौर फिकता, वही जो भावना मेरा कल्पना जो देखा हम जो फेस किया वही चीज हम आके पेन पेपर में लिख, जो मेरा चिंतन क्या है, क्या हम बाहर जगत में टोबी के में देखा और क्या होना चाहिए। मेरा भी वैसा ही है, एक संसार में फूल खिलती है वो फूल भी झड़ जाता है और उसको कोई कीमत नहीं रहता है। जब तक फूल बगीचा में रहता है तब तक उसको कीमत है। मेरा आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, जब तक आपको काम रहेगा तब तक कीमत रहेगा और काम का अभाव में और कोई इसको कीमत नहीं है। तो एक तो जगह में कीमत है जहाँ आप ऐसा काम करना है जो काम समाज का हर आदमी को काम में आएगा। कुछ चेतना, समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा, क्या हम देखा, आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज एक अनुप्रेरणा हम प्रवृत्ति से मिला। उसका बाद मालगाड़ी का बाद जब पैसेंजर में प्रमोशन हुआ तो आदमी का साथ मेरा काम हुआ। आदमी जब जाता है काहे के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाता है। दिन में रात में आदमी का साथ हम था और उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है वही ज्ञान का हम किताब में लिखा है, जो क्या आदमी परिश्रम करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अगेंस्ट द नेचर वी हैव टू परफॉर्म आवर जॉब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हम देखा और उसी चीज का हम किताब में लिखा है।
1: अशोक जी, आपको इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है बल्कि आपके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी है। तो इस सम्मान के लिए चुने जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, कोई अवार्ड मिलने से एक तो इंस्पिरेशन मिलता है और हम जो हमारा काम, हमारा रास्ता सही था और मेरा काम भी सफल हुआ जिससे कारण से हमको मिला। 30 साल तक हम ये साधना किया, लेखा पढ़ा के साथ जुड़ा हुआ है और वो काम करते चले। हम कभी नहीं सोचा कर्मण्येवाधिक रास्ते में पुरुष पदाचरण, नहीं नहीं कभी नहीं सोचा जे हमारा एक पुरस्कार मिलेगा। हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया तो उसमें और चेतना, हमारा इंस्पिरेशन वाला, समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो हम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार को, उसके बाद मोदी जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते है, जो सही कर्मों का फल मिला है मेरा, मेरा समाज को मिला। हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक अनुप्रेरणाएं, जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षा अनुरोगी मनुष्य, उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है, उसको साथ मेरा विजय हम बांटने चाहता है।
1: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?
0: नेक्स्ट जेनरेशन, देखिए, कोई काम दृष्टि ठीक रख के प्रोचेस्टा जारी रखना है अविराम, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हमारा काम में बाधा आ सकता है, रुकावट आ सकता है, लेकिन जब हमारा प्रोचेस्टा रहेगा, उसका ऊपर डिवोशन रहेगा काम का ऊपर, तब कामयाब हो जाएगा, यही मेरा सोच है। और यही मैंने सोच हम संसार को, मनुष्य आदमी को, समाज को देने चाहता है, जे शिक्षा चेतना आदमी को होता है तब उसको सही दिशा सही काम में वो काम करेगा। देखिए, मुंह का तो जैसा वर्षा का पानी नदी में बह जाता है तो बह ही जाता है, तो समाज में पैसा बहुत ही आदमी आता है, भीड़ करता है, अपना काम हो जाता है, चला जाता है, लेकिन वास्तविक में जो है तो एक लय है। सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से ही विलीन हो जाता है, यही मेरा सिद्धांत है, तो इसमें कोई आवेश नहीं है, यही हमारा दीरो सिद्धांत है।
1: अशोक जी, आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्यक्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया, और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने

0: आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?
1: शिक्षा तो चेतना देता ही है। देखिए आज का जो समाज व्यवस्था है, आज का जो शिक्षा है, हमारा पीरियड में वैसा नहीं था, इतना फैसिलिटी भी नहीं था और इतना मोबाइल फोन भी नहीं था और टेलीफोन भी बहुत आदमी को पास नहीं था। बड़ा बड़ा आदमी जो था उसके पास टेलीफोन का मानिए व्यवस्था था, और जो सामान्य आदमी था उसके लिए एक ही काम था, जो हमको कुछ करना है तो क्या करेगा, हमको लेखा पढ़ा सीख के समाज को परिवार को बचाना है, रोजगार करना है और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। तो पहले अपना विकास करो, उसका बाद दूसरा विकास करने जाओ, चिंता करो, तब विकास होगा। तो वो सोच हम लोग मेरा को मिला इनिशियल स्टेज पे, चीज हम अपना से सोचा। उस टाइम में कोई विनोदन का व्यवस्था नहीं था और शिक्षा चेतना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पोस्ट कार्ड का व्यवहार था, एक तो जोगाजोग व्यवस्था भी अच्छा नहीं था, पोस्ट कार्ड में सब कुछ वो तो टाइमिंग फैक्टर था, जिससे कारण से एक ही चीज आनंद मिलता था, किताब मिला, किताब पढ़ने से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है, शिक्षा भी उसमें ही जाता है, यही मेरा विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको समझ रहेगा।
0: अशोक जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: आकाशवाणी एट 90। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन

मोहम्मद रफ़ी के गाए बचपन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर के आमिर चैनल से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश की 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है। टेली लॉ के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर वीएलई की ओर से 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क से सभी लोगों को मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की आज बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब,

0: दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर के वी राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीएसआर निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। दो दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाईमाधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता UCC को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवा निवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई कि बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: वहीं श्री बेढम ने कहा कि यूसीसी संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता UCC राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल्स जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पे कड़ी निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल्स और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है, और जो ये दो तीन चीजें ही हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनेकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
0: प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के

0: पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
1: 1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
2: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं, तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
3: प्राथमिकता ये है कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा

0: ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भरतपुर के बंद बारेठा पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बंद बारेठा की पाल का निरीक्षण किया और परियोजना के विस्तार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आनंदी ने भरतपुर का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संभागीय आयुक्त नलिनी काठोतिया ने संभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत, विभागीय समन्वय और उद्योगों तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने विद्युत संबंधी शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट परियोजना में शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आई बी सुब्बा राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं का डाटा तैयार कर उनकी रुचि और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई। आमजन को राहत देने के लिए जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, उपयोग परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैर उपखंड के सरसेना गांव और भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, आयुष्मान भारत, पक्के आवास, सैन्य सुविधाओं और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी स्वास्थ्य, जैविक खाद, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में जल निकासी व्यवस्था से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य ड्रेन के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की तथा बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर अचनेरा फोरलेन सड़क चौड़ी करने के काम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, केंद्र सरकार हर नागरिक तई न्याय रिपूक बत्ती बत्ती सुलभ करावण सारू 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल माए लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ बैठक करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावण ने उच्च स्तरीय समिति बनाई और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कयो कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता

0: समाचारों के साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार दिशा 2.0 योजना ने मंजूरी दे दी है। वो कार्यक्रम इस साल पहली अप्रैल और 31 मार्च 2031 तक 5 साल तयरी अवधि रह सारू नुआ रूप में लागू करो जाएगा। 255 करोड़ रुपया रा वित्तीय परिवहन वाली ये योजना रो मकसद हर रहवासी तय न्याय री पहुँच सुलभ और मजबूत बनावनो है। आ देश रा 16 सतत विकास लक्ष्य री प्रतिबद्धता ने आगे बढ़ावे है। इनने विकसित भारत 2047 रा विजन हुई जोड़ी जा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुजब दिशा 2.0 माय प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण सारू विधि संजीवनी नाम रो नुओ घटक पेश करी जो है। टेली लोरी मार्फत ग्राम पंचायत थर माथे वीएलई कानियो 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र रा नेटवर्क रू सगड़ा लोगों ने मुकदमा माय पहला मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएला। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता सारू ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाया जाएला। नई दिल्ली में ब्रिक्स रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए री आज बैठक हुई। दो दिन री ई बैठक री सदारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रिया है। इनमाए समूह रा 11 सदस्य देशों रा सुरक्षा प्रमुख हिस्सो ले रिया है। आ देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात भेड़ा है। अबार माए गैर पारंपरिक हिफाजती चुनौतियां बैठक रो खास मुद्दों है। इनमाए राष्ट्रीय हिफाजत रा खतरा ने तेजियों बदलता स्वरूप और उभरता सुरक्षा जोखिमा माए नई तकनीकी भूमिका माथे चर्चा करी जावे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नीति आयोग रा सदस्य प्रोफेसर केवी राजूरी मौजूदगी माए अहलकारा रे साथ मीटिंग करी। मुख्यमंत्री रेवास माते हुई ई बैठक में विकसित राजस्थान रा संकल्प ने पूरो करण सारू जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी जी। इन रे तहत हर जिला में आकांक्षी उपखंडा ने जोड़ता स्थानीय जरूरता और संसाधन मुजब विकास योजना बनाने की बात कही जी। आमाए माली गतिविधियां री रफ्तार बढ़ सकेला, साथ ही स्थानीय थर माथे रोजगार और निवेश रा मौका मिलेला। जंगलात महकमारा मंत्री संजय शर्मा सीएसआर निवेश ऊ संरक्षित वन हल्का माए विकास माथे जोड़ दियो है। श्री शर्मा आज सवाई माधोपुर माए राज्य थर रा सीएसआर कॉन्क्लेव रा उद्घाटन सत्र माए बोल रिया हा। वना कहो के जंगलात महकमो और कॉरपोरेट हलकारी साझेदारियों वन्य जीव संरक्षण जैव विविधता और इको टूरिज्म माथे चोखो काम करियो जा सके है। दो दिन रा ई कॉन्क्लेव माए राज्य द्वारा संरक्षित वन हल्का माए सीएसआर री मार्फत करिया जावन वाला काम माथे चर्चा करी जावे। राजस्थान एटीएस जयपुर जैश ए मोहम्मद री कथित रूप में जुड़ी एक महिला ने गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस री सूचना माथे पकड़ी जी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नामरी आ महिला सवाई माधोपुर जिला री मूल रहवासी है। शुरुआती जानकारी मुजब आ लांबा बगतू देश विरोधी नेटवर्क साथे काम कर रही। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी बतायो के यूएपीए एक्ट तहत गिरफ्तार करी जी आरोपी महिला ने अदालत में पेश करी जा जठे उन्होंने 27 जून तक रिमांड सारू भेज दी जा है। यह समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज जयपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी ने लेर प्रेस वार्ता करी। श्री पटेल कहो कि इनमाए समानतारी भावना ने बढ़ावो मिलेला और साथ ही भेदभाव ने कम करण माए मदद मिलेला। राज्य सरकार यूसीसी लागू करण री दिशा में कदम बढ़ावता विधेयक लावण सारू ऊंचा थर्री कमेटी बनाई है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवा निवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: श्री बेढम कहो कि यूसीसी संविधान मुजब है और लैंगिक समानता

0: दिशाएं अहम है।
1: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता UCC राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि जोधपुर रा पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूतवा रा इलाज में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ की देखरेख में वारो इलाज करो जावे। मीडिया साथे बतल में चिकित्सा मंत्री कहो कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर रा मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजा जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।
2: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है, हम उस पे कड़ी निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है, और जो ये दो तीन चीजें ही हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
0: प्रसूतवारा स्वास्थ्य ने लिए जिला कलेक्टर अशोक रंजन, मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा और दूजा डॉक्टरों के साथ मीटिंग करी, मामला री जांच सारू कमेटी बनाई जी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज आपरा रहवास माते जन सुनवाई करी। इस दौरान वना लोगों री फरियादा सुनी और वाजिब निपटारा रा आश्वासन दिया। मीडिया साथ बतलमाए श्री दिलावर कहो के नुआ शैक्षणिक सत्र सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। वना कहो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूला में शिक्षक लगाउन री कोशिश करी जावे।
3: एक जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और एक जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा नुआ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ आज अध्यक्ष रा ओहदा संभाल लियो। वना बोर्ड रा 41वां मुखिया रा रूप में कमान संभाली। बोर्ड रा प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ वाने कामकाज सौंपियो। श्री राठौड़ मीडिया साथ बतल में पढ़ेसरा रा समग्र विकास सारू नवी शिक्षा नीति रा वाजिब क्रियान्वयन माथे जोर देवन री बात कही।
4: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं, तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग माय सदस्य ओदा माते नियुक्त व्या डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद अबार माय भीलवाड़ा रा माणिकीलाल वर्मा राजकीय कॉलेज रा प्राचार्य रूप में काम कर रहा है। खबर नवीसा साथ बतलमाए वना कहो कि वे बेगाई RPSC सदस्य रा रूप में ओ दो संभाल लेवेला।
5: प्राथमिकता ये ही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, RPSC कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
0: BSF रा महानिरीक्षक ML गर्ग आज राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रे साथ मिलिया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सामंती मौजूद रिया। ई मुलाकात में न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। सीकर जिला रा रामगढ़ सेठान हल्का में आज सवारा एक सड़क हादसा में दो लोगों की मौत वेगी, वठे एक दूजो घायल वे गयो। रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र बतायो के हादसों सड़क रे किनारे खड़ा ट्रोला रे तेज रफ्तार ट्रेलर बीच टक्करों वियो, घायल ने चूरू रेफर करी जा है। उठने श्री गंगानगर रा सत्यम नगर में एक नुआ बन रहा भवन में करंट लागणु, दो लोगों की मौत वेगी। मौसम राज्य में लाड़ला कुछ दिनों चल रही प्री मानसून गतिविधियों लोगों ने हीट वेव और करड़ी गर्मियों आराम मिल रियो है। एक रे पछे एक लगातार सक्रिय वेरिया पश्चिमी विक्षोभों कई जिला में

आंधी बिरखारो दौर बन्योड़ो है। आज ही प्रदेश रा कई हल्का माए मौसम रो मिजाज बदलो रियो। मौसम महकमा मुजब आंधी बिरखारी है गतिविधियां। जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में 26 जून तक बनी रहने की आस है। इस दौरान कठे कठे धूल भरी आंधी ही चल सके है। दूजी कानी बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम साफ रहने की आस है। फिर वही कुछ थोड़ा बादल छाए जा रह सके है। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार हर रहवासी ताई न्यायरी पूग बत्तियों बत्ती सरल और मजबूत करण सारू दिशा 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल सारू लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ मीटिंग करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावन सारू ऊंचा तरी समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है के कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है अने एक दूजा जोड़ने नी देखा जावना चाहिए। एंड रे साथ ही प्रादेशिक समाचारों ओबुलेट नटे पूरो व्यो। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत। प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और श्री दीवानदान रत्नू।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनना ले सगले किसान बयान है आप रे साथी दीवान दान रत्नु
1: और आप रो हितालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य रा
0: घणान घणा
1: राम राम।
0: नमामि भाई के मौसम बड़ो जोरदार हो रही है और सब जगह लगभग सुनने में आ रही है बारिश भी हो रही है। बीकानेर क्षेत्र में भी लाले कई दिनों बारिश हो रही है और आगे आने वाले वक्त में बारिश होवेला और किसान भाई आपकी तैयारी में लाग रहा है।
1: हाँ, लोग रे मायने भी आप देखा लोग में के सुगंध छोड़ता हुए जिकरे मायने बताया जावे कि टिटोड़ी जहाँ चार अंडा दे देवे जमीन माथे तो बरखा होने की संभावना हुए और कागलो है वो आप घोंसड़ो जो है वो एकदम दरखत हरियो भरियो दरखत रे मायने गहराई मायने कर अंडा देवे तो बतावे बहुत बरखा होने संभावना है। और अबार आप देखा भी हाँ कि जहाँ लोग रे मायने देख ला छापे रे मायने देख ला या लोग री बात देख ला तो सुगंध सोरदा बतावे कि बरखा यहाँ होने की संभावना है।
0: बिल्कुल
1: पर ए लोक री बात है लेकिन अपना मौसम वैज्ञानिक है जिकी कई बे आपरी बातें बतावे तो अपन तो मौसम वैज्ञानिक का भी बात रो भी ध्यान रखना चाहिए। और इन्हें देखते हुए अबार आपा देखा कि आपार जो बीकानेर क्षेत्र है बीर मायने 22 से 28 जून रे जो सप्ताह है बीर मायने खरीफ मौसम की भी तैयारी करनी है आपने जिकी आगामी बुवाई की तैयारी करनी है बहुत जरूरी है। और इन वास्ते राजस्थान रे मायने आपने जो हफ्तों चल रही है ये हफ्ते मायने आपने के काम करना चाहिए मेरे बारे में भी आज आप बात कर सा।
0: बिल्कुल नमामि भाई के इन सप्ताह अपारे प्रांत में राजस्थान बीकानेर क्षेत्र में किसो काम कर सका और बीर बारे में प्रमुख रूप बार आज आप बात करा तो देखो सा आगतरे माया जिकी खरीफ री फसल री बुआई है बीरू पूरू पूरू आप ध्यान रखा फसलों री बुआई रो और भी आगतरी फसला में नमामि भाई फसल आवे है बाजरो मूंग मोठ गवार तिल और चारे री जिकी फसला है वे भी अपा खेतरे में बीज सका अपर पशुआ रखातर और उर्वरक भी ध्यान रखा। और एक और है यदि बीज रो अपा बीजान करा तो भी बीज रो बीजोपचार जरूर करा।
1: सही है।
0: बिल्कुल बीजोपचार बिना देखो सा बीज है वो निरोगो नहीं रहेला और फसल भी अपारी निरोगी नहीं रहेला। यदि फसल निरोगी रहे सही हुए

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: जलवायु और भूख, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आज जरूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है, 2020 में दुनिया की लगभग 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ई हफ्ते कहीं चूंकि बरखा हो रही है तो बरखा हुए तो आपा जगह पशुधन है बारो की साथ संभाल राखनी चीजें। और सबसे मोटी बात आ है कि इन बातें जानकारी दे रही है डॉक्टर अनिल मूलचंदानी और विषय है पशुओं के वर्षाकालीन रोग की रोकथाम और जानकारी आपसे ले रही है संदीप पारिक। तो सुनो सा जानकारी।
1: गांव में किसानों की आमदनी का मुख्य साधन खेती बाड़ी के अलावा जो है वो होता है पशुपालन। और कोई भी रोजगार जो अपनाया जाता है अगर उसकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल की जाए, उसकी सार संभाल की जाए तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन जो है वो लिया जा सकता है। और यही बात पशुपालन पर भी लागू होती है। पशुपालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस किसी भी नस्ल के पशु वो रखते हैं उनका उचित प्रकार से रख रखाव जो है वो किया जाए। अभी जैसे वर्षा का समय है, इस मौसम में हमारे दुधारू पशुओं को बहुत सारे संक्रामक रोग हो जाते हैं। इन रोगों की रोकथाम किस प्रकार से की जाए, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अनिल मूलचंदानी जी। आप विभागाध्यक्ष हैं पशु जैव रसायन विभाग वेटनरी कॉलेज बीकानेर में। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: डॉक्टर साहब, ये जो अभी वर्षा का मौसम चल रहा है इसके अंदर खान पान के अलावा बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो बहुत सारे संक्रामक रोग हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्षा में जो संक्रामक रोग होते हैं वो होते कौन कौन से हैं?
2: पशुओं में वर्षाकालीन संक्रामक रोगों की रोकथाम आवश्यक है। निम्नलिखित संक्रामक रोग हो सकते हैं पशुओं में: खुरपका मुंहपका रोग, गलघोंटू, लंगड़िया, बाह्य परजीवी, थनेला रोग, पशुओं में लीवर फ्लू, पशुओं में डेगनाला रोग।
1: जी,
2: वास्तव में पशुओं स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त जानकारी न होने के कारण पशुपालकों को अक्सर बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी जिन रोगों के नाम लिए जिसमें आपने एक बोला खुरपका और मुंहपका रोग, तो ये जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है ये आखिर होता किस कारण से है और ये किन किन पशुओं में फैलता है?
2: यह एक विषाणु जनित रोग है, अर्थात वायरल डिजीज है, जो कि फटे खुर वाले पशुओं, दो खुर वाले जुगाली करने वाले पशु, गौ पशु, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि में होता है। ये एक छूत का रोग है।
1: जी, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में हो जाता है। जी,
2: खुरपका और मुंहपका रोग जो है इसको FMD भी कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज।
1: जी,
2: ये पशुओं की एक गंभीर अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसके कारण पशुपालकों को बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
1: जी, अच्छा आपने ये जो बताया जो खुरपका और मुंहपका रोग है ये अगर किसी पशु में हो जाता है तो एक आम किसान किस तरह से पहचाने, क्या लक्षण होते हैं और अगर ऐसा रोग हो जाता है तो उसका उपचार क्या है?
2: जैसा कि नाम से विदित है कि इसके पशु के मुंह में अर्थात जीभ, मसूड़ों, होंठों पे मुंह में छाले हो जाते हैं, थनों में छाले हो जाते हैं और खुरों के बीच में छाले जैसे घाव हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण उत्पादन में गंभीर हानि होती है और जबकि अधिकांश प्रभावित जानवर ठीक भी हो जाते हैं।
1: जी,
2: रोग के कारण अक्सर पशु जो हैं वो कमजोर और दुर्बल हो जाते हैं। प्रभावित होने वाले पशुओं में पैर पटकना, खुर में सूजन, लंगड़ाना, अल्प अवधि का बुखार, खुर में घाव और घाव में कीड़ा पड़ जाना, कभी कभी खुर का पैर से अलग हो जाना भी होता है, मुंह में से लगातार लार गिरती रहती है और इसके कारण क्या है कि पशुओं की उत्पादन क्षमता काफी कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है
1: और दूध उत्पादन भी कम,
2: दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। मादा पशुओं में प्रजनन क्षमता वर्षों तक प्रभावित रहती है। गर्भवती मादा पशुओं में गर्भपात की आशंका बनी रहती है। वैसे बछड़ों में यह रोग घातक रूप ले लेता है जिसके कारण उनकी अकाल मृत्यु तक भी हो जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने खुरपका मुंहपका रोग बताया, अगर ये हो जाता है तो उस वक्त एक आम किसान को क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए?
2: यह रोग एक महामारी के रूप में भी आता है। सबसे पहले आम किसान को जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग करना चाहिए, उसके खान पान की उचित व्यवस्था अलग बाड़े में की जानी चाहिए और वहाँ प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन, हाइजेनिक का मतलब है साफ सुथरा उनको रखना और समय समय पर साफ सफाई की व्यवस्था को देखना चाहिए। पशुओं के भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन में खनिज, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि भरपूर मात्रा में होना चाहिए और पर्याप्त उनको दवा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर मुंह में छाले हैं तो बोरोग्लिसरीन का लेप लगाना चाहिए 2-3 बार। बोरोग्लिसरीन का लेप बनाने के लिए पशुपालकों को 850 ml ग्लिसरीन में 120 ग्राम बोरेक्स मिलाकर पशुओं को उस छालों पर लगाना चाहिए और इसके अलावा उनके खुरों का बार बार सफाई की व्यवस्था को भी देखना

0: चाहिए उसमें, जैसे कि लाल दवा से छिड़काव करना, फिटकरी के पानी से धोना, 10 ग्राम फिटकरी को 1 लीटर पानी में मिला के उसे 2-3 बार घावों को झोड़ना चाहिए। अगर घावों में कीड़े पड़ गए हैं तो ऐसी स्थिति में तारपीन के तेल से भी साफ सफाई की जानी चाहिए। आगे
1: तो आपने बताया कि या तो फिटकरी के पानी से या फिर लाल दवा के या फिर तारपीन के तेल से भी इन घावों को साफ कर देना चाहिए।
0: इसके अलावा ये भी आवश्यक है कि के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक्स आपको लेनी पड़ेगी ताकि आगे संक्रमण नहीं हो, क्योंकि पशु के इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है तो इस स्थिति में उसको एंटीबायोटिक्स को देना पड़ता है। एंटी इन्फ्लामेटरी बुखार, अल्प अवधि का बुखार आता है उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी पैरासिटामोल अगर देना है, एंटीबायोटिक्स में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इत्यादि दिया जाता है और लक्षणों के आधार पर उसका इलाज किया जाता है। और ये आवश्यक है कि स्वस्थ पशुओं में समय पर टीकाकरण किया जाए और जो बीमार पशु हैं उनमें भी टीकाकरण की उचित डॉक्टर की सलाह के आधार पर उचित समय पर टीका लगाया जाए।
1: कुल मिलाकर समय रहते हुए टीकाकरण जो है वो इस बीमारी से बचने का सबसे
0: बहुत बहुत जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा ऐसी कोई बात है कि किसान को नहीं करनी चाहिए?
0: जी हाँ, एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पशुपालक को जब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है
1: जी,
0: तभी इस रोग की रोकथाम संभव है। पशुपालकों को अपने सभी पशुओं को जो कि 4 महीने से ऊपर हैं टीका लगवाना चाहिए। प्राथमिक टीकाकरण के 4 सप्ताह के बाद में पशु को बूस्टर डोज लगवानी चाहिए और प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। नए पशुओं को झुंड में या गांव में मिश्रित करने से पूर्व उसके सीरम की जांच आवश्यक है। इन नए पशुओं को कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटीन पीरियड में यानी कि सबसे अलग बाड़े में रखा जाना चाहिए और भोजन और अन्य प्रबंधन की भी अलग व्यवस्था की जानी चाहिए और पशुओं को पूर्ण आहार देना चाहिए जिसमें खनिज विटामिन की भरपूर मात्रा हो।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक तो ये हमें बताया कि खुरपका मुंहपका रोग जो होता है तो उस समय क्या क्या सावधानियां और किस प्रकार से एक किसान जो है किन किन बातों का ध्यान रखे। इसी तरह से एक जिक्र आपने किया था कि पशुओं में गलघोंटू रोग जो है वो भी हो जाता है, तो ये जो गलघोंटू रोग है और ये भी आपने बताया कि ये संक्रामक रोग है, तो ये रोग होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है और ये किन किन पशुओं में फैलता है?
0: गलघोंटू रोग को हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहा जाता है। ये पास्चुरेला मल्टीसीडा नामक जीवाणु के कारण होता है जो कि ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। यह अक्सर बरसात में होता है तथा भैंसों में यह प्रकोप विशेष रूप से अधिक होता है। यह मुख्य रूप से गाय तथा भैंस में होने वाला रोग है, हालांकि भैंसों में यह गाय की तुलना में 3 गुना अधिक प्रभावित करता है।
1: अच्छा, मतलब भैंसों में ज्यादा होता है।
0: हाँ जी, मुख्य रोग का शिकार कम उम्र के पशु होते हैं। इस रोग में पशु अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। इसमें मॉर्टेलिटी रेट मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, करीब करीब 80% होती है। इस कारण से ये जरूरी है कि इसमें पर्याप्त रोकथाम की जाए, पर्याप्त पशु की देखभाल की जाए तो इससे ताकि इसे भविष्य में ये रोग नहीं हो और कोई नुकसान नहीं हो।
1: तो ये जैसे आपने बताया बहुत खतरनाक रोग है।
0: जी, ये मानसून के समय व्यापक रूप से फैलता है और इस रोग से पशु अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है।
1: तो ये जो गलघोंटू रोग है इसका पता है कैसे चलेगा पशुपालक को, और अगर ये रोग हो जाता है तो उसका क्या उपचार करना चाहिए?
0: ये जीवाणु जो है पास्चुरेला मल्टीसीडा, ये एक्चुअली जो श्वसन तंत्र के जो ऊपरी भाग है वहाँ पे ये संक्रमण करता है
1: जी।
0: तो ऐसा देखा जाता है कि पशु एकाएक सुस्त हो गया है, भूख उसकी बंद हो गई है, जुगाली बंद हो गई है और उसमें तेज बुखार आता है, 106 से 108 डिग्री बुखार रहता है। सांस उसकी तेज है परंतु धीमी है, मुख से लार टपक रही है, आंख तथा अन्य श्लेष्मा झिल्लियां जो है उनमें लालीपन है, सर और गल घोंटू यानी कि उसके गर्दन पे सर तथा गर्दन में दर्द युक्त सूजन होती है, जीभ बाहर निकल जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस में घरघराहट की आवाज आती है और ऐसा साफ प्रतीत होता है कि पशु को बेचैनी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और अंत में पशु मृत्यु रोग को प्राप्त होता है। तो इसका जैसे ही ऐसे कोई संकेत आते हैं तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और आवश्यक ट्रीटमेंट उसके निर्देशानुसार ले जाना चाहिए
1: जी। तो ये जो रोग अगर हो जाए तो इसका उपचार या बचाव किस प्रकार से संभव है?
0: इसमें मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि वे अपने स्तर पे स्वयं की चिकित्सा नहीं देवे या देशी चिकित्सा पद्धति का उपयोग नहीं करें, इससे समय बर्बाद होता है, इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। तो उचित समय पे पशु चिकित्सक से समय पर उपचार शुरू कर देना ही हितकर रहेगा। और इसमें यह कि जानलेवा रोग है, इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक है, बचने की दर बहुत कम है। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक अनुसार सल्फाडिमिडिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल जैसी एंटीबायोटिक्स का उपयोग इस रोग में कारगर है। इसके साथ अन्य जीवन रक्षक दवाइयां भी इसमें मददगार साबित होती हैं। इसमें बचाव ही सर्वोत्तम कदम है, इसलिए मेरी ये सलाह है कि बरसात के दिनों से पहले उचित वैक्सीनेशन पशु चिकित्सक के अनुसार करवाया जाए
1: जी,
0: जिससे कि इसको पहले ही इस बीमारी को रोका जाए ताकि कोई आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े, क्योंकि पशु बड़ा कीमती है।

0: पशु पालकों के लिए, और उसका जो जीवन है उसी पशुओं के उत्पादन पे भी निर्भर करता है
1: जी। इसी तरह से डॉक्टर साहब, आपने सुना है एक दुधारू पशुओं में लंगड़ा बुखार जो है वो रोग भी काफी हो जाता है। अब ये लंगड़ा बुखार जो है इसके क्या कारण होते हैं, और क्या ये भी सभी दुधारू पशुओं में फैलता है या अन्य पशुओं जैसे घोड़ा वगैरह उनमें भी हो जाता है?
0: लंगड़ा बुखार जो है ये बड़े जानवरों में जैसे गाय, भैंस, भेड़ इत्यादि में देखने को मिलता है। यह भी एक जीवाणु जनित रोग है, इसको ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं। मुख्य रूप से ये गाय में देखने को मिलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। यह रोग प्राय सभी स्थानों में पाया जाता है, लेकिन गर्म एवं नम जलवायु वाले प्रदेशों में यह ज्यादा पाया जाता है। बरसात के मौसम में यह रोग ज्यादा फैलता है और इसकी मृत्यु दर 80-100% तक हो सकती है,
1: मतलब काफी खतरनाक।
0: हाँ जी। यह रोग मुख्यतः जवान पशुओं में, जो 6 माह से 2 साल के पशुओं की उम्र है उन पशुओं में देखने को मिलता है। यह विशेषकर छोटी आयु 2 वर्ष से कम पशुओं में होता है। इसे लंगड़ा बुखार के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से इसको लंगड़ी बुखार भी कहते हैं। इसमें साधारणतः ज्वर होता है और जो बुखार है वो 105 से 108 डिग्री के करीब होता है, और मांसल भाग जो उसका है पशु का, जो पैर है, पुट्ठे हैं, उस पर आपको एक सूजन दिखाई देगी। आप जब वो सूजन को दबाएंगे तो उसमें से आपको चरचर की आवाज आएगी और वो काफी पीड़ादायक होती है। सूजन काफी गर्म होती है और उसको दबाने पे दर्द होता है। कुछ समय बाद वो सूजन खत्म भी हो जाती है, लेकिन वो जो उभार है दर्द, अगर उसमें चीरा लगाया जाए तो उसमें दुर्गंध युक्त काला मवाद सा निकलता है, जिससे ये पता चलता है कि इसको लंगड़ा बुखार है। और इसमें पशुओं में आपको लंगड़ापन दिखाई देगा। और ये जो एक जीवाणु जनित रोग है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लोस्ट्रिडियम चोवाई नाम होता है। ये कई वर्षों तक ये बैक्टीरिया स्पोर बना लेता है, इस कारण से कई वर्षों तक ये मिट्टी में बना रहता है। तो इसलिए यदा कदा इसका प्रकोप होता रहता है। इसलिए समय पे सैनिटाइजेशन करना, चारागाह का सही चारे का उपयोग करना, और जो आप पानी पशुओं को दे रहे हैं उसका सही रूप से उपचारित करके और चारे को उपचारित करके पशुओं को देना हितकर रहता है
1: जी। तो कुल मिला के काफी संक्रामक रोग है, और ऐसी स्थिति में तुरंत पशुपालकों को, पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क
0: इसमें करना पहचान के लिए बड़ा स्पष्ट चिन्ह है कि 105 से 108 डिग्री तक बुखार होता है। पशु जुगाली करना बंद कर देता है, आंखें लाल हो जाती है
1: जी,
0: और रोगी पशु के कंधे पे, गर्दन पे, जांग पे और पुट्ठे पे सूजन आ जाती है। और जब इस सूजन के हिस्से को दबाने पे चरचर की आवाज आती है तो इससे ही आपको ये आभास हो जाता है
1: कि ये लंगड़ा बुखार है।
0: और पशु चिकित्सक की उचित सलाह ली जानी चाहिए, इसके जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं उससे वो ये कंफर्म हो जाता है कि ये रोग है।
1: तो पशुओं के वर्षाकालीन संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे पहचान सकता है एक आम पशुपालक, और रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर आज जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल मूल चंदानी जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सा किसान भाई बहना, अब आप जानकारी सुने ही पशुओं के वर्षाकालीन रोग की रोकथाम जानकारी दे रहा था डॉक्टर अनिल मूल चंदानी, और आपसे जानकारी ले रहा था संदीप पारिक।
3: तो नमामी भाई, देखो साहब, पशुपालन संबंधी घनी महत्व जानकारी सुनी किसान भाई, आगे आने वाला बरसात रो मौसम है तो इन वक्त ऐसे अगली बात आप ध्यान रखा ला। और अब देखो नमामी भाई, खासो टाइम हो गया है तो अब गीतर लेरी और चला सुनाओ आप किसान भाई ने एक बढ़िया सी दीपाली सेठ रो गौड़ो और गीतर लो।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमामि भाई, खेती बाड़ी जुड़ियोड़ो किसाना ने अधिकतर कोई भी अपा काम काज करा तो उनरो फायदो सरकारी तरफ से मिलतो रहे, और सरकार आपनी जिकी योजना चला रखी है उन योजना रो आपा किसाना ने फायदो लेनो चाहिए। अब बात करा आपा किसाना रे खातर यंत्र, जिकारो यंत्रीकरण है, खेती में काम आने वाला यंत्र है, चाहे ट्रैक्टर हो, हेरो हो, कृषि राजू दूसरा वे थ्रेसर हो, ऐ सगला भी जिका भी यंत्र है, इन यंत्र माते किसाना ने किनी प्रकार की सहायता जरूर मिलिया करे, इन बारे में आज आपा रे खाने कही है।
4: देखो सर, राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना है और बिना माने किसान जीता भी है, माने विभिन्न कृषि यंत्र वास्ते राज्य सरकार से अनुदान दियो जावे। आवेदन सामान्यतः राजस्थान किसान साथी पोर्टल है या ई मित्र केंद्र है सायरे सो करियो जा सके। बिरल माने कई श्रेणिया भी मन बनाई रही है, जहाँ लघु है, सीमांत किसान है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिला किसान है, माने घणो लाभ मिलिया करे,
3: ज्यादा मिल

0: और कस्टिंग हायरिंग सेंटर जो है जिनमें किसान रे खातिर महंगा यंत्र खरीदना संभव कोनी, मारे वास्ते भी कृषि यंत्र बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर व्यवस्था ने प्रोत्साहन दिया गया है। किसान किराए माथे आधुनिक मशीना ने भी ले सके, किसान समूह या सरकारी समितियां है या फिर FPO भी लाभ ले सके हैं।
1: बिल्कुल नमामि भाई, इन प्रकार अपन किसान ना ने विशेष कर इन प्रकार जी योजना है अनुदानित योजना इन रो फायदो उठानो चाहिए, यंत्रीकरण रो फायदो लेनो, चाहे अपा यंत्र है चाहे अपा कृषि यंत्र है नुआ लेवा और चाहे अपा किराए माथे लेला, बस अपन यह है के कृषि यंत्र वास्ते अपन पोर्टल जिको बनो राज किसान साथी पोर्टल ई मित्र माध्यम रजिस्ट्रेशन कराओ और विशेषकर ई में लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति और विशेषकर महिला वर्ग ने ज्यादा फायदो ले रहा वैसा।
0: और अबे आपा गीत खाने चला क्योंकि कोई भी काम सपनो लिया हूं को नहीं हुए, काम करिए सो हुए
1: करियो, बिल्कुल
0: पर अठा गीत लाया हूं सपनो लाल चंद्र अंगारो गायो
1: सुनो सा ओ सपनो गीत लो।

0: नमामि भाई, देखो सा अपारे जिंदगी में बडेरा रो केवड़ो है, बूढ़ा बडेरा को पहलो सुख निरोगी काया हुए, और आ काया जद निरोगी रवेला जद अपा साफ सफाई रो पूरो ध्यान रखा ला, स्वच्छता रो पूरो ध्यान रखा ला, क्योंकि आज रे टाइम तो जिका घणसरी बीमारियां एड़ी है जिकी बे साफ सफाई नहीं राखने वजू, चाहे अपारे शरीर ही साफ सफाई हो, चाहे अपार आखते पाखते साफ सफाई हो,
1: कुल मिला साफ सफाई राखने से जे किसान भाइया घरे

0: माइने अगर शौचालय भी बनाओ तो वह भी पक्को बनाओ, कच्चो ना बनाओ, क्योंकि कच्चो शौचालय है वो गंदगी बढ़ावे।
1: बिल्कुल शौचालय
0: शौचालय और व्यवस्था भी ने खत्म करने व्यवस्था आवे तो बहुत बढ़िया हुए। तो आज सब चीज़ ध्यान रखना जरूरी है।
1: आज रे भगत में साफ सफाई एक कदम वही है कि अपा घर में शौचालय जरूर होना चाहिए और शौचालय विधिवत रूप हूँ पक्को शौचालय बना परो अपा साफ सफाई में एक बढ़तो कदम में पायदान हो सके। इन खातर जरूरी है अपा ने साफ सफाई और घर में पक्को शौचालय।
0: अब चलता चलता सिंचार बेड़ा होगी है एक अर्थ सुना
1: सुनो सा बाबे रामदेव जी रो भजन।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत और प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और श्री दीवान दान रत्नों। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।

लोक क्षमाकर सुगम संगीत में आप सुन रहे थे ये भजन स्वर था वाणी जयराम का। और लीजिए आप सुनिए नरेंद्र पंडित के स्वर में ये गजल।

इस गजल में स्वर था नरेंद्र पंडित का। और लीजिए अब सुनिए अशोक वर्मा और सीमा कौशिक की आवाज में यह गजल।

अशोक वर्मा सीमा कौशिवा की आवाज़ों में गाया हुआ ये गज़ल था। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं और अब प्रस्तुत है विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। श्री मोहन नागर।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: हाल ही में श्री मोहन नागर जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजने की घोषणा की गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई
2: जी।
3: कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं और उसको संज्ञान में लेकर के, और जब ये घोषणा हुई अवार्ड की तब बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन भी मैं, मां नर्मदा जयंती थी, मां नर्मदा जी की सेवा में, स्वच्छता में हम सब हमारी टीम के साथ लगे हुए थे और इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर के।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
2: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। सर, जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
3: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी, और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजाति आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में, और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग

0: वहां में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, डैम बनाने का, बड़े तालाब बनाने का, तो ग्राम स्तर पर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां बहुत बड़ी बड़ी संरचना बनाना ये संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे काम हमने प्रारंभ किए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टॉप डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहां पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है, और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके एक एक दो दो एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ, और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला। गाँव में जल स्तर भी बढ़ा, जिन गाँव में फरवरी में मार्च में ही पानी समाप्त हो जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, वो फिर मई जून तक भी और उस गाँव में पानी ठहरने लगा और इसलिए रोग भी रुकने लगे।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स है वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है, तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया। और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। उसमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजाति समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रह करके तो जंगल खत्म कर दिए, गाँव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के, कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क, सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए थे।

0: अच्छी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहां की जो सोना घाटी है उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया। वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहां जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की। और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवर टैंक है, पानी की टंकियां हैं। जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है, उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं, तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे से टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, जैसे वो भी इस बार बारिश आने वाली है, गर्मियां आएंगी फिर बारिश आएगी, तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये 3 बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारी घर की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर भी करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उतने माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोना घाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोना घाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं, 2-4 साल में फिर से कह सकते हैं सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल। तो ये काम हम छोटे छोटे समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है, चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो

0: पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। मेरे लिए
1: जी
0: सौभाग्य
1: जी
0: की बात है। एक प्रकार का एक काव्य संग्रह है जो प्रकृति को समर्पित है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान,
1: जी,
0: उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जन भागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है। शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के, और ये जो तीनों बातें हुई है मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल सर, आपके लिए परिवार और गांव आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं?
0: परिवार तो हमारा मूल आधार है हमारे समाज का। जब तक कुटुंब व्यवस्था हमारे समाज में है तब तक ही हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति कहे हिंदू संस्कृति कहे वो अक्षुण है, क्योंकि हमको जितने संस्कार मिलते हैं सब प्रकार के वो हमारे परिवार में मिलते हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का जल का जो मुझे संस्कार मिला वो अपने परिवार के माध्यम से मिला कि घर में शाम के समय आज भी आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े जो है वो बच्चा कोई अगर पेड़ को हाथ लगाता है तो पेड़ को हाथ नहीं लगाना इस प्रकार का वो करते हैं रात को। तो ये परिवार से ही सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है, ये कुटुंब व्यवस्था। और ये ग्राम में आधारित जो भारत की व्यवस्था थी कि कैसे एक परिवार की तरह पूरे गांव रहता है, आप देखेंगे प्रत्येक गांव स्वावलंबी था। किसी गांव को केवल नमक खरीदने के लिए गांव के लोग जाते थे, बाकी सारी चीजें गांव में पैदा होती थी, सारे कारीगर गांव में थे। 4 महीने भी अगर गांव के बाहर नहीं जाता तो उसकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था। गांव गांव में किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई उद्योग होता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, कहीं पर कोई सामान बनता था और उसका विदेशों में जाकर के व्यापार होता था। और इसलिए अंग्रेजों के आने के पहले हमारी जो परिवार व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था ये बहुत सुदृढ़ थी सारी दुनिया में। आज फिर से हमको उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और इसके लिए जो एक अभियान चला है कि कुटुंब कैसे फिर से सुदृढ़ बने, कैसे संयुक्त परिवार हमारे हो, ताकि ये सारी बातें जो सहज हमको सीखने को मिल जाती थी परिवार में वो आज उसके लिए हमको अलग से प्रशिक्षण देना पड़ रहा है हमारे बच्चों को। पहले सारी चीजें परिवार में सीखने को मिल जाती थी, इसलिए उन गांवों को फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बैतूल जिले का एक बाचा गांव को हमने उस रूप में लिया है, वो जनजाति गांव है। तो एक अच्छा गांव कैसे बन सकता है अपने गांव के लोगों के माध्यम से, तो बाचा गांव को सोलर ग्राम, जल ग्राम, आज पर्यटन गांव के रूप में गांव के लोगों के सहयोग से एक आदर्श गांव के रूप में उसकी ख्याति हुई है। तो ऐसे गांव हम फिर से बनाए ताकि देश दुनिया हमारे गांव को देखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है परिवार को, तो वाकई घर परिवार से ही सीखे तो बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही सर, जो युवा वर्ग है वो कैसे इस जल संरक्षण पर्यावरण की दिशा में, काफी युवा कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो और जुड़ना चाहते हैं छोटे छोटे प्रयास क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, युवा इस दिशा में अभी पिछले एक दशक से जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, एक तो केस द रेन को लेकर के, फिर एक पेड़ माँ के नाम को लेकर के, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का और महिलाओं का, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने नवांकुर सखी जो अभियान चलाया था उसमें हजारों महिलाओं ने उसमें योगदान किया था और अभी हमने युवा जन अभियान परिषद के माध्यम से जब काम प्रारंभ किया तो उसमें हजारों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पहले युवा जो है वो अपना जन्मदिन मनाते थे तो कहीं केक काटते थे, कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में देखता हूँ कि अधिकांश युवा अपने जन्मदिन पर कोई पौधा लगाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं या कोई गौशाला में जाकर के गोग्रास देते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति हमारे युवा आगे आ रहे हैं और युवा जो है वो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, मोदी जी बार बार कहते हैं, और इसलिए युवा जिस दिशा में जाएंगे उधर पूरा समाज जाएगा। और आज हमारा युवा अपनी प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, अपने समाज को लेकर के जागरूक हुआ निश्चित रूप से और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। हमारे हर अभियान में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का रहता था तो वो युवाओं का और महिलाओं का ही बड़ी मात्रा में रहा है और आगे भी युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़े, उद्यमी को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन साथ में प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण इसको लेकर के भी अपने जीवन का एक भाग इसमें रखें और जीवन व्यवहार में हमारे प्रकृति और जल संरक्षण ये रहे। छोटे

0: छोटे काम करके हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर में हम पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जितना भी बजट हम अपने घर का बनाते हैं तो पानी का भी बजट बनाए कि भी हमारे एक व्यक्ति को 60 लीटर पानी लग रहा चाहिए, 60 से 100 लीटर, उससे ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज समाज को, प्रशासन को, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने भूगर्भ जल को बचा सकते हैं और वर्षा जल को बचा सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे उपाय हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि पानी का बजट बनाना पड़ेगा, पानी का सदुपयोग बहुत जरूरी है। मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए जरूर कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज बातचीत हो रही थी श्री मोहन नागर जी से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:20 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: लीजिए अब सुनिए अमित कुमार को, ये फिल्म है नास्तिक।

आशा भोसले के साथ अमित कुमार के गाए हुए नास्तिक फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आइए अब सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में सीमा मिश्रा का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: राजेश चांगड़े के गए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। 8:45 होने को है। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज एट 9।
1: कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था।

0: करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नहार आकाशवाणी समाचार कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की।

0: डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों

की मौत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये स्वर था अरिजीत सिंह का और ये फिल्म थी दे दे प्यार दे। और लीजिए आप सुनिए बॉडीगार्ड फिल्म का ये गीत, जैसे आवाज दी है ऐश खान और साथियों ने।

0: लीजिए आप सुनिए जवान फिल्म का गीत, स्वर है अनिरुद्ध, क्षमा करें अनिरुद्ध रविचंद्र का।
1: जहां जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

अनिरुद्ध रविचंद्र के गाए जवान फिल्म के इस गीत के साथ ही ये फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से गीत।

ये गीत हमने आबरू फिल्म से लिया था, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। इसे लिखा था जीएल रावल ने और संगीत दिया था सोनिक ओमी ने। और आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, जिसे हमने किस्मत फिल्म से लिया है। स्वर है महेंद्र कपूर का।

महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुन रही थी किस्मत फिल्म का ये गीत, बूंद जो बन गई मोती। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत, स्वर है मुकेश का।

मन्ना डे और साथियों के गाए विश्वनाथ फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आपने सुने पुरानी फिल्मों से गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे
1: पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान है।
2: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि पानी हर बाधा को अपने रास्ते से काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने न सिर्फ पानी की लहरों को बल्कि जीवन में आई हुई सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता के नए आयाम कायम किए हैं। आइए स्वागत करते हैं जगदीश तेली जी का। जगदीश जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी नमस्कार सर।
2: जगदीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
3: सर, मेरा नाम जगदीश तेली है, मैं राजसमंद का निवासी हूं और पैरा में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं।
2: जैसे कहा आप पैरा स्विमर हो
3: जी,
2: तो ये जो आपके साथ जो घटना हुई है इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कैसे हुई और किस उम्र में हुई?
3: सर, ये घटना मैं जब 7 साल का था तब हुई है और उस समय मतलब मुझे भी नहीं पता था, इतना नॉलेज तो छोटा था मैं उस समय, लेकिन ये 7 साल की उम्र मेरे साथ घटना हुई थी।
2: अचानक से हो गई थी ये?
3: अचानक मतलब ऐसे मेरे माता पिता बताते हैं कि अचानक मतलब पैर जो है पैरालिसिस हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो वापस थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था।
2: जैसे आपने कहा आपको 7 साल की उम्र में ये हुआ, तो उसके पहले तो आप एक नॉर्मल किड थे
3: जी,
2: लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर आप एक पैरल वो हो गए, आप डिसेबल हो गए,
3: जो चलने में भी सहारे की जरूरत होती थी उस समय
2: जी। तो जो समाज है उसका रवैया आपके लिए बिल्कुल बदल गया या वो ही रहा?
3: नहीं, बहुत नेगेटिव था सर।
2: जैसे कि
3: जैसे हीन भावना से या फिर कोई बोल देना, जैसे डायरेक्टली बोल देते थे, मतलब एक ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन अब ऐसे शब्द है कि जैसे लंगड़ा है ऐसे बोल
2: जी, जी।
3: इस तरह की सुनने को मिलता था, अब कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा,
2: मतलब वो समझते थे कि आप बोझ बन जाओगे।
3: जी, बोझ बन जाओ जी।
2: और आपके माँ बाप क्या सोचते थे?
3: नहीं, उनका मतलब बहुत पॉजिटिव था, भाई जो भी है वैसा है, क्योंकि माँ का एक मतलब कैसा भी बच्चा हो, माँ बाप का तो लाडला होता है
2: जी
3: जी। तो वो उसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उनके सपोर्ट से।
2: आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, खासकर स्विमिंग को लेकर?
3: ये सर एक मतलब एक खेल खेल में हुआ है। मैं जब ऐसे स्विमिंग खाली सीखने जा रहा था और जब मैंने भक्ति शर्मा का देखा, उदयपुर की जलपुरी नाम से फेमस है
2: जी,
3: और उनके माता जी के अंदर में मैंने स्विमिंग सीखी थी बाद में, तो उनका मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें वो इंग्लिश चैनल पार किया था 2016 में। तब से मेरे भी मन में आया कि लड़की होके कर सकती है, तो मैं खाली राजसमंद झील क्यों, मैं नहीं सोचा कि मैं राजसमंद झील में भी पार करूँ। तो मैंने ऐसे सोचा था और किसी को बोला मैंने, भाई मैंने ऐसे राजसमंद झील पार करनी, तो मुझे बोला कि नहीं नहीं तू तो दिव्यांग नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने दिमाग से आने की अब तो करना ही है, मतलब एकदम तरह का मैंने पॉजिटिव लिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना है। उन्होंने मना किया इसका मतलब, तो क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गई थी और मुझे पता है कि मैं डूबूंगा तो नहीं, कम से कम कैसा भी हो जाए, मौसम कैसा हो जाए भले, या फिर कुछ भी हो जाए।
2: स्विमिंग में सबसे जरूरी होती है कि आपके हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल हो
3: जी,
2: ठीक है। तो आपको शुरुआती दौर में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा?
3: सर, एक भगवान मतलब एक लोग कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो देता भी है, तो मेरे में एक चीज थी कि मेरे जब कोच भी बोलते सब कि मेरे जो पैर में जो पोलियो है उसकी वजह, मतलब पता नहीं मतलब, लेकिन मेरा हाथ में जो हाथ है, आम स्विमर जो होते हैं उनसे थोड़े लंबे है।
2: अच्छा।
3: तो मेरे वो मुझे फायदा मिला उसका,
2: उस चीज का फायदा मिला
3: जी।
2: और फिर जब आपने शुरुआत की तो फिर कहाँ से, नॉर्मल स्विमिंग से ही की कि जैसे आप गांव में तो लोग तालाबों से शुरुआत करते हैं?
3: तालाबों से सर, वही नॉर्मल स्विमिंग जो देसी गांव में होती है, क्योंकि मुझे फ्री स्टाइल का स्ट्रोक भी उदयपुर में आया तब पता चला कि भाई एक्यूरेट स्विमिंग ये भी होती है।
2: अच्छा। और फिर उसके बाद फिर आप कैसे कैसे धीरे धीरे अप्रोच करते गए?
3: मैं फर्स्ट टाइम सर यहाँ यूपी में एक रिवर स्विमिंग थी, नेशनल इवेंट,

0: उसमें गया ब्रॉन्ज मेडल लगा, तो एक तरह का होता है जैसे एक मेडल लग गया तो आपके पंख लग गए हो।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी, तो उस टाइप का मेरा वहाँ हुआ। फिर मेरा मतलब एक अब खुद में भी सर पॉजिटिव सोच ये सब जागृत हो जाती है कि एक मेडल लग गया तो मतलब आपको फिर धीरे धीरे सब रास्ते भी खुल जाते हैं कहाँ से कहाँ आगे क्या बढ़ना है, आगे के जो भी स्ट्रोक है कैसे सीखने हैं ये चीज़ें सब।
1: एज अ पैरा स्विमर और नॉर्मल स्विमर जब सीखते हैं तो इन दोनों में ट्रेनिंग को लेके क्या अलग अलग रवैया रहता है
0: बहुत,
1: या फिर मतलब टेक्निक वगैरह कुछ अलग रहती है दोनों में?
0: नहीं तकनीक तो सर सेम होती है लेकिन समझाने का तरीका जो होता है
1: जी,
0: जैसे आम स्विमर है उनको कोच समझा सकता है उनके तरीके से क्योंकि उनको पता है वो। आज हमें पूरे भारत में कई बहुत कम देखने को मिलते हैं दिव्यांग के लिए स्पेशल कोई कोच हो।
1: बिल्कुल,
0: तो अब कोच दिव्यांग अगर के लिए दिव्यांग के लिए होगा तो वो उसकी तरफ से समझा सकता है क्योंकि उन्होंने वो फेस किया है। अब जैसे मैं हूँ, मैं दिव्यांग हूँ और मेरे जो स्टूडेंट है मैं, मुझे पता है ये अगर पैर नहीं है तो क्या तरीका अपनाएंगे तो जाके वो मेडल लाएगा, तो उस तरीके से वो अब धीरे धीरे होने लगा है। पहले ये नहीं था कि दिव्यांग के लिए समझाने वाला हो, जैसे मुझे बहुत सारी जगह ऐसे भी थे कि नॉर्मल स्विमर जो स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं उससे अलग रखा जाता है, भाई ये तू अलग यहाँ पे कर ले, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई कि मैं उनके पास में, हालांकि उनके साथ नहीं कर रहा हूँ लेकिन पास में करके मैं उनके तरह के कॉपी करने की कोशिश करता था, तो उससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ ज़्यादा।
1: तो ये स्विमिंग करने के लिए कुछ जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है
0: जी, जी।
1: पैरा स्विमर्स के लिए कि वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल स्विमर्स के लिए रहते हैं?
0: पैरा में कुछ अब आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे इतने,
1: पहले नहीं होते थे
0: जी।
1: अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही
0: है, अब अपग्रेड होती जा रही है, जैसे अभी डाइविंग के लिए भी आ रहे हैं, सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें चेंज हुई है अब।
1: अच्छा, जब आपने अपना पहला मेडल जीता था जैसे कि आपने बताया ब्रॉन्ज मेडल था
0: जी,
1: है ना, उसके बाद जो समाज का रवैया था वो कितना चेंज हुआ आपके प्रति?
0: जो लोग सर मुझे बोलते थे पहले, जैसे मैंने रास मंजिल पार करी उस समय मुझे जो बोलते थे भाई तू नहीं कर पाएगा ऐसा वैसा, वही लोग जैसे माला लेके आए फिर वही लोग तारीफ करते थे तो वो फिर एक अलग ही खुशी देता था।
1: आपने इंटरनेशनल भी कम्पीट किया
0: जी,
1: तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आप कॉम्पिटिशन में जा रहे थे उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? कभी आपने सोचा था कि मैं एज अ पैरा स्विमर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाऊंगा?
0: सर सोचा तो नहीं था क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो इतना बड़ा सोचना मेरे लिए बहुत बड़े एक सपने की तरह था
1: जी।
0: लेकिन जब समाज का सपोर्ट, अपने घर वालों का सपोर्ट, सबका जो कोच का जो रवैया है या भी उनका जो तरीका है अपने बताने का, फेस करने का, उससे सर मुझे बहुत मतलब फायदा हुआ है। और समाज जब एक होता है ना, जब मेरा मतलब ब्रॉन्ज मेडल लाया उसके बाद से मेरा लाइफ एक तरह का जैसे चेंज होने लगी थी, तो उससे मतलब अब जब इंटरनेशनल जा रहे हो आप तो उसमें तो होता ही सर एक प्रेशर तो होता है, हालांकि वो वाले खेलने का, लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो एक गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी
1: जी। बिल्कुल, आपकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी चीज़ है इंग्लिश चैनल और कैटालिना चैनल की
0: जी जी,
1: इन दोनों चैनलों के बारे में आपके मन में सबसे पहले विचार क्या आया
0: सर? मेरा
1: और कहाँ से आया, मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं इन दोनों चैनलों में उतरूँ और इनको पार करूँ?
0: मैं सर है मतलब जब स्विमिंग की मेरी शुरुआत हुई थी मेन, तब मैं निकला ही इसलिए था कि इंग्लिश चैनल करना, 2009 में 10 में हमारा प्लान था कि इंग्लिश।
1: अच्छा, आपने उनसे जो उदयपुर की जो भक्ति जी, जी थी हाँ, उनसे प्रेरणा लेके,
0: उनसे प्रेरणा ली कि भाई मुझे भी इंग्लिश चैनल करना है
1: हाँ।
0: लेकिन क्या हुआ कि ऐसे जैसे तो सर फंड की भी जरूरत होती है
1: जी, बिल्कुल।
0: जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में किसान परिवार से हूँ तो इतना वहां से तो होना नहीं, मतलब बाहर तक जाना मतलब सोचने से भी, और ट्रेनिंग के लिए भी नहीं हो रहा तो वहां तो क्या होगा सर। तो फिर पैसे नहीं हुए थे, तो मतलब 2010 तक मेरे बजट नहीं हुआ था तो फिर नहीं कर पाया मैं। लेकिन जब मेरे स्टेट लेवल पे नेशनल पे मेडल लगने शुरू हो गए और लोगों का जैसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो अलग अलग बहुत सारी कंपनियों भी हमें सपोर्ट किया, जैसे हमारे केलवा से भी कुछ संस्थाएं हैं, राजसमंद से, उदयपुर से हैं, मुंबई से हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और उससे हम इंग्लिश चैनल करके आए। और इंग्लिश चैनल में हमारा सर एक पैरा ग्रुप बना, जैसे हम नेशनल लेवल पे मिलते रहते खिलाड़ी लोग, तो उसमें हमारा एक ग्रुप बना, उसमें बोला सबको करना था इंग्लिश चैनल, तो हमने वहीं से एक प्लान करके 2018 में प्लान किया कि अब करना है। तो फिर हम रोहन, हमारे जो कोच थे रोहन मोरे जो पुणे के हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमने ट्रेनिंग करी वहाँ, और फिर 2018 में करके आए हम।
1: तो जब आप इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे तो उस समय आपको क्या रियलाइज हुआ कितनी बड़ी चुनौती है, और ये उस समय क्या क्या बाधाएं आई?
0: सर एक तो इंग्लिश चैनल अपन बोलते हैं यहाँ खाली बोलना देखना मतलब करना ऐसा सोचना आसान है, लेकिन जब हम वहाँ हम गए ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ जो लगा जैसे एक हाथ पैर सुन्न हो जाना,
1: बिल्कुल
0: ये चीजें हमारी,
1: पानी का बहाव भी ज्यादा होता है,
0: तो दिमाग में कभी ऐसा हमारे भी दिमाग में आया था कि यार इसकी जगह कोई दूसरा गेम चूज करते,

0: तो अच्छा था क्योंकि इतना ठंडा पानी और खाली यहाँ मतलब दूसरा गेम करते ठंड तो ठंड से बजाते हैं, लेकिन वहाँ चलो गए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग करी वहीं पे, तो हम उसी लेवल मतलब जहाँ पे हम देखते थे वहाँ के लोग एकदम ओपन, जैसे हम कट में घूम रहे हैं कट कपड़े पहन के, और हम ऐसे जो अपने सर्दियों में पहनते हैं वो कपड़े पहन के घूम रहे थे। तो वहाँ पे भी लगा कि सर ये मतलब इसके तो ये अब हम कैसे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम डेढ़ महीना वहाँ प्रैक्टिस करी, उसके बाद में हमने उसी उनकी तरह ऐसा आराम से कर लिया जैसे।
1: और फिर उसके बाद कैटेलिना चैनल का नंबर आया
0: जी।
1: जो चुनौतियाँ इंग्लिश चैनल के समय थी, क्या वही चुनौतियाँ कैटेलिना चैनल के समय थी कि वहाँ पे कुछ विपरीत वो माहौल था?
0: वो विपरीत माहौल था वहाँ, इंग्लिश चैनल बहुत टफ है, कैटेलिना चैनल थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा मतलब आप एकदम इजी भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन थोड़ा लाइट है, जो ठंडे जो कम ठंडा है जैसे, और चैलेंजिंग नहीं। इंग्लिश चैनल में बहुत करंट आते हैं, जैसे करंट वेव आते हैं अंदर के जो आपको पीछे खींचते हैं, तो कैटेलिना चैनल में इतना नहीं था। और प्लान था हमारा कि जैसे इंग्लिश चैनल करना फिर कैटेलिना चैनल करना, 7C का टारगेट था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे।
1: अच्छा सर, आप एक ट्रेनर भी हैं
0: जी,
1: आपके पास जब कोई बच्चा स्विमिंग के लिए आता है खासकर पैरा स्विमर, उसमें आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं कि वो पानी में उतर के स्विमिंग कर ही पाएगा?
0: नहीं, उनको विश्वास में लेते सर, प्यार से भी बच्चे मतलब कर लेते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं हालांकि।
1: अच्छा,
0: लेकिन पहले जो होता है प्यार से समझाना जैसे करना ना कराना वो कर लेते हैं, हालांकि ज्यादातर ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं होती है ना। और पैरा स्विमर तो सर वैसे ही वो आते हैं, मतलब ऐसे मैंने अब तक जो सीखा है जितने भी पैरा हैं, मुझे जो नॉर्मल लोगों को सिखाना और उनको सिखाना बहुत आसान लगा, मतलब पैरा को सिखाना मुझे बहुत आसान लगा।
1: ऐसा क्यों
0: पता नहीं, ये अलग ही उनके अंदर एक सर अलग ही होता है, वो जुनून होता है थोड़ा सा एक, क्योंकि वहां तक आना
1: मतलब साबित करने का जुनून रहता है।
0: हाँ, साबित करने का जुनून होता है, बाकी होता है नॉर्मल जो भी आते हैं सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाएंगे।
1: पिछले कितने सालों से सिखा रहे हैं?
0: मैं 4 साल हो गए सर सिखाते।
1: तो इन 4 सालों में आपका ऐसा कोई शिष्य जिसने बहुत ज्यादा मतलब काफी उपलब्धि हासिल कर ली हो?
0: एक है हमारा विष्णु कुमार बेरवा, जो अभी हाल ही में वो एक गोल्ड 2 सिल्वर लेके आए हैं बेंगलोर में जूनियर पैरा में।
1: आपके नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा उपलब्धि उन्होंने
0: जी जी।
1: अच्छा जगदीश जी, जाते जाते हमारे जो श्रोता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव इतना स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आप अगर हो सके कॉम्पिटिशन की तैयारी करते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बचाव जितने तो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और माता पिता को भी अपने बच्चों को अपने बचाव जितने सिखानी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, ये थे श्री जगदीश तेली जी। आपने अपनी कहानी से ये बताया, ये साबित किया कि शारीरिक बाधाएं सिर्फ नाम की होती है, अगर आपका मानसिक ताकत हो और आपके पास कर जाने का जुनून हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भले वो इंग्लिश चैनल हो या कैटेलिना चैनल हो। और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में 7 के 7 चैनल पार करें
0: जी। धन्यवाद
1: हमारे उदयपुर का, राजसमंद का, और हमारे देश का नाम रोशन करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत, यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान था। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवा रहे हैं जिसका खेल बहुत ही तेज गति का है, और उसमें शॉट मारने के लिए आपको इतना कम समय मिलता है जैसे सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप उस खेल के शॉट को कहाँ और कैसे मारे ताकि आप अधिक से अधिक अपने पॉइंट बना सकें। जी हाँ, उस खेल का नाम है टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी के तौर पर आज हमारे साथ हैं श्री प्रखर मदान। प्रखर मदान, नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार
3: प्रखर। टेबल टेनिस की बात की, और जो जैसा कि मैंने कहा कि इतना कम समय मिलता है सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम जब आपको शॉट मारना पड़ता है, ये बात सच है?
4: हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आपको आधा सेकंड से 1 सेकंड रहता है, उसमें आपको पूरा डिसाइड करना होता है आपके पास बॉल स्पिन कौन सी आ रही है, कैसे कितनी स्पीड में बॉल आ रही है, सामने वाला प्लेयर कहाँ पर खड़ा है, आपको वो बॉल कहाँ पर प्लेस करनी है, ये सब चीज़ें आपको आधे से 1 सेकंड में डिसाइड करके ही सब कुछ आपका फैसला लेके आपको उधर बॉल प्लेस करनी होती है।
3: इतनी तेज गति का खेल है ये, जिसमें इतना कम समय हमको शॉट मारने के लिए सोचने का समय मिलता है कि हम कैसे अपने पॉइंट्स को बचाएं और अधिक से अधिक अपने पॉइंट बनाएं। टेबल टेनिस के खेल की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ?
4: तो ये स्टार्ट हुआ था जब मैं करीब 10 साल के आसपास का था, जब मैं फिफ्थ क्लास में था
3: जी।
4: तो मेरे पापा ने मुझे इसके लिए इसमें लगाया है, मतलब मेरे पापा बहुत खेलते थे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम। तो इसका शुरुआत हुआ, मेरे पापा ने एक टूर्नामेंट जीता था तो वो बहुत सारे प्राइजेस लेके आए थे घर पे एक बार।

0: तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने ऐसे ही पापा से सीखना चालू किया मेरे घर की डाइनिंग टेबल पे।
1: अच्छा
0: तो मेरे पापा हमेशा ऑफिस से आते थे तो मैं डाइनिंग टेबल हमेशा रेडी करके सेट करके उस पर नेट वेट लगा के मैं हमेशा तैयार रहता था और पूरा इंतज़ार करता था उनका। और फिर मेरे पापा ने मेरे को खेलना सिखाया उसका, तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। हम लोग खेले ऐसा 2-3 महीने, फिर मैं धीरे धीरे मेरे पापा को टक्कर देने लगा,
1: अच्छा
0: पापा के साथ अच्छा जीतने लगा, मतलब वॉल प्रैक्टिस करता था मैं पापा, फिर घर आते थे तो खेलता था उनके साथ। तो फिर ऐसे ऐसे मेरा गेम काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और उसके बाद फिर ये देख के मैंने स्कूल में भी खेलना चालू करा, तो स्कूल में फिर मेरा धीरे धीरे हाउस टीम में सिलेक्शन हुआ। फिर ये ऐसा ऐसा करके मैंने फिर शाम को मैं आके डाइनिंग टेबल पे फिर मेरे को छोटी लगने लगी। और फिर मेरे पापा ने मेरे को, जो मैं तब अलवर में रहता था,
1: जी
0: तो अलवर में स्टेडियम था एक, वहाँ पे अच्छे प्लेयर खेलते थे, तो धीरे धीरे मैं अपनी मम्मा के साथ जाता था वहाँ पे शाम को खेलने, तो वहाँ पे मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर ऐसा करीब ये चला होगा 1 से 2 साल, फिर मैं अपनी स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ। तो तब मैं सबसे छोटा प्लेयर था जो स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ था 7th क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट खेला, तो 8th स्टैंडर्ड की बात है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था जिसमें मेरा पहली बार ही मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था और पहली बार में मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे ही चला। फिर 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, और 9th स्टैंडर्ड में मैं डिस्ट्रिक्ट में एज अ मैंने 8th स्टैंडर्ड में मैं 5th क्वालिफाई किया था सिर्फ, बाकी 9th स्टैंडर्ड में मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया पूरे जयपुर में।
1: जी
0: तो उससे मेरा फिर वापस स्टेट हुआ, और फिर उसी साल मैंने पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 4th रैंक हासिल करी थी एज अ स्टेट स्टेट लेवल पे।
1: स्टेट लेवल पे, जैसा आप बता रहे हैं कि 7th से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना शुरू किया और लगातार पहली दूसरी पोजीशन के आसपास ही आप स्टैंड करते रहे, और पापा ने आपको को देखकर आपको इसका शौक लगा। अभी खेलते खेलते आपको काफ़ी अर्सा हो गया है, और स्टेट के बाद में क्या कभी नेशनल टूर्नामेंट में किसी में जाने का मौका मिला जहाँ पर दूसरे स्टेट के प्लेयर्स भी आए हों?
0: स्टेट के बाद हमारा ऐसा होता है, जब मैं 4th रैंक आई थी मेरी ऑल ओवर राजस्थान में, मतलब पूरे स्टेट में, तब हमारा नेशनल कैंप लगता है जिसमें 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो एक रहता है आपका क्वार्टर फाइनल में जो 8 लोग आते हैं, उसके बाद 2 बच्चे वो उनकी ओवरऑल रैंकिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के 2 लोग जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं टेबल टेनिस के, वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसका 10 लोग का हमारा नेशनल कैंप हुआ था जयपुर में, 2014 की बात है ये, तो 2014 में नेशनल कैंप हुआ था। तो उसमें मैं थोड़े से रैंक से रह गया था, तो 5 लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें, तो मैं 6th पोजीशन पे आया था। तो उस साल भी मैं 3 बार स्टेट लेवल खेला हूँ और 3 बार टीम इवेंट में हम लोग 2nd आए हैं, 2 बार मैं जयपुर की तरफ से खेला हूँ और 1 साल मैं 8th स्टैंडर्ड में अलवर की तरफ से खेला हूँ।
1: जी हाँ, प्रखर मदान, आप काफ़ी तेज गति से इस गेम को खेलते हैं, और इससे कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है काफ़ी इसमें चाहिए खेलने के लिए। वास्तव में अगर हम टेबल टेनिस की टेक्निक को सीखना चाहें, कि टेक्निक का गेम है या माइंड का गेम है, किस तरह से हम इसको खेलते हैं?
0: तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों का ही गेम है, गति का भी गेम रहेगा इसमें और इसमें आपका टेक्निक भी बहुत रहता है, और ये बहुत धीरे धीरे आपको आता है। आप सोचोगे कि आपको बहुत जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं रहता, ये बहुत ही आपके आपको बहुत इसमें अनुभव चाहिए, बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इसमें वो मास्टर कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत स्पीड से बॉल आती है और बहुत तरीके की स्पिन होती है इसमें, साइड स्पिन होती है, बैक स्पिन होती है, फॉरवर्ड स्पिन होती है, तो आपको वो चीज़ें एनालाइज करने में और देख के खेलने में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम लगेगा आपको ये सब सीखने में। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मतलब स्टैमिना के लिए भी, मतलब मेरा कोच मुझे मल्टी बॉल वो प्रैक्टिस कराता था, उसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। फिर आपका फुटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है कि आप पोजीशन से इधर लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करें, तो फुटवर्क भी इसमें एक बहुत ज़्यादा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम का है, तो उसका आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। और बाकी मेरा कोच मुझे ये मल्टी मल्टी बॉल से, और उसके उससे मेरा स्टैमिना काफ़ी इम्प्रूव हुआ था।
1: जैसा आप बता रहे हैं कि आपके कोच ने आपको सिखाने में काफ़ी मेहनत की, आपने 2 शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया है, फुटवर्क और स्पिन। ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं
0: हाँ,
1: हम
0: वो बॉल का गेम में तो सब में ही रहता है आपका, आप टेनिस ले लो, टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में ही आपका सारा स्पिन रहता है, बैक स्पिन, फॉरवर्ड स्पिन, साइड स्पिन, तो वो सब आपको देख के खेलना पड़ता है कि आपको कब साइड स्पिन का, आपको कैसे सामने वाले को रिप्लाई करना है बैट से, तो वो सब आपको देख के ही करना पड़ता है।
1: प्रखर, कभी आपको लगा खेलते खेलते कि यार एक बहुत ही टफ गेम है और इसमें काफी स्पीड चाहिए और मुझे गेम बदलना चाहिए, कुछ और खेलूं?

0: ऐसा विचार मन में आया कभी?
1: नहीं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा विचार आया, लेकिन मैं ज़रूर, मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है, मेरे पापा ने सिखाया वो भी मेरे को, तो मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है और लॉन टेनिस, तो मैंने सारे तीनों रैकेट स्पोर्ट्स बहुत खेले हैं, बट प्रोफेशनली मैंने टेबल टेनिस को ही वो चुना क्योंकि मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन एज अ मैं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी ये टेबल टेनिस और लॉन टेनिस काफ़ी सिमिलर गेम है क्योंकि इसमें आपका स्पिन वगैरह सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, लेकिन थोड़ा, लेकिन बैडमिंटन भी खेला है तो फुटवर्क मेरा उन सब से भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है क्योंकि बैडमिंटन बैडमिंटन में थोड़ा आपका बड़ा एरिया हो जाता है तो
0: जी
1: उसके लिए आपको और फुटवर्क ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, तो मैं कहूँगा कि मेरा बैडमिंटन और लॉन टेनिस खेलने से भी मेरे गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है।
0: इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल टेनिस के प्लेयर को बैडमिंटन और टेनिस दोनों खेलना जरूरी है ताकि
1: नहीं,
0: उससे
1: खेलना ज़रूरी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो आपका फुटवर्क और ये सब जो,
0: मतलब आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आता
1: हाँ
0: है।
1: गेम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, करेक्ट।
0: ऐसा कोई मैच याद है जब आपको बिल्कुल नेक टू नेक लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा और हारते हारते जीत गए, या ऐसा कि मैं जीत रहा था और जीतते जीतते हार गया?
1: तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा नेशनल कैंप लगा था 9th स्टैंडर्ड की बात है ये, तो उसमें मेरा वो चल रहा था, प्री क्वार्टर फाइनल चल रहा था जिसमें 16 लोग रहते हैं,
0: जी
1: तो उसमें मेरे को नेशनल कैंप क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 8 में आना चाहिए जो कि होता है क्वार्टर फाइनल, तो उसमें मुझे अच्छे से याद है मेरा मेरा एक दोस्त ही था, मैं तब 8th स्टैंडर्ड में अलवर के लिए अलवर से खेलता था और 9th स्टैंडर्ड में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था जयपुर, तो हमने मैं जयपुर के उससे खेल रहा था, तो मेरे दोस्त से ही मेरा मैच था जिसके साथ मैं अलवर में प्रैक्टिस किया करता था, तो वो 2-0 जीत रहा था और ये तीसरा बेस्ट ऑफ 5 का मैच था, वो 2-0 अप था और थर्ड मैच भी मैं वो 10-7 पॉइंट चल रहा था, तो टेबल टेनिस का मैच होता है 11 पॉइंट्स का मैच होता है, तो 10-7 का स्कोर चल रहा था और उसके बाद मैंने 3 पॉइंट लगातार लेके ड्यूस पे मैं मैच को लेकर आया और उसके बाद लगातार मैंने अगले 2 गेम भी जीते और उसी से ही मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ था और उसी परफॉर्मेंस के चक्कर में मैं मतलब काफ़ी फेमस हो गया था और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं आपके टेबल टेनिस के उनके भी उसमें आ गया था मैं, तो फिर उसके बाद मेरा नेशनल कैंप लगा, उसमें मैंने प्रैक्टिस करी बट कुछ कारण के चक्कर में मेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं
0: जी
1: कैंप में
0: हाँ,
1: बाहर हो गया था, बट वो मैच एक ऐसा मैच है जो मैं कभी नहीं
0: कभी
1: भूलूंगा जिसके
0: जी
1: चक्कर
0: जी
1: में मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया, मैं काफ़ी लोगों से मिला भी सही और मतलब गेम चेंजिंग मैच था वो मेरे लिए।
0: प्रखर, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत जुनूनी खिलाड़ी किसी अच्छे खिलाड़ी को देखकर, उसका मैच देख देख कर गेम सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हम मानते हैं कि अगर आपको परफेक्ट खिलाड़ी बनना है तो एक कोच होना जरूरी है जो आपके सारे कमियों को दूर कर दे और आपको एक परफेक्ट प्लेयर बनाए। तो कोच का रोल टेबल टेनिस में कितना है?
1: कोच का रोल बहुत होता है आपका, तो जैसा कि मैं इधर जयपुर के SMS स्टेडियम में खेला करता था तो हमारे उधर एक संजय सर करके होते थे, तो उन्होंने मेरा बहुत बहुत सहयोग दिया है मेरे साथ, उन्होंने मेरा सारा जो मेरा पूरा एक आपका मूवमेंट रहता है हैंड का, तो आपका मेरा स्टार्टिंग में रिस्ट बहुत मूव होता था तो जो कि आपका नहीं होना चाहिए, तो रिस्ट का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो टेबल टेनिस में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है,
0: जी
1: तो वो मेरा उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कराया है, तो मैं उनको उसके लिए बहुत, मेरा उसके बाद से ही काफ़ी इम्प्रूव हुआ है गेम, तो काफ़ी महत्व रहता है, बाकी जो आपके आपको जब आपका मैच खेलते हो आप आपको उसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब कोच, तब का भी कोच बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं आपको, तो वो
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: सही अच्छा रहता है।
0: ऐसा कोई खिलाड़ी जिसको देखकर आप चाहते हैं कि मैं भी उसके जैसा खिलाड़ी बनूं, एक बड़ा खिलाड़ी, एक रोल मॉडल जो होता है ना, जो हमें काफ़ी प्रेरित करता है कि यार अगर टेबल टेनिस में खेल रहा हूँ तो मुझे इसका गेम बहुत अच्छा लगता है।
1: तो इसके लिए मैं 2 लोग को वो करूँगा, एक है तिमो बोल जो कि है जर्मनी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बार वो वर्ल्ड नंबर 1, 4 से 5 बार वर्ल्ड नंबर 1 का उनका वो रहा है, बाकी
0: रैंकिंग
1: रैंकिंग रही है, एंड वो अभी भी 41 ईयर्स के हैं लेकिन वो अभी भी खेल रहे हैं और अभी भी वो टॉप 20 टॉप 10 में आते रहते हैं, तो उनको ही देख के मैंने यूट्यूब पे उनके बहुत वीडियोज़ देखे हैं, उनकी टेक्निक से मैंने अपने आप को बहुत घर पर प्रैक्टिस करके बहुत इम्प्रूव करा है, और एक दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा मानव ठक्कर करके, वो इंडिया के ही खिलाड़ी है और वो काफ़ी यंग लेवल के खिलाड़ी है जो कि अभी अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे जयपुर में भी खेलते हुए देखा है, वो अजमेर में प्रैक्टिस करते थे PSPB अकेडमी में, तो उनको मैंने देख के मतलब काफ़ी मैंने अपना रोल मॉडल माना है, वो काफ़ी कम उम्र से वो खेलना चालू करे थे और काफ़ी अच्छा खेलते हैं वो, और अभी सबसे छोटे प्लेयर होंगे जो
0: जी
1: वर्ल्ड
0: हाँ
1: इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे
0: प्रखर,
1: हैं।
0: आप अभी एक जॉब में भी आ गए हैं और आपका खेलना भी जारी है, तो आगे आपका इस खेल को लेकर टेबल टेनिस में कोई अच्छा सा ड्रीम होगा, क्या करना चाहेंगे?
1: तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 9th स्टैंडर्ड

0: मैं नेशनल कैंप तक ही जा पाया था, और फिर मेरा नेशनल में कभी खेला भी नहीं था, 10 स्टैंडर्ड में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो वो मेरा अभी अधूरा रह रखा है। तो उसको मैं, अगर मेरे को टाइम मिला अभी जॉब के साथ, तो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी खेलते हैं, तो अभी भी
1: जी
0: मैं शाम को जॉब से आने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो मेरा अगर पूरा हो पाएगा तो नेशनल खेलने का एक, तो मैं मतलब वो मेरा है सपना एक तरीके से, एक बार नेशनल खेलना है मेरे को, तो उसके लिए मैं एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा और
1: जी
0: सही
1: जी
0: पूरा करूँगा।
1: क्या कहना चाहेंगे नए दौर के खिलाड़ियों के लिए जो नए नए आ रहे हैं टेबल टेनिस में, कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा पेशेंस भी रखें?
0: करेक्ट।
1: जी क्या कहेंगे?
0: तो मैं यही बोलूँगा, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, 2 साल मेरे को वॉल प्रैक्टिस करी है, मैंने बहुत लोगों के साथ खेला है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने कितने मैचेस खेले वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को वो याद है कि नए नए लोगों से मिला हूँ कैसे सारे, जैसे मैंने आपको एक मैच बताया उसके बारे में याद रहता है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो जो जर्नी है आपकी वो
1: जी
0: बहुत अच्छी रहती है आपको। फिर आपको खेलना है तो आपका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको खेलना ही चाहिए आपको। और टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जो आपको स्टैमिना भी आपका इम्प्रूव करता है, आपका मूवमेंट्स भी, ये आपके
1: अच्छे
0: मूवमेंट
1: रहते
0: स्ट्रांग कराता है,
1: हैं और
0: तो
1: आपको फिट रखने में
0: हाँ
1: मदद
0: आपको
1: करते हैं।
0: फिट रखने में भी बहुत मदद करता है वो। तो नए को मैं ये बोलूँगा, नए खिलाड़ियों को, कि आप खूब से खूब टाइम दें, मतलब एज आ स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको
1: जी
0: उसके लिए,
1: जी
0: लेकिन आपका कोई भी स्पेयर टाइम होगा तो उसमें अगर आप टेबल टेनिस को टाइम दे सकते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए।
1: तो प्रखर मदान, आप एक अच्छे खिलाड़ी बने रहें और नित नई सफलताएं आपको मिलते रहें, ऐसी शुभकामनाएं आकाशवाणी आपको देती है।
2: अभी आप सुन रहे थे टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत। कार्यक्रम का समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजलें।

चलो अच्छा हुआ हम मिल गए। ये गजल थी भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली गजल, उषा टंडन की आवाज़ में। लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे गजल, आवाज थी नजर मोहम्मद की। और लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम की अगली गजल, रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाजों में।
1: ये गरीबा में वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

0: पंकज उदास की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। रात के 11 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज़ रेड बाय अभिनीत शुक्ला।

ग्यारह बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।